एफएम में 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास के 26वीं तिथि, तदनुसार 17 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 15 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारम्भ से भारत उन देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देश भर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

संसार में हमें किसी का सहारा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का सहारा बनना उससे भी अच्छी बात है। हर व्यक्ति दूसरों से सहारा तो चाहता है, लेकिन दूसरों को सहारा देना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप सच्ची शांति चाहते हैं तो किसी बेसहारे का सहारा बन जाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और जिस आनंद और शांति के लिए हम दर दर भटकते हैं, दूसरों की मदद करके जो आनंद और सुकून मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, बुरे वक्त में उनको सहारा देता है, उसे अपने लिए सहारा मांगना नहीं पड़ता। ईश्वर स्वतः ही दे देते हैं, इसलिए अपने जीवन काल में ज़रूरतमंदों की मदद अवश्य करनी चाहिए। और ऐसा भी कहा गया है कि सेवा करने वाले हाथ मंत्र बोलने वाले होंठों से अधिक पवित्र होते हैं।

जीवन में दिन आते और जाते रहते हैं, लेकिन वही दिन श्रेष्ठ कहलाता है जिस दिन की शुरुआत हम प्रभु भजन से करते हैं, ईश्वर के मनन से करते हैं।

परमेश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है। प्रभु सदैव अपने भक्तों के साथ रहकर सुख दुख में उनका साथ देते हैं, उनकी मदद करते हैं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 6:40 हो चुके हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

वन गमन के लिए विदा लेने आए हुए पुत्र के वचन सुनकर माता कौशल्या स्तब्ध रह गई हैं। आसन्न पुत्र वियोग उनके सम्मुख एक भीषण दुविधा बनकर खड़ा हो गया है। न तो वे श्री राम को अपने पास रख सकती हैं, न ही वन जाने की आज्ञा दे पाती हैं। एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर ममता ने ऐसा धर्म संकट उपस्थित कर दिया है जिससे त्राण पाना कठिन है, किंतु विजय कर्तव्य रूपी धर्म की होती है। धैर्य ममता के प्रवाह में अडिग खड़ा होकर कहता है, पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य देने के स्थान पर पिता ने वनवास दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। किंतु भरत, स्वयं महाराज तथा प्रजाजन क्या तुम्हारा वियोग सहन कर सकेंगे? हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को उनसे अधिक मान और महत्व देकर वन को न जाओ, किंतु यदि माता और पिता दोनों ने वन गमन के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:10 पर आप सुना करते हैं मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुबह सुहानी। कार्यक्रम में आज विशेष के साथ ही हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के बारे में, साथ ही आपको जानकारी देंगे समाचारों की सुर्खियों के बारे में और मौसम का अपडेट भी कार्यक्रम में शामिल रहेगा। गांधी चर्चा सुनिएगा सुबह 7:40 पर और प्रातः 8:30 का समय है कार्यक्रम गाने सुहाने का। सजीव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी प्रसारित किया जाएगा सुबह 9:00। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इंटरनेट के फायदे और नुकसानों के बारे में, और श्रोता अपनी राय इस कार्यक्रम में हमें दे सकते हैं। उसके लिए डायल करें हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01892224391। गीतों का कारवां फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10:00 और 10:30 का समय रहेगा लोकगीतों के कार्यक्रम पहाड़ों के सुर का।

0: जय हिंद गीतमाला। इस कार्यक्रम में देशभक्ति गीत हम आपको सुनवाएंगे सुबह 11:05 पर, और 11:30 का समय रहेगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। प्रादेशिक समाचार आप सुना करते हैं आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुबह 9:20 पर, 11:00, दिन में 3:00, शाम 6:00 और शाम 7:45 पर। समाचार प्रभात 8:00, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात 9:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगी। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12:00, दोपहर 12:30 का समय है कार्यक्रम सुनो सखी का। भजन हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:10 पर, शाम 5:30 का समय है कार्यक्रम युवा मंच का। सुरमई सांझ इस कार्यक्रम का आनंद उठाइए शाम 6:05 पर, और 6:30 का समय है कार्यक्रम मौजा गराइंदियां का। कार्यक्रम खेतीबाड़ी हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7:10 पर। मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8:00 और 8:30 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:15 पर, और इस कार्यक्रम में आज की फिल्म है बेखुदी कारवां सुरों का। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात्रि 9:30 पर, रात 10:00 राष्ट्रीय खेल पत्रिका आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी, और रात 10:30 पर सुनिएगा पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से। तो ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब स्थलानां यात्रायै निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमंत्री हरियाणायाः जिंद रेलस्थानके जिंद सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेलयानाय हरितपताकां प्रदर्शयिष्यति। अनेनैव सह श्रीमोदी जिंदनगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे 7,14,000 कोटि रूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। प्रथमस्य हाइड्रोजन संचालित रेलयानस्य अयं शुभारंभः रेलक्षेत्रे स्वच्छ सतत विकासाय कश्चन महत्वपूर्णः पदक्षेपो वर्तते। जिंदनगरात् प्रधानमंत्री चंडीगढ़ं प्रति प्रस्थास्यति। यत्र अपराह्णे पादोन द्विवादने सह 7,14,000 रूप्यतोप्यधिकानां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। अत्रावसरे सः जनसभामपि संबोधयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री पंजाबस्य जालंधर नगरं प्रति गमिष्यति, यत्र सः 7,74,500 रूप्यकाणां नैकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कतर देशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन सह दूरभाषेण संवादम अकरोत्। अथ फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधनं प्रति शोक संवेदनाः प्रेषितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् कतर देशस्य फादर अमीर इत्येतस्य स्थायी रिक्तम्। भारतकर्तर देशयोः मध्ये सामरिक सहभागितां सुदृढां कर्तुम् अग्रेपि मार्गदर्शनं करिष्यति। असौ भारतस्य प्रति तस्य अतिस्नेहं कतरदेशे स्थित भारतीय समुदायं प्रति तस्य आत्मीय भावं भारत कतर संबंधान सुदृढीकर्तुं तस्य दृढ़ प्रतिबद्धतां च स्मृतवान्। जुलाई मासस्य 20 दिनांके आरभ्यमाणात् संसदः प्रावृत सत्रात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य नेतृत्वयुता एनडीए इति संयुतिः अद्य सहयोगी दलानां वरिष्ठमन्त्रिभिः सह उपवेशनं करिष्यति। अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः करिष्यति। अस्मिन् उपवेशने प्रावृत सत्राय एनडीए संयुतेः संसदीय कार्ययोजनायाः अन्तिमरूपं निर्धारयिष्यते। अपि च संयुतेः विधायी कार्यसूच्याः सहयोगिदलानां परस्पर समन्वयस्य अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्ण प्रतिपक्षाय एकीकृत कार्ययोजनायाः विषये विचार विमर्शः भविष्यति। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थयास्य वर्षस्य नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः। स्नातक स्तरीय चिकित्सा दंत चिकित्सा आयुष सहैव तत्सम्बद्ध पाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय 11 लक्षाधिकाः अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन्। सर्वेषाम् अभ्यर्थिनाम् अंकपत्राणि तावत् आधिकारिक संकेतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्यारभ्य त्रिदिवसीय यात्रायै पश्चिम बंगाल राज्यं गमिष्यति। सूत्रानुसारं यात्रावधौ सः सीमा सुरक्षायाः प्रशासनस्य विधिव्यवस्थायाः विकासात्मक कार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति। श्वः श्रीशाहः सिलिगुड़ी क्षेत्रस्य जुमागाछिति सीम्नि गत्वा सीमा

0: सुरक्षा बलस्य सैनिकैः साकं सम्भाषणमपि विधास्यति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां त्रि-एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन गतरात्रौ कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे भारत दलं चतुर्स्तोभैः पराजितम्। जो रूट उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। अधुना उभे दले रविवासरे लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे आयोज्यमाने अन्तिमायां निर्णायक श्रृंखलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2,600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3,200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जिंद।
1: जींद के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमा खाच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। खेलों में हॉकी इंडिया देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इस पहल का उद्देश्य कोचों और तकनीकी अधिकारियों के ज्ञान और कौशल

0: सुबह सुहानी।
1: श्रोताओ नमस्कार, गुड मॉर्निंग। धौलाधार की खूबसूरत वादियों से देवदार के जंगलों को छूकर आती ठंडी हवाओं के बीच मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त वंदना रैना, और लेकर हाजिर हैं हम आज का कार्यक्रम सुबह सुहानी। जी दोस्तों, धर्मशाला में सुबह बहुत ही खूबसूरत है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान बादलों से ढका है, खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे हैं और धौलाधार के बर्फीले पहाड़ों की दीदार। इससे बेहतर किसी भी दिन की शुरुआत क्या हो सकती है, और ऐसे में अगर संगीत का साथ भी मिल जाए तो इस सुबह को खूबसूरत बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए कार्यक्रम में खूबसूरत गीत के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी की।

बहारों के सपने इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत श्रोताओ आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। और श्रोताओ हर सुबह हमें एक कोरा कागज देती है और पेन हमारे हाथों में है और जरूरत है इस कागज को भरने की अच्छे कामों से और खूबसूरत यादों से। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से सुविचार के साथ। जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। इसलिए जीतने का जज्बा रखना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले लेकिन मेहनत और वक्त ज़रूर बदलता है। तो बस इसी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ कस लीजिए अपनी कमर और एक खूबसूरत मुस्कान के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए। और आप बने रहिए मेरे साथ कार्यक्रम सुबह सुहानी में और अगला ये खूबसूरत सा गीत अपने सभी श्रोताओं के लिए।

जी श्रोताओ, जीवन एक ऐसा रास्ता है जिस पर हमें निरंतर आगे बढ़ते ही जाना है, फिर चाहे जीवन में सुख आए दुख आए, लेकिन फिर भी जीवन सिर्फ चलने का नाम है। लेकिन अभी समय है थोड़ा रुकने का और पलट कर देखने का। जी हाँ, इतिहास के पन्ने अब हम पलटेंगे और बात करेंगे आज विशेष की। कार्यक्रम है सुबह सुहानी और आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। साल 1919 से शुरुआत कर रहे हैं तो आज ही के दिन यूरोपीय देश फिनलैंड में संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्ष 1929 में 17 जुलाई को सोवियत संघ ने चीन के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त किए थे और आज ही के दिन साल 1948 में भारत में महिलाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा समेत सभी सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती होने की पात्रता मिली थी। इसके साथ ही वर्ष 1955 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड की शुरुआत हुई थी। और अपने सुनने वालों को बता दें कि 160 एकड़ में फैला डिज्नीलैंड दुनिया का सबसे मशहूर मनोरंजन पार्क है और यहाँ पर हर साल करीब 14 करोड़ पर्यटक आते हैं। और मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया 17 जुलाई सन 1943 को।

सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई। सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।

नंबर 18 स्क्वाड्रन का हिस्सा थे, जिसे फ्लाइंग बुलेट के नाम से जाना जाता है, और साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और उनकी याद में नई दिल्ली के पालम वायुसेना संग्रहालय और इसके साथ ही जम्मू के बलिदान स्तंभ सहित कई जगहों पर उनकी प्रतिमाएं भी लगाई गई। और हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। ये दिन रोम संधि को अपनाने की याद दिलाता है, जिसे 17 जुलाई सन 1998 को स्वीकार किया गया था, और इसी संधि के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और इसके साथ ही नरसंहार और युद्ध जैसे गंभीर अपराधों के लिए अपराधियों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से समर्पित है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जागरूकता फैलाता है मानवता के खिलाफ अपराधों, युद्ध अपराधों और नरसंहार जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ वैश्विक न्याय प्रणाली के महत्व के बारे में।

और श्रोताओ, एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी में। और अब समय है आज के मुख्य समाचारों का और साथ ही मौसम का हाल जानने का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में 800 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए युवाओं को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त कोचिंग और ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही नीट यूजी का रिजल्ट जो है वो भी आ चुका है। और साथ ही भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस कल अपने पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के खाते में इस साल का ब्याज समय से पहले ही क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। और अब बात करते हैं खेल जगत की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे और टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस को हराकर स्पेन ने फाइनल में एंट्री कर ली है, जहां पर उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। और बात करते हैं आज के मौसम की, तो धर्मशाला में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और इसके साथ ही यहां का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने हल्की बारिश के बाद कल से मानसून की रफ्तार और तेज होने की संभावना जाहिर की है। और राज्य के कई हिस्सों के लिए 5 दिनों का भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।

जी श्रोताओ, कार्यक्रम सुबह सुहानी में हमारी और आपकी मुलाकात भी बस यहीं तक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी धर्मशाला के संग। वंदना रैना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सुबह सुहानी।
1: कार्यक्रम सुबह सुहानी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा में आप सुना करते हैं महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से वाचन। आज प्रस्तुत है दूसरे भाग का 21वां अध्याय, 3 पाउंड का कर। बाला सुंदरम के किस्से ने गिरमिटिया हिंदुस्तानियों के साथ मेरा संबंध जोड़ दिया, परंतु उन पर कर लगाने का जो आंदोलन चला उसके परिणाम स्वरूप मुझे उनकी स्थिति का गहरा अध्ययन करना पड़ा। 1894 के साल में गिरमिटिया हिंदुस्तानियों पर हर साल 25 पाउंड का अर्थात 375 रुपयों का कर लगाने के कानून का मसविदा नेटाल की सरकार ने तैयार किया। उस मसविदे को पढ़कर मैं तो दिड़मोड़ ही हो गया। मैंने उसे स्थानीय कांग्रेस के सामने रखा। इस मामले में जो आंदोलन करना उचित था वह करने का एक प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया। लगभग 1860 में जब नेटाल में बसे हुए गोरों ने देखा कि वहां ईख की फसल अच्छी हो सकती है तो उन्होंने मजदूरों की खोज शुरू की। मजदूर ना मिले तो ना ईख पैदा हो सकती थी और ना चीनी ही बन सकती थी। नेटाल के हबशी यह मजदूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए नेटाल निवासी गोरों ने भारत सरकार के साथ विचार विमर्श करके हिंदुस्तानी मजदूरों को नेटाल जाने देने की अनुमति प्राप्त की। उन्हें यह लालच दिया गया कि 5 साल तक मजदूरी करने का बंधन रहेगा और 5 साल के बाद उन्हें स्वतंत्र रीति से नेटाल में बसने की छूट रहेगी। उनको जमीन का मालिक बनने का पूरा अधिकार भी दिया गया था। उस समय गोरे चाहते थे कि हिंदुस्तानी मजदूर अपने 5 साल पूरे होने के बाद जमीन जोतें और अपने उद्यम का लाभ नेटाल को दें। हिंदुस्तानी मजदूरों ने यह लाभ आशा से अधिक दिया। साग सब्जी खूब बोई, हिंदुस्तान की अनेक उत्तम तरकारियां पैदा की। जो साग सब्जियां वहां पहले से पैदा होती थीं, उनके दाम सस्ते कर दिए। हिंदुस्तान से आम लाकर लगाए, पर इसके साथ ही उन्होंने व्यापार भी शुरू कर दिया। घर बनाने के लिए जमीनें खरीद लीं और बहुतेरे लोग मजदूर ना रहकर अच्छे जमींदार और मकान मालिक बन गए। इस तरह मजदूरों से मकान मालिक बन जाने वालों के पीछे पीछे वहां स्वतंत्र व्यापारी भी पहुंचे। स्वर्गीय सेठ अबूबकर आहमद उनमें सबसे पहले पहुंचने वाले थे। उन्होंने वहां अपना कारोबार खूब जमाया। गोरे व्यापारी चौंके जब पहले पहल उन्होंने हिंदुस्तानी मजदूरों का स्वागत किया था, तब उन्हें उनकी व्यापार करने की शक्ति का कोई अंदाजा ना था। वे किसान के नाते स्वतंत्र रहे, इस हद तक तो गोरों को उस समय कोई आपत्ति ना थी, पर व्यापार में उनकी प्रतिद्वंद्विता उन्हें असह्य जान पड़ी। हिंदुस्तानियों के साथ उनके विरोध के मूल में यह चीज थी, उसमें दूसरी चीजें और मिल गईं। हमारी अलग रहन सहन, हमारी सादगी, हमारा कम नफे से संतुष्ट रहना, आरोग्य के नियमों के बारे में हमारी लापरवाही, घर आंगन को साफ रखने का आलस्य, उनकी मरम्मत में कंजूसी, हमारे अलग अलग धर्म, ये सारी बातें विरोध को भड़काने वाली सिद्ध हुई। यह विरोध प्राप्त मताधिकार को छीन लेने के रूप में और गिरमिटियों पर कर लगाने के कानून के रूप में प्रकट हुआ। कानून के बाहर तो अनेक प्रकार से उन्हें परेशान करना शुरू हो ही चुका था। पहला सुझाव तो यह था
कि गिरमिट पूरा होने के कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तानियों को जबरदस्ती वापस भेज दिया जाए ताकि उनके इकरारनामे की मुद्दत हिंदुस्तान में पूरी हो, पर इस सुझाव को भारत सरकार मानने वाली नहीं थी।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले की जाएंगे।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
3: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
3: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट UG 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट UG का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है हॉर्मुज़ पर जहाज़ों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मानसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है 2 नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश। 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रूपए के स्टार्टअप और के नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट UG पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी।

0: अरीना शोरूम मारुति सुजुकी अरीना खुशियों की चाबी टीएनसी अप्लाई।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
6: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
7: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
8: गाने सुहाने श्रोताओ, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.4 MHz पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में फिल्म क्रिमिनल से। बोल लिखे हैं इंदिवर ने, धुन बनाई है MM करीम ने।

अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो का गाया हुआ गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे लिखा है प्रसून जोशी ने, संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने और फिल्म का नाम है हम तुम।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
0: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like a 360 degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
0: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
6: कार्यक्रम गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाजों में। और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कच्चे धागे से।

और श्रोताओं, कार्यक्रम गाने सुहाने की अंतिम प्रस्तुति लीजिए, सुनिए फिल्म बॉडीगार्ड से। इस गीत को गाया है एश किंग और क्लिंटन सेरेजो ने।

गाने सुहाने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 9 बज चुके हैं, श्रोताओं लीजिए अब सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी।

श्रोताओं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कार्यक्रम जनवाणी में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है और वंदना रैना हाजिर है ये कार्यक्रम लेकर। जी दोस्तों, क्या आपने कभी नोट किया है कि आजकल के समय में हम सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम भगवान को याद करें या ना करें, अपने घर के सभी सदस्यों को गुड मॉर्निंग कहें या ना कहें, लेकिन सबसे पहले हम कौन सा काम करते हैं? जी दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम सबसे पहले अपने तकिए के नीचे हाथ मारते हैं या अपने बेड के साइड पर देखते हैं और सबसे पहले हम उठाते हैं अपने फ़ोन को। जी हाँ, यही तो है आज की दुनिया की कड़वी और मीठी सी सच्चाई। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना हो या फिर रात को सोने से पहले इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने हो, एक चीज़ है जिसके बिना हमारी सांसें अटक जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। और ये इंटरनेट हमारी जिंदगी के लिए एक वरदान है या फिर एक अभिशाप? इसने हमें दुनिया से जोड़ा है या फिर हमारे पास बैठे हुए अपनों से ही हमें दूर कर दिया है? इन्हीं सब बातों के बारे में आज कार्यक्रम में बात होगी आपसे। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, लेकिन अब अपने सभी श्रोताओं को हम निमंत्रित करते हैं इस कार्यक्रम के सफरनामे पर साथ चलने के लिए। और फोन नंबर रहेगा 01892224391।

जी दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल हमारा भी है और हम भी इंटरनेट के लिए यही कहते हैं कि इंटरनेट के बिना ना हमारी सुबह होती है ना ही हमें रात को नींद आती है। और आज हम कार्यक्रम में यही बात करेंगे कि इंटरनेट हमारी ज़िंदगी बना रहा है या बिगाड़ रहा है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, और इस विषय पर अपनी राय देने के लिए हमारे पहले कॉलर जो हैं वो लाइन पर आ चुके हैं, लेकिन उनसे संपर्क बात करने से पहले ही टूट चुका है। तो एक बार फिर से सभी सुनने वालों को यही कहेंगे, मिलाइए नंबर 01892224391 लेकिन सिग्नल में रहकर। हेलो हेलो जी, नमस्कार जी, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है जी। श्रोताओं, हम एक बार फिर से अपने सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि सिग्नल का पूरा पूरा ध्यान रखें जब भी वो हमारे स्टूडियो का नंबर डायल करते हैं, और नंबर है 01892224391। हेलो जी, इन श्रोता से हमारी गुजारिश है कि नंबर तभी हमें मिलाएं जब वो सिग्नल में आ चुके हों। इस तरह से अगर आप बार बार करेंगे तो ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरे सुनने वालों का समय भी वो वेस्ट कर रहे हैं। हेलो जी श्रोता, और हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं इंटरनेट की। इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इसके कई फायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं। सोचिए ना, एक छोटे से फ़ोन में या लैपटॉप में सारी जो जीवन है, सारी दुनिया का इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे हाथ में आ जाती है। कहीं पर भी हमें अपनी पसंद का खाना खाना हो, किसी से बात करनी हो, किसी को देखना हो, वीडियो कॉल करनी हो, या फिर ज्ञान का समंदर जो है वो सारा का सारा हमारे हाथ में ही आ गया है। और क्या हमें वाकई ये कहना चाहिए

जी श्रोताओं, कुछ हम भी यही कहना चाहेंगे इंटरनेट के लिए कि इंटरनेट का जो जादू है या ये कहिए फितूर जो है वो आज सबके सर पर

0: रहा है और बोल रहा है कि हमें इंटरनेट के बिना अपना जीवन अधूरा लगता है। और क्या कहेंगे कार्यक्रम के अगले कॉलर, बात करते हैं उनसे और जानते हैं। हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम
0: जी। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बता दीजिए।
1: मैडम, मैं नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ, गोपालपुर सरका घाट से।
0: जी जी नेगी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आपको आज का टॉपिक तो पता होगा।
1: हाँ जी, इंटरनेट वरदान है या अभिशाप? जी
0: जी, आप क्या सोचते हैं, आपके लिए वरदान है या अभिशाप है?
1: मैडम, सोचने की बात तो है, लेकिन मैं तो तहे दिल महसूस किया हमने इसको।
0: जी जी,
1: कि इंटरनेट के जो मतलब एक वरदान भी है और अभिशाप भी है।
0: जी, आपके लिए कैसे वरदान है पहले आप अपने बारे में बताइए।
1: मैडम, इसके जो सकारात्मक पहलू हैं वो इसने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। जैसे इसकी जो टेक्निक है, जो हमारे संचार, शिक्षा
0: जी,
1: या व्यापार या मनोरंजन के क्षेत्र में जो मेरे जीवन में जो क्रांति लाई है इंटरनेट ने,
0: जी जी,
1: वो हम महसूस करते हैं इसको दिल की गहराइयों से।
0: चलिए,
1: लेकिन दुनिया के किसी भी कोने से हम जुड़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी जी,
1: हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक किसने बनाया है जी। आज की तारीख में हम मोबाइल हाथ में लेकर के इसमें सारे मतलब जितने भी टॉर्च से लेके कैमरे से लेके हर चीज, यानी कि वो जो राजा महाराजाओं के पास पहले फैसिलिटी नहीं होती थी, वो आज हर नौजवान के हाथ में वो फैसिलिटी है जी।
0: जी निकी जी, ये फायदे तो आपने इसके बहुत सारे गिनवा दिए। अब आप ये बताइए कि इंटरनेट की वजह से कभी आपको कोई नुकसान भी हुआ है?
1: मैडम, ये मैं पूरा पहले बता लूं, इसके जो ज्ञान का भंडार है इंटरनेट से, हमने ऑनलाइन कोर्स किए, डिजिटल लाइब्रेरी है ये
0: जी।
1: मतलब इससे घर बैठे हम खरीदारी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ जुड़ने की तो बात मैंने पहले कह दी। तो इंटरनेट के जो नकारात्मक जो पहलू आप जान रहे हैं कि इससे मैडम जी जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जैसे किसी भी आंदोलन और उसमें जो है वो इसका बड़ा नेगेटिव, जैसे कई बार इंटरनेट बंद करना पड़ता है, जम्मू कश्मीर हुआ या जो सेंसिटिव स्टेट्स हैं या जो आजकल दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा हो सकता है वहां पर भी ये करना पड़े, क्योंकि सामाजिक अलगाव और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण जो है वो इंटरनेट भी होता चला जा रहा है। इससे स्वास्थ्य संबंधी जो हम लगातार जो देखते रहते हैं, हमारे बच्चे ये जो सेंसिटिव नहीं है इसके बारे में, जो गलत जानकारी प्राप्त करते हैं या गोपनीयता की समस्या इसकी वजह से परिवार, समाज और देश के प्रति हो रही है, जो साइबर अपराध हो रहा है, जो बच्चों और युवाओं के बीच में जो अनुचित जो सामग्री का जो खतरा लगातार बना हुआ है, तो कुल मिलाकर के इंटरनेट वरदान भी है और अभिशाप भी है।
0: जी जी नेगी जी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जी, और उसमें अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उसका कौन सा पहलू अपने जीवन में अपनाना है।
1: तो ये इंटरनेट का मैडम जी अनुचित जो उपयोग है वो ना किया जाए और जागरूक बना जाए। इंटरनेट का मतलब जो इसका संतुलन है, जो इसका बैलेंस है, जो इसके जो सकारात्मक पहलू है उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए।
0: जी जी जी नेगी जी, बहुत
1: जो प्रभाव है उससे बचा जाए जी।
0: बहुत अच्छा संदेश दिया आपने हमारे सुनने वालों को कि हमें इंटरनेट का सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। आज कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी बातें साझा की, उसके लिए आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: और श्रोताओ, आप भी इस कार्यक्रम में अपनी राय बिल्कुल बेबाकी से हम संग साझा कर सकते हैं। और नंबर है हमारे स्टूडियो का जाना पहचाना 01892224391। हेलो।
2: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्कार जी।
2: जी योगेश जांगड़े भी मैं तरह छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी जी योगेश जी, कार्यक्रम में आज जो टॉपिक हमने लिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: यही कहेंगे, आज के समय में तो इंटरनेट ऐसा हो गया है जैसे हमारे लिए सांस की जरूरत होती है ना, वैसे ही हमारे समय के लिए इंटरनेट का काफी जुड़ाव हो गया है।
0: जी, और आप क्या क्या फायदा उठाते हैं इंटरनेट की सुविधा से?
2: फायदा तो ये सबसे बड़ा फायदा तो यही है, इंटरनेट के सहारे हम आपका प्रोग्राम सुन पा रहे हैं।
0: जी, ये सबसे पहला रीजन है कि इंटरनेट ने जो है वो दूरियों को नजदीकियों में बदल दिया है।
2: और एक फायदा ये भी है कि जो हम है रिश्तेदार है जो हमसे काफी दूर है उनसे वीडियो कॉल पर भी काफी अच्छे से बात हो पाता है।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा
2: और,
0: आपने
2: और जो भी जानकारियां हैं चाहे वो स्टडी के क्षेत्र में हो या बच्चों को पढ़ाने के लिए हो, वो काफी आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है।
0: जी बहुत अच्छे फायदे आपने गिनवाए।

0: आए और कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, कार्यक्रम में यूं ही आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक समय है थोड़ा सा ब्रेक लेने का।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
1: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
0: और श्रोता, बिल्कुल इस गीत की तरह आज के समय में अगर हम किसी भी व्यक्ति को लें तो वो यही कहेगा कि इंटरनेट के बिना हमारा जो पल पल है वो भी काटना बहुत मुश्किल है, और इंटरनेट जो है वो हर पल का हमारा साथी है। और इंटरनेट के बिना हम अपने जीवन की आज के समय में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

जी श्रोताओं, बिल्कुल इंटरनेट जो है वो हमारे जीवन के रास्ते को आसान और सुगम भी बना रहा है। इसी विषय पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे अपने सुनने वालों के साथ, लेकिन उन्हें करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि सुबह के 9:18 हो चुके हैं और थोड़ी ही देर में हम उनको लिए चलेंगे आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो, जहाँ से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे कार्यक्रम जनवाणी में सुबह 9:30 पर।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊना के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का आज करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। मुकेरिया से तलवाड़ा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की भी रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद BBMB ने राज्य का बकाया एरियर अभी तक नहीं किया जारी। प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक बसों का शीघ्र होगा संचालन, 4 नए ई डिपो भी होंगे शुरू। राज्य सरकार ने 800 कांस्टेबल पदों पर होने वाली भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण व मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने का लिया निर्णय। और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की सभी प्रमुख बैंकिंग सेवाएं आज शाम 5 बजे से 22 जुलाई सुबह 10 बजे तक रहेंगी बंद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 75 नए सिरे से विकसित रेलवे स्टेशनों के उद्घाटन व नई रेल गाड़ियों को हरी झंडी दिखाना भी शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रदेश के ऊना जिला में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्तरोन्नत किए गए अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन के अलावा 27 किलोमीटर लंबी मुकेरिया से तलवाड़ा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की आधारशिला भी रखेंगे। ये रेल लाइन नंगल डैम ऊना अंब अंदौरा दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन को मुकेरिया से जोड़ेगा, जिससे इस रेल लाइन को जालंधर पठानकोट रेल लाइन से जोड़ा जा सकेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने राज्य का बकाया एरियर अभी तक जारी नहीं किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये मामला प्रदेश के लोगों के अधिकार और स्वाभिमान का है, जिस पर राज्य सरकार पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि BBMB को यदि पानी चाहिए तो पहले हिमाचल का हक देना होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में BBMB की कोई आनाकानी स्वीकार नहीं की जाएगी।
3: हमारा 15 साल से अधिकार फंसा हुआ है, ये स्पष्ट BBMB को भी करना पड़ेगा कि अगर आप हमारे पानी का सदुपयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया है, जो 7.19 के हिसाब से जो एरियर बनता है वो एरियर 15 साल से देने में अनाकारी, तो अगर पानी चाहिए तो हमारे एरियर के लिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करे कि हमें कोई इतराज नहीं है, तो हम उनके लिए तैयार है। ये हमारे हिमाचल के लोगों के अधिकार की बात है, मेरा कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, हिमाचल की संपदा का अधिकार है और जनता ने हमें संपदा की रक्षा के लिए भेजा है।
2: राज्य सरकार ने प्रदेश पुलिस में 800 कांस्टेबल पदों पर होने वाली भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण व मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इन पदों के लिए प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 9 जुलाई को विज्ञापन जारी किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितियां किसी भी योग्य अभ्यर्थी की प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पहल विशेष रूप से ग्रामीण, दूरदराज व जनजातीय क्षेत्रों के उन युवाओं के लिए लाभकारी होगी जिन्हें गुणवत्तापूर्ण कोचिंग व प्रशिक्षण सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में शीघ्र नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। शिमला में HRTC के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बनने वाले 4 नए ई डिपो भी जल्द शुरू किए जाएंगे। अग्निहोत्री ने अधिकारियों को आवश्यक सामग्री की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ पहले से ही वैकल्पिक प्रबंध करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी परिस्थिति में बसों का संचालन बाधित न हो। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और नए ई डिपो शुरू होने से प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को बेहतर व सुविधाजनक परिवहन सेवाएं उपलब्ध होंगी। सांसद सुरेश कश्यप ने एयरपोर्ट सुविधाओं के विस्तार, पर्यटन को बढ़ावा देने व ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर बल दिया है। शिमला में एयरपोर्ट एडवाइजरी समिति व BSNL एडवाइजरी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि शिमला एयरपोर्ट प्रदेश के पर्यटन व संपर्क व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को एयरपोर्ट परिसर में प्रदेश के होटल, होमस्टे, रेस्ट हाउस व प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए विशेष पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए। कश्यप ने भारत नेट परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की और अधिकारियों को इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की सभी प्रमुख बैंकिंग सेवाएं आज शाम 5 बजे से 22 जुलाई सुबह 10 बजे तक अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। बैंक प्रबंधन के अनुसार तकनीकी बदलाव की प्रक्रिया के मद्देनजर ये सेवाएं बंद रहेंगी और इस दौरान ATM, इंटरनेट बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होगी। बैंक के प्रबंध निदेशक विनय सिंह के मुताबिक बैंक के संपूर्ण मुख्य परिचालन को विश्वस्तरीय

0: फिनाकल कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को अधिक सुरक्षित, तेज और बेहतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के दृष्टिगत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। चंबा जिला में भी किसान इस पहल का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। हमारे जिला संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में किसान प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं।
1: इस सकारात्मक परिवर्तन का प्रमाण है कि वर्ष 2026 में जिला चंबा के 133 किसानों से 185.92 क्विंटल प्राकृतिक गेहूं की खरीद की गई, जबकि वर्ष 2025 में जिला में केवल 39 किसानों से गेहूं की खरीद की गई थी। चंबा में प्राकृतिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीद इस बात का संकेत है कि जिला के किसान अब परंपरागत रासायनिक खेती से आगे बढ़कर टिकाऊ, लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल कृषि मॉडल को अपना रहे हैं। यही गति बनी रही तो आने वाले वर्षों में चंबा प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के अग्रणी जिलों में अपनी अलग पहचान स्थापित करेगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: सुप्रसिद्ध श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर जनभावनाओं के मद्देनजर कुल्लू जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग की सुरक्षा स्थिति का नए सिरे से आकलन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी अनुराग चंद्र शर्मा ने एक उच्च स्तरीय संयुक्त निरीक्षण समिति का गठन करने का फैसला लिया है। ये समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट जिला दंडाधिकारी को सौंपेगी। गौरतलब है कि पर्वतारोहण संस्थान मनाली, राजस्व और वन विभाग की विशेषज्ञ टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर भीमद्वारी और पार्वती बाग के बीच के ट्रैक को अत्यधिक खतरनाक और असुरक्षित पाए जाने के कारण सुरक्षा कारणों से इस यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया था। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में आज बादल छाए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कल से दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सक्रिय होने का अनुमान लगाया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार के अनुसार 22 जुलाई तक राज्य के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है।
2: मानसून एक बार फिर से 18 जुलाई से हमारे हिमाचल प्रदेश में एक्टिव होगा। ये मानसून जो है लगातार 22 जुलाई तक एक्टिव बना रहेगा, जिसका असर जो है पूरे प्रदेश में सभी जिलों में 18 जुलाई से चालू होगा और जिसमें रुक रुक के जो है बारिश का दौर पूरे प्रदेश में देखा जाएगा लगभग 22 जुलाई तक। मुख्य रूप से जो हमारे मिड हिल्स हैं और उससे लगे हुए जो हमारे निचले मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भारी बारिश का भी दौर एक बार 18 जुलाई से हमें देखने को मिलेगा।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, 8 अस्पतालों में MRI, 5 में लगेंगी डिजिटल मैमोग्राफी मशीनें। दैनिक जागरण के शब्द हैं, मेडिकल कॉलेजों में स्थापित होंगी 256 स्लाइस CT स्कैन मशीन। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने नियुक्त किए जिला प्रभारी व सह प्रभारी, पंजाब केसरी की एक खबर है। कोर्ट के फैसले से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, सरकारी जमीन पर कब्जों पर फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लंबित मुआवजों को 200 करोड़ और जारी, शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, हिमाचल सरकार ने प्रभावितों का इंतजार किया खत्म। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊना के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का आज करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। मुकेरिया से तलवाड़ा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की भी रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद BBMB ने राज्य का बकाया एरियर अभी तक नहीं किया जारी। प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक बसों का शीघ्र होगा संचालन, 4 नए ई-डिपो भी होंगे शुरू। राज्य सरकार ने 800 कांस्टेबल पदों पर होने वाली भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क प्रशिक्षण व मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने का लिया निर्णय। और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की सभी प्रमुख बैंकिंग सेवाएं आज शाम 5 बजे से 22 जुलाई सुबह 10 बजे तक रहेंगी बंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
4: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
3: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
4: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
3: जानकारी लें, अधिकार जाने।
4: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: It exceeds 360 degree view camera, heads up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: जी श्रोताओं, कार्यक्रम जनवाणी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ वंदना रैना, और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेट के बारे में कि ये कितना अच्छा है हमारे लिए और कितना खतरनाक भी हो सकता है। जी दोस्तों, अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो कब हम फ़ोन पर रील्स देखते हुए, वीडियोस देखते हुए अपने 2 घंटे बर्बाद कर देते हैं, पता भी नहीं चलता है। लेकिन इंटरनेट के फ़ायदे भी बहुत हैं, और अगर हम देखें तो ये एक ज्ञान का भंडार है, जहां पर छोटी से छोटी बात की जानकारी भी हमारे हाथों में पहुंच जाती है।
4: हेलो,
3: और आप भी इस विषय पर अपनी राय हमें दे सकते हैं। उसके लिए डायल करिए हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01892224391, और जानते हैं अगले कॉलर क्या कहेंगे इस विषय पर। हेलो।
4: हेलो, नमस्कार
3: जी। नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए।
4: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई से।
3: जी जी राकेश जी, आज के विषय में क्या राय है आपकी?
4: जी जी, मेरे ये राय है क्योंकि जैसे कि इंटरनेट तो हम 24 घंटे चलाते हैं, तो सबको पता है, लेकिन मेरा ये राय है कि जब हम सुबह उठते, चाहे हम 5 बजे उठे, चाहे 7 बजे उठे, चाहे 8 बजे उठे, लेकिन हमारी जो ये कहीं ना कहीं ये दिनचर्या बन गई, सबसे पहले सुबह उठना, सबसे पहले गुड मॉर्निंग जो है, मतलब मैसेज आना।
3: जी जी राकेश जी, इस विषय पर हमने बात कर ली है ना, बहुत सारे विचार जो श्रोता हैं।
4: दूसरा चीज जोड़ना चाहता हूँ।
3: जी जी, एक मिनट आप हमारी बात सुनिए। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपने इंटरनेट का उपयोग किस तरह से किया है, आपको क्या फायदा पहुँचा है इंटरनेट का प्रयोग करने से?
4: देखो, मेरे को तो इस बात का फायदा पहुँचा है क्योंकि इंटरनेट से मुझे सब कुछ जो है घर बैठे जानकारी मिली है, और सब कुछ फायदा मिला है
3: जी,
4: और फायदा भी मिला है। और मैंने इसमें जो इंटरनेट का उपयोग करते है, तो उसमें टाइम सेट भी किया कि मुझे कितना चलाना है और कितने घंटे जो है हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, कितना ये करना है। ये है कि हमें उसमें फायदा भी मिला है और नुकसान बोलते हैं तो नुकसान इसलिए है कि जब हम लिमिट से ज्यादा चला लेते हैं।
3: जी जी, और राकेश जी एक बात वो भी होती है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटे, है ना? तो अगर आपकी बातों को हमने सुना है तो हमने यही अंदाजा लगाया कि आप ये कहना चाहते हैं कि इंटरनेट का प्रयोग तो हमें करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए कि, और टाइम लिमिट डिसाइड करनी चाहिए कि हमें कितना इसका इस्तेमाल करना है।
4: जी, जैसे हम देखो खाने का हमारा टाइम होता है, कितने बजे खाना तो इसके लिए भी टाइम होना चाहिए कि मानो कि अगर हमारा अगर 1 घंटे का 1 घंटे हमने फोन चलाना है
3: जी,
4: तो 1 घंटे हमें फोन चलाना, तो हमें 1 घंटा ही बस सेट करना कि हमने 1 घंटे चलना, मतलब 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमें जो समय के अनुसार जो है हमें ये चलाना चाहिए।
3: बिल्कुल सही सोच है आपकी कि हमें जब भी इंटरनेट का प्रयोग करना है अपने काम के अलावा, अपने मनोरंजन के लिए, तो थोड़ा हमें समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी।
4: जी जी
3: जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी और बहुत अच्छे विचार हैं आपके। आज आपने कार्यक्रम में कॉल किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हेलो।
5: हेलो
3: जी, नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए।
5: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश।
3: जी लोकेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और बताइए जल्दी से इंटरनेट के क्या फायदे महसूस किए हैं आपने अपने जीवन में?
5: मैडम जी, इंटरनेट के तो बहुत से फायदे हैं। आज भी अभी देखिए, मैं एक बस में ट्रेवल कर रहा हूँ और आपका प्रोग्राम में प्रसार भारती मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन रहा हूँ। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि मैं कहीं पर भी आकाशवाणी को मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन सकता हूँ। यह सबसे बड़ा फायदा तो ये है इंटरनेट का।
3: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके अलावा और क्या फायदे महसूस करते हैं?
5: और ये मैडम, जब इंटरनेट का फायदा ये है कि जैसे अब UPI चल गया है, UPI से हम इंटरनेट के माध्यम से पेमेंट भारत के देश में किसी भी कोने में, भारत में हम पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं
3: जी।
5: और एक DBT भी होता है, जैसे DBT जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, तो वो भी कहीं पर भी किसी के माध्यम से पैसा पहुंच जाता है DBT के माध्यम से दूसरे खाते में
3: जी।
5: और ये जो बच्चे हैं आजकल के जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई 10वीं क्लास या 12वीं क्लास में बच्चे पढ़ते हैं
3: जी,
5: तो वो कोई नोट्स रहते हैं पढ़ने के जो कभी कभी बुक्स में उपलब्ध नहीं होते, उस प्रकार के नोट्स वो इंटरनेट पर खोजकर मतलब अपनी नोट्स को हासिल कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई के में भी काम ले लेते हैं उस इंटरनेट का
3: जी।
5: और ऐसे बहुत से आजकल फायदे हैं, जैसे कि आधार कार्ड लिंकिंग है, बैंक का KYC लिंकिंग है, मतलब आजकल का जितना भी 99% जो प्रोग्राम रहे सरकारी हो या

0: था, गैर सरकारी हो या ऑफिस का काम हो, सारा इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाता है, इंटरनेट के माध्यम से सारा कनेक्टेड है मैडम
1: जी। लोकेंद्र जी, बहुत सही बात आपने कही कि इंटरनेट के अगर हम फायदे गिनने पर आएं तो हम हजारों फायदे उसके बता सकते हैं, है ना। और जहां तक आपने बात की डिजिटल ट्रांजैक्शन की, लेकिन ये यही बात है कि हमें थोड़ा सावधान भी रहना है इंटरनेट का प्रयोग करते हुए, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो हम कर देते हैं पर कई बार साइबर क्राइम भी होते हैं, डिजिटल फ्रॉड भी होते हैं, तो उस चीज में थोड़ा हमें अलर्ट भी रहना पड़ेगा, है ना।
0: अलर्ट रहना पड़ता है, पर जैसा क्या होता है डिजिटल ट्रांसफर में, जैसे कुछ से लोग लालच में फंस जाते हैं, उनको वो मोबाइल पे एसएमएस कर देते हैं या कोई लिंक पहुंचा देते हैं कि अभी आप 5,000 का इनाम जीते हैं।
1: जी जी।
0: तो ऐसे जो लिंक रहते हैं उसको आप अवॉइड करें, उसको देखें ना, जो आपके काम का हो वही चीज को देखें
1: जी।
0: और बाकी तो मतलब ये जो कॉल्स भी आते हैं आपके पास में, अगर आपको उचित लगे कि हाँ ये कॉल मेरे लिए जरूरी है तो ही आप रिसीव करें। और आजकल ऐसे दूरसंचार विभाग और जो साइबर क्राइम विभाग है
1: जी,
0: वो भी आज पे काफी अलर्ट हो गया है कि किसी से इस प्रकार के किसी के साथ में धोखाधड़ी ना हो
1: जी। और बिल्कुल सही सोच है आपकी, और बहुत सही संदेश भी आपने सुनने वालों को दिया कि जब भी इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो उसको फायदे के लिए करें और ना कि किसी को तंग करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए करें, और साथ ही इसका प्रयोग करते समय जागरूक जरूर रहें।
0: हाँ, जागरूक रहना पड़ता है मैडम। जैसे हम भी इंटरनेट चलाते हैं और हमारे पास में कोई ऐसा एक टेक्स्ट मैसेज आता है तो हम अगर काम का रहता है तो उसको देखते हैं तो हम उसको डिलीट मार देते हैं।
1: जी, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे सुनने वालों को दिया। आज कार्यक्रम में आपने कॉल किया उसके लिए बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
1: जी श्रोताओं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे श्रोता कि जब भी इंटरनेट का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें समय सीमा ज़रूर निर्धारित करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिजिटल डिटॉक्स नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है और नींद गायब हो रही है, और ऊपर से साइबर फ्रॉड का खतरा अलग से हमें झेलना पड़ता है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इंटरनेट का प्रयोग बिल्कुल करें लेकिन सावधानी ज़रूर बरतें। हेलो
2: वंदना जी, नमस्ते।
1: नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए।
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: जी उज्जैन से, और महाकाल के यहाँ से आपने हमें कॉल किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जल्दी से बताइए आज के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं।
2: जी बताना चाहेंगे, अभी इंटरनेट हमारे लिए तो हमेशा फायदेमंद ही रहा है अब तक, तो ऐसे कोई भी हमारे साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई या कोई साइबर क्राइम नहीं हुआ।
1: फिर तो आपको अपने आप को लकी समझना चाहिए, है ना।
2: जी बिल्कुल, ईमानदारी से कहेंगे कि इंटरनेट जब तक हमारे जीवन में नहीं था तब तक हम बहुत पीछे थे, लेकिन जब से इंटरनेट ने हमारे जीवन में दस्तक दिया हम आगे निकल चुके हैं और हमें बहुत ही अच्छा फायदा हो रहा है। हमारे लिए तो इंटरनेट सबसे अच्छा वरदान साबित हुआ है।
1: चलिए, बहुत खुशी की बात है, और इतने अच्छे विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं इंटरनेट के फायदों की, नुकसान की, और किस तरह से इंटरनेट ने हमारे जीवन को बदल दिया है, हमारे जीवन में क्रांति ला दी है। हेलो,
3: नमस्ते जी, मैं ज्योत्सना पठानिया पठानकोट से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इंटरनेट है वो मेरी लाइफ में एक बदलाव है, एक चेंज लेके आया, और उसके दो हिस्से हैं, दो पहलू हैं।
1: जी,
3: एक
1: जी.
3: है ये यंत्र है, इससे मैं पूरी दुनिया में कुछ भी कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ, ऑर्डर कर सकती हूँ मटेरियल
1: जी,
3: लेकिन जो उसका जो सर्विस है वो इंसानों के हाथ में, जो मैन्युफैक्चरर है, सेलर है और जो कोरियर है, जो गड़बड़ होती है वो इंसानों के सही से होती है।
1: जी जी जी, चलिए बहुत खुशी की बात है। और ज्योत्सना जी, आपने कहा कि इंटरनेट ने आपकी दुनिया में बदलाव ला दिया है, आपके जीवन में बदलाव ला दिया, तो आपको इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखता है अपने जीवन पे या सब पॉजिटिव ही है?
3: जो यंत्र है, जो इंटरनेट है, मैं सिंगल रहती हूँ अकेले घर में 5 साल से एक कॉलोनी में
1: जी।
3: तो यहाँ पे आसपास कहीं पे भी कोई दुकानें नहीं, लॉकडाउन में आई थी तो मेरे को इंटरनेट पे सारी ग्रोसरी और सारा सामान मैं ऑर्डर करती थी और आ जाता था घर पे डोर स्टेप
1: जी,
3: पे
1: जी।
3: अगर कहीं पे जाना आना तो ओला उबर अवेलेबल हो सकता है
1: जी,
3: लेकिन मैं भ्रमण नहीं करती, मैं घर में रहती हूँ। तो उसमें जब दिवाली का सेल लगती है और मैं ऑर्डर करती हूँ, 1,000 की चीज 100 रुपए में मिलती है, तो जो गड़बड़ होता है वो जो सेलर या कोरियर के साइड से होता है।
1: चलिए, बहुत
3: वो कहते हैं कि आप इसका रिफंड ले लो 100 रुपए, लेकिन मेरे को 1,000 की चीज 100 रुपए की दोबारा से नहीं मिल सकती। तो वो जो गड़बड़ है वो छल कपट इंसानी मस्तिष्क में होता है, यंत्र बहुत अच्छा है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। आज कार्यक्रम में आपने कॉल किया, धन्यवाद। और श्रोता,

0: भी यही कहेंगे कि इंटरनेट एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और दिन में थोड़ा सा समय अपने फ़ोन से दूर भी रहिए, अपनों के साथ बैठिए और आमने सामने बातें भी ज़रूर करिए। हेलो
1: हेलो बंदना जी, नमस्कार।
0: नमस्कार राणा जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है जी। देखिए, बहुत बढ़िया टॉपिक आज आपने चुना है
0: जी।
1: देखिए, हमारे जीवन में जो इंटरनेट है, बहुत शुरू से लेकर, मतलब सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमारे जीवन में जो हर तरह का वो काम आता है
0: जी। और राणा जी, एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि सभी फायदे बता रहे हैं इंटरनेट के, तो आपने कुछ नुकसान भी महसूस किया है इसका? ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास हो जाती है तो उसका कोई नुकसान होता है?
1: हाँ जी, देखिए, नुकसान मेरे को तो कुछ नहीं हुआ।
0: अच्छा।
1: लेकिन सुनने में आता है कि साइबर क्राइम जो होते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है
0: जी,
1: उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। देखिए, कोई हर आदमी को लालच होता है जीवन में, कुछ भी कोई लालच दे करके उसको कहते हैं तुम्हारी लॉटरी लग गई है या तुम्हारा सामान आ रहा है, इतने पैसे भेजो
0: जी।
1: तो उसकी वजह से हम लोग खुद ही लालच में आकर के इंटरनेट के जरिए फंस जाते हैं। हम अपने लालच ना तो किसी को बताने के बता भी नहीं सकते, हमारे पास ये मैसेज आया है, बताएंगे तो हमारी बेइज्जती होती है
0: जी।
1: तो इस वजह से कई लोग जो साइबर क्राइम में जो है ना, उसमें फंस जाते हैं
0: जी। और राणा जी, एक चीज़ और भी है कि जैसे पहले होता था ना कि अगर कोई घर पे कह रहा है कि मेरे सर में दर्द है, तो हमारे जो माता पिता थे वो बोल देते थे सर में तेल लगा लो, मालिश कर लो, या फिर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है तो सो लो तो सर दर्द दूर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज सर दर्द होता है तो हम सीधा गूगल में टाइप कर देते हैं सर दर्द हो गई है ना, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इतनी निकल जाती है जो हमें डरा देती है, एक साधारण सिर दर्द को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है।
1: हाँ जी, मैं वही उसके टॉपिक पे आने वाला था
0: जी,
1: बता दिया। देखिए, हम कुछ भी बात है उसको सर्च करते हैं गूगल में जाकर।
0: हाँ जी,
1: सभी बातें सभी के लिए लागू वो नहीं होती,
0: बिल्कुल सही।
1: वो क्योंकि गूगल जो है उन्होंने अपने पैसे कमाने हैं, आप जो भी पूछिएगा आप उनको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन जो जरूरी होता है वो आपके जो मेडिकल डॉक्टर है, चिकित्सक है, वो ही आपको जरूरी सलाह देंगे ना किसी भी चीज के बारे में, चाहे कानूनी सलाह है या पढ़ाई शिक्षा, किसी के बारे में कोई सही जानकारी होती है वो विशेषज्ञ ही बता सकता है
0: जी। बिल्कुल तो सही बात है
1: जी।
0: और राणा जी, एक चीज और है कि इंटरनेट ने कहीं ना कहीं लोगों को आपस में दूर कर दिया है।
1: हाँ जी, आपस में भी दूर भी कर दिया है
0: और
1: आपस में
0: पास भी कर दिया है जी।
1: हाँ देखिए, हमारे हजारों मील दूर जो भी है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हम एक बटन क्लिक किया और उनसे बातचीत कर ली और उनका फोटो भी देख लिया, जो वीडियो भेज रही है। देखिए, आज वर्चुअल माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी जो जलंधर से वो हमारी रेल लाइन का उद्घाटन कर रहे हैं, तो देखो वर्चुअल माध्यम से एक क्लिक करेंगे तो उसका जो है उद्घाटन भी हो जाएगा और शिलान्यास भी हो जाएगा
0: जी जी।
1: तो इंटरनेट के फायदे भी बहुत है और नुकसान भी बहुत है। किसी गलत इंसान के हाथों में इंटरनेट चला जाए तो वो बहुत नुकसान भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही राणा जी। और आज जो चर्चा हमने आपसे की तो उसमें हमने यही जाना कि अगर इंटरनेट का सही स्वरूप से इसका इस्तेमाल किया जाए तो हमारे लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है।
1: विज्ञान ने तो हमको बहुत अच्छी चीज दी है, लेकिन विज्ञान कई जगह से हमारे लिए वरदान भी साबित होता है, कई जगह अभिशाप भी बन जाता है
0: जी। और राणा जी, आज कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी। जी श्रोताओं, तो हम भी यही कहेंगे कि इंटरनेट का इस्तेमाल आप ज़रूर करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, नई नई चीज़ें सीखिए, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि अपने दिल पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए और हमेशा इंटरनेट पर ही नहीं बल्कि बाहरी दुनिया के लोगों के साथ भी मिलिए, मिलाइए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो
1: हेलो जनवाणी
0: जी, कार्यक्रम जनवाणी में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए सुनने वालों को।
1: जी मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: जी तोमर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और क्या कहना चाहेंगे आज के विषय में?
1: मैं ये कहना चाहूँगा हर चीज के दो पहलू होते हैं
0: जी,
1: अच्छा भी बुरा भी, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, इसी तरह इंटरनेट के भी दो पहलू हैं। इंटरनेट इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। एक अच्छा सेवक तो हो सकता है लेकिन मास्टर बनाना इसको बुरा हो जाता
0: जी। और ऐसा क्यों महसूस किया आपने?
1: इसलिए महसूस किया कि हमें इतनी लत लग जाती लोगों को इसकी, तो वो हावी हो जाते हैं, उसके आप बगैर रह नहीं सकते हैं, तो जीवन पंगु बन जाता उनका, सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते, परिवार में संवादहीनता आ जाती है, केवल अपने आप में डूबे रहते हैं।
0: तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको इंटरनेट की लत लग गई है?
1: जी नहीं, मैं इंटरनेट में केवल रेडियो वगैरह सुनता हूँ, सटीक सूचना वगैरह कुछ नहीं सुनता हूँ।
0: अच्छा, तो इंटरनेट का उपयोग आप अपने जीवन में कैसे करते हैं?
1: भाई केवल सकारात्मक सोच के लिए करते हैं, किसी अच्छी जानकारी पाना तो उसके लिए करते हैं, खेती संबंधी जानकारी पाना उसके लिए करते हैं, इस तरह करते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: जी श्रोता, कुछ इस तरह का हमारा दिल भी होता है। अगर इंटरनेट हमें ना मिले या एक दिन हम अपना फ़ोन के बिना हमें रहना पड़े तो हमारा दिल बिल्कुल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार जी,
1: मैं जयकरण सराफ।
0: जी जयकरण जी, क्या कहेंगे आप विषय के संबंध में?
1: जी ये जो इंटरनेट वाले फ़ोन है ना, इंटरनेट का तो इतना फ़ायदा हो गया है, मतलब हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है।
0: आपकी ज़िंदगी किस तरह आसान हुई है, कुछ बताएंगे?
1: देखो जी, मैं मतलब काफ़ी उम्र हो चुकी है, बचपन से आके ऊपर ही हूँ मैं। मेरे सामने ऐसे ऐसे जैसे घर में कोई डेथ वगैरह हो जाती थी ना
0: जी,
1: तो कुछ आदमी उधर भेजने, कुछ उधर भेजने, किन्हीं को पता भी नहीं चलता था, दूसरे दूसरे दिन भी पहुँचते थे। आज 10 मिनट में पता चल जाता है जी रिश्तेदार।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और कहीं पहले तो चिट्ठियाँ चलती थी है ना, तो एक चिट्ठी को पहुँचने में कई बार महीनों भी निकल जाते थे।
1: और दिनों दिन जो आदमी को हम भेजते थे उसको किराया भी देना पड़ता था कई बार
0: जी,
1: तो इससे पैसे की बचत हो रही है और समय की भी बचत हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक तरह से हम ये मान के चलें कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो सही दिशा में करते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी, सही दिशा में करते हैं और नुकसान तो उनको है जो वो गलत इस्तेमाल करते हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
1: देखो जी, बच्चों की माँ है ना, जो आजकल मतलब बच्चा रोने लगता तो उनको जल्दी से फोन दे देती है, बच्चा खुश हो जाता है
0: जी।
1: अगर छोटी उम्र में बच्चों को इस चीज की लत लग जाती है वो कभी नहीं छूटेगी
0: जी। और कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को स्मार्टफोन का इस्तेमाल या इंटरनेट का इस्तेमाल हम घर पे खुद ही सिखाना शुरू कर देते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी, वही तो बात है जी सर
0: जी। और ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, जितना संभव हो सके बच्चों को उनका बचपन जीने देना चाहिए।
1: हाँ जी, आंखें खराब हो रही हैं बच्चों की, दिमाग खराब हो
0: बिल्कुल,
1: रहा है,
0: बिल्कुल।
1: और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उनका जब तक उनके हाथ में फोन नहीं होगा।
0: चलिए, फोन आजकल की जो नेसेसिटी है वो भी बन चुका है, लेकिन जरूरत है कि हम सही ढंग से इसका इस्तेमाल करें और बिना मतलब के इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें।
1: कोई भी चीज चलती है हमारे फायदे के लिए चलती है। देखो आज कितना स्पीड नेट चल रहा है, पहले 2G होता था, फिर 4G, अब 5G चल रहा है
0: जी। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई। कार्यक्रम में यूं ही कॉल करते रहिए, आज आपने कॉल किया उसके लिए धन्यवाद। श्रोताओ, कार्यक्रम है जनवाणी और ये कार्यक्रम है सजीव फोन इन। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेट वरदान या अभिशाप, इसके फायदे हैं या नुकसान, और इस विषय पर श्रोता भी अपनी राय हम संग साझा कर सकते हैं। उसके लिए डायल करिए हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01892224391। हेलो
2: हेलो
0: जी, अपना नाम बता दीजिए।
2: मैं जिला कांगड़ा गांव कुकड़ी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: जी गोल्डी जी, आज कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे, इंटरनेट का किस तरह के फायदे आप देखते हैं?
2: तो ये बात तो बहुत बढ़िया, मगर मैं 2 मिनटों में समेटूंगा, क्योंकि
0: जी,
2: दो मिनटों में बड़ा अच्छा अपने विषय रखा, मगर मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी बोलने।
0: जी जी जी,
2: देखो फायदा तो ये है कि देखो हम दुकान में कोई चीज मंगा लेते हैं तो अगर हमें बाद में घर में पसंद ना आए तो उसको हम दुकान में वापस नहीं कर सकते कि नहीं
0: जी।
2: तो अगर ऑनलाइन कोई चीज मंगाते हैं तो उसमें 5-6 दिन की गारंटी होती है, उसको हम वापस भी कर सकते हैं अगर हमें पसंद ना आया ना
0: जी। लेकिन गोल्डी जी, इसमें एक साथ बात यह है कि अगर हम दुकान पे जाके कोई चीज लेते हैं तो हम उसको देख पर रख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर हम शॉपिंग करते हैं ना तो उसमें हमें सिर्फ तस्वीर देख के और जो वहाँ पे स्पेसिफिकेशन होती है उसको पढ़ के ही उस चीज के बारे में सोचना और एक पिक्चर अपने दिमाग में बनानी होती है जी जी।
2: और नुकसान ये है कि देखो पहले क्या होता था कि चलो बंदा बोलता था कि मुझे बैंक में काम है तो चलो कैसे नहीं कैसे बंदा का सैलरी पता भी हो जाता था।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
2: अब बंदे देखो अब सब कुछ इंसान सोचता है कि घर में हो जाता सारा काम, तो उससे ये है कि हमारा जो शरीर है उसमें नुकसान हो रहा। तो देखो आज लोगों को 50-75% लोगों को डायबिटीज हो गई है।
0: बिल्कुल सही जी।
2: तो बाकी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा तो सभी श्रोताओं को मौका दूंगा। धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद आपका भी इतनी अच्छी बातें हम संग साझा करने के लिए। और हम भी यही चीज मानते हैं कि इंटरनेट का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन इसके साथ बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें अपने घर से बाहर भी निकलना चाहिए और जो रियल लाइफ में जो लोग हम संग कनेक्टेड हैं, हमारे फैमिली के, हमारे परिवार का, हमारे दोस्त हैं, उन सभी के साथ हमें मिलना जुलना भी चाहिए और प्रकृति के जो खूबसूरत नज़ारे हैं उनके मज़े भी हमें ज़रूर लेने चाहिए। तो चलिए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत और फिर बात करेंगे अगले कॉलर से।

जी श्रोताओ, और आज के समय में अगर हम देखें तो इंटरनेट के बिना हम भी अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और कार्यक्रम जनवाणी में आज हमने बात की इंटरनेट के फायदों के बारे में, नुकसान के बारे में, गूगल से लेकर नानी के नुस्खों तक और रील स्क्रॉलिंग से लेकर असली दोस्ती तक, असली रिश्तों तक। और हमें यही तय करना है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, हमारे हाथ में या फिर हमारे फोन के हाथ में। ये सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह से पकड़ते हैं। और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शाम को आप जब घर से वापस आएं अपने काम से कम एक घंटे के लिए अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर दूसरे कमरे में रखिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठिए, उनके साथ बातें कीजिए, उनका हालचाल जानिए और खुलकर हंसिए। यकीन मानिए, जो सुकून आप उस एक घंटे में महसूस करते हैं वो फ़ोन पर आप 10 घंटे भी लगाएं, तब भी वो सुकून आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा।

तो श्रोताओं यही कहेंगे कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों को वक्त ज़रूर देते रहिए। और आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह और कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें मिला विकास पठानिया से। अगले शुक्रवार कार्यक्रम जनवाणी में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, ढेर सारी कॉल्स के साथ और आपके पसंदीदा गीतों के साथ। तो सुनते रहिए कार्यक्रम जनवाणी और अब वंदना रैना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनवाणी आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों का कारवां, जो आधारित है फिल्म संगीत पर।
1: Let's start the fun!

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, सिलसिला फिल्म से।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना इस गीत को। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं साजन का घर फिल्म से।

साधना सरगम और कुमार शानू की आवाजों में आप सुन रहे हैं इस गीत को। इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और गीतकार है समीर।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी। सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी। सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: श्रोतो, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, हम आपको सुनवा रहे हैं संघर्ष फिल्म से। सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे हैं इस गीत को। इस गीत को संगीत दिया है जतिन पंडित और ललित पंडित ने।

0: old Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
6: श्रोताओं, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत, हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र की आवाज में।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुनील राणा की आवाजों में सुनिए इस हिमाचली गीत को।

श्रोताओ, पहाड़ों के सुर आप एंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब बंटी मल्होत्रा की आवाज़ों में आपको सुनवा रहे हैं अगला हिमाचली गीत।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 75 नए सिरे से विकसित रेलवे स्टेशनों के उद्घाटन व नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाना भी शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रदेश के ऊना जिला में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्तरोन्नत किए गए अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन के अलावा 27 किलोमीटर लंबी मुकेरिया से तलवाड़ा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की आधारशिला भी रखेंगे। ये रेल लाइन नंगल डैम ऊना अंब अंदौरा दौलतपुर चौक रेल स्टेशन को मुकेरिया से जोड़ेगा, जिससे इस रेल लाइन को जालंधर पठानकोट रेल लाइन से जोड़ा जा सकेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने राज्य का बकाया एरियर अभी तक जारी नहीं किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये मामला प्रदेश के लोगों के अधिकार और स्वाभिमान का है, जिस पर राज्य सरकार पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि BBMB को यदि पानी चाहिए तो पहले हिमाचल का हक देना होगा।
2: हमारा 15 साल से अधिकार फंसा हुआ है, ये स्पष्ट BBMB को भी करना पड़ेगा कि अगर आप हमारे पानी का सदुपयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया है, जो 7.19 के हिसाब से जो एरियर बनता है वो एरियर 15 साल से देने में अनाकारी। तो अगर पानी चाहिए तो हमारे एरियर के लिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करे कि हमें कोई इतराज नहीं है, तो हम उसके लिए तैयार है। ये हमारे हिमाचल के लोगों के अधिकार की बात है, मेरा कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, हिमाचल की संपदा का अधिकार है और जनता ने

0: संपदा की रक्षा के लिए भेजा है।
1: राज्य सरकार ने प्रदेश पुलिस में 800 कांस्टेबल पदों पर होने वाली भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण व मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इन पदों के लिए प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 9 जुलाई को विज्ञापन जारी किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितियां किसी भी योग्य अभ्यर्थी की प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पहल विशेष रूप से ग्रामीण, दूरदराज व जनजातीय क्षेत्रों के उन युवाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगी जिन्हें गुणवत्तापूर्ण कोचिंग व प्रशिक्षण सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है। प्रदेश में शीघ्र ही नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। शिमला में एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जल्द शुरू किए जाएंगे। अग्निहोत्री ने अधिकारियों को आवश्यक सामग्री की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ पहले से ही वैकल्पिक प्रबंध करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी परिस्थिति में बसों का संचालन बाधित न हो। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और नए ई डिपो शुरू होने से प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की सभी प्रमुख बैंकिंग सेवाएं आज शाम 5 बजे से 22 जुलाई सुबह 10 बजे तक अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। बैंक प्रबंधन के अनुसार तकनीकी बदलाव की प्रक्रिया के मद्देनजर ये सेवाएं बंद रहेंगी और इस दौरान एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होंगी। बैंक के प्रबंध निदेशक विनय सिंह के मुताबिक बैंक के संपूर्ण मुख्य परिचालन को विश्व स्तरीय फिनाकल कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य है ग्राहकों को अधिक सुरक्षित, तेज और बेहतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में आज बादल छाए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कल से दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का अनुमान लगाया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार के अनुसार 22 जुलाई तक राज्य के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है।
2: मानसून एक बार फिर से 18 जुलाई से हमारे हिमाचल प्रदेश में एक्टिव होगा। ये मानसून जो है लगातार 22 जुलाई तक एक्टिव बना रहेगा जिसका असर जो है पूरे प्रदेश में सभी जिलों में 18 जुलाई से चालू होगा और जिसमें रुक रुक के जो है बारिश का दौर पूरे प्रदेश में देखा जाएगा लगभग 22 जुलाई तक। मुख्य रूप से जो हमारे मिड हिल्स हैं और उससे लगे हुए जो हमारे निचले मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भारी बारिश का भी दौर एक बार 18 जुलाई से हमें देखने को मिलेगा।
1: कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में सर्दियों के दौरान आवश्यक खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने विंटर राशन भेजने का अभियान शुरू कर दिया है। जिला उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि इस वर्ष करीब 500 क्विंटल राशन भेजा जा रहा है जिसमें से आधा राशन बीच रास्ते तक सुरक्षित पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि इस राशन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं जय हिंद गीतमाला।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
3: Nexa.
4: श्रोतो, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय आप सुन रहे हैं जय हिंद गीतमाला आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाएं कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं जय हिंद गीतमाला आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम देशभक्ति गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूँ और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
3: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश।

0: भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
1: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे, जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
0: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
1: जी श्रोताओ, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है, जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
0: जी,
1: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
0: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
1: जी श्रोताओ, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी, जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
0: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है, जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना, जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
1: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
0: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी, बस तो रिद्धि

0: इन्हें प्रश्न पूछ ही लिया।
1: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
2: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
1: क्या 20 करोड़ साल?
2: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
1: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
2: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित, तुम बताओ।
3: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
1: रुको, मैं बताती हूँ।
2: तुम बताओ।
1: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
2: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था, और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
2: वाह,
1: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
2: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
1: अलग होकर खिसकने लगे?
2: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
1: सर, फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
2: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर, हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
1: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
2: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
1: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
2: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
1: जी।
2: देखो, विशाल और शांत महासागर, ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
2: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा?
2: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
3: सर मैं कुछ बताऊँ इसके बारे में?
2: हाँ बेटा क्यों नहीं।
3: ठीक, वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
2: बहुत अच्छे, और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया सर इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी।
2: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
3: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
2: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
3: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
2: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा तो ये बात है।
2: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
5: माउंट एवरेस्ट।
2: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
2: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
2: बिल्कुल सही बात।
0: तो साथियों अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न, पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा,
2: दादी काफी प्रभावित हुई।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
4: बस काफी है दादी,
2: उसने रूखे स्वर में कहा।
4: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर।

0: मिलते होंगे, है ना?
1: दादी ने पूछा।
2: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
0: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा कभी-कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी-कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हां, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहां है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया, और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
2: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
0: बोलो
2: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
0: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
2: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
0: अरे नहीं नहीं,
2: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
1: स्वामी नाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
2: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
0: अच्छा।
2: राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे, और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
1: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
0: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
2: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
0: 2 शेर राजम पर झपटे थे।
1: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
2: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ, और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
1: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
2: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
1: दादी ने स्वर में

0: सांस भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
2: अच्छा।
0: दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
3: तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
0: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गईं।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगमंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। इस समय दिन के 12 बजे हैं। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मन्ना डी के गाए हुए इस देशभक्ति गीत के साथ, जो हमने लिया है फिल्म पैगाम से।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ ये गीत, जिसे लिखा है फैज़ अनवर ने, धुन बनाई है निखिल विनय ने और फिल्म का नाम है तुम बिन।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम, श्रोताओं आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने और फिल्म का नाम है मेरे ब्रदर की दुल्हन।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए रब ने बना दी जोड़ी इस फिल्म से। इस गीत को लिखा है जयदीप साहनी ने, धुन बनाई है सलीम सुलेमान ने और आवाज़ है रूप कुमार राठौर की।

सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। नीचे सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में। जावेद अख्तर का लिखा हुआ ये गीत है, धुन बनाई है मदन मोहन ने और इस गीत को गाया है उदित नारायण ने। फिल्म का नाम है वीर सारा।

और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। श्रेया घोषाल और अजय की आवाज़ों में ये गीत हमने लिया है फिल्म सिंघम से। गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे और संगीतकार हैं अतुल अजय।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनो सखी।

0: सखियों का कार्यक्रम सुनो सखी लेकर हाजिर हुई है आपकी अपनी सखी सुमन। कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों का कार्यक्रम में स्वागत है और इसी स्वागत के साथ है सखियों, आज हम आपको खास मेहमान के साथ मिलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो में इस समय हाजिर हो चुके हैं। बहुत सारी सखियों का इंतजार रहता है शुक्रवार के दिन यानी उड़ान के दिन की कौन सा मेहमान आया होगा और किससे हमें मिलवाने वाली हैं। तो सखियों आज थोड़ा सा हम मेहमान से खुद भी परिचय करते हैं क्योंकि मेहमान से आज हम खुद भी पहली बार मिलने जा रहे हैं। तो अनु मैम थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। जी
1: मेरा नाम है अनु शर्मा।
0: जी जी
1: मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ।
0: जी
1: अधिवक्ता माने तो एडवोकेट।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात, थोड़ा सा डिटेल में बता दें तो हमारी हाँ। महिलाओं को पता लग जाता है।
1: मैं धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कार्यरत हूँ, पिछले 10 साल से वहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ, अपना काम चला रही हूँ, चल रहा है वहाँ से
0: जी।
1: तो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से मैं लीगल एड काउंसिल भी हूँ कि जो समाज में जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों के लिए मैं उन्हीं के लिए फ्री में केस लड़ती हूँ।
0: ठीक है मैम। मैम थोड़ा सा अब परिचय के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत उत्सुकता हमें भी जानने की है और खैर हमारी बहनों को तो जानने की होती ही है। और यूं कहे तो बहनों को भी बहुत कम कानून का नॉलेज होता है, या तो अपनी हस्बैंड से लेना चाहती हैं या इधर उधर से कानून के बारे में जानना चाहती हैं। तो आज हम अपनी बहनों को बताएंगे और आप भी जानती हैं हम भी जानते हैं आज न्याय दिवस है, तो थोड़ा सा आप हमें न्याय दिवस के महत्व के

0: समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार,
1: शिक्षा का अधिकार
0: जैसे कोई दहेज उत्पीड़न हो, जैसे जिनके साथ घर में घरेलू हिंसा हो रही है,
1: जी
0: तो उनको अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है।
1: जी, तो बहुत सारी हमारी महिलाएं ऐसी हैं जो इन अधिकारों को नहीं जानती,
0: नहीं
1: हैं
0: जानते।
1: तो आज आपसे जानकर उन्हें बहुत कुछ पता लगेगा। तो फिलहाल थोड़ा सा हम अपनी बातों को देते हैं विराम, रोकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप मेहमान आए हैं, मेहमानों की खातिरदारी भी थोड़ी सी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा कुछ खास खातिरदारी तो हम आपकी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। कहते हैं ना, बातों के साथ साथ गीत संगीत हो तो कार्यक्रम का मज़ा जो है दोगुना हो जाता है, और आपको भी कहीं अच्छा लगेगा हमारे स्टूडियो में आके कि हमने आपका मनोरंजन भी करवाया है। तो थोड़ा सा आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
2: जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
3: डन
2: डन।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: सभी इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और अनुजी कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। और इसी स्वागत के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां अभी हमें आपसे लेनी हैं। तो अब हमें आप ये बताएं कि कानून के क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: देखिए, ये मेरा ऐसा अनुभव है, जब मैं बचपन में मैंने अपने आसपास अपनी ही फैमिली में लेडीज़ को डोमिनेट होते हुए देखा, जैसे उनको एक इक्वल वहाँ पे नहीं दर्जा मिलता था, क्योंकि आज के पुराने टाइम में एक पुरुष प्रधान समाज होता था, वहाँ पे हर एक औरत को अपने एक छोटे से काम के लिए भी अपने पति से या किसी से मांगना पड़ता था। तो मेरे वो डोमिनेटिंग समाज देखा तो मेरे मन में ऐसा था कि नहीं, मैंने

0: औरतों के लिए करना है। मैंने कुछ औरतें ऐसे देखी कि वो
1: हम्म,
0: इतनी उनके साथ इतनी वायलेंस होता था उस लेवल का कि वो बाहर आके नहीं बोलती थी।
1: जी। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या ये आपका बचपन का सपना था या जीवन के किसी अनुभव से आपको ये राह मिली थी?
0: ये मेरा सपना बचपन का नहीं था, मेरा किसी
1: जी
0: अनुभव से मैं इस फील्ड में आई हूँ। और ज़्यादा मुझे लोग जो समाज में जो औरतें हैं उनको बदलने की इच्छा मेरे में ज़्यादा है कि औरतों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और उनको उनके राइट्स को बताने के लिए, क्योंकि वो अबला नारी कमज़ोर नहीं है।
1: जी।
0: जी
1: बहुत सारे जो है कानून की बातें हमारी महिला बहनें जान चुकी हैं, और देखिए ना, शिक्षा के इतना असर हम पे हुआ है कि आज हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रही हैं। नहीं,
0: बिल्कुल,
1: पहले का समय होता था तो कहीं ना कहीं घर के किसी कोने में सिमट कर खड़ी रहती थी।
0: आज की
1: और
0: डेट में आप देखोगे कि हर एक प्रोफेशन में इक्वलिटी है, जहाँ
1: जी
0: लेडीज़ हैं वहीं उतनी
1: हाँ,
0: जेंट्स
1: वही
0: हुए
1: बात मैं
0: हैं, तो
1: आपसे कह रही
0: इक्वल।
1: थी कि जैसे कोने में सिमट के खड़ी रहती थी, और पुरुषों की बातें या घर के कोई खास मुद्दे
0: मुद्दे के
1: डिस्कस
0: ऊपर
1: होते थे तो उनको
0: बिल्कुल
1: सुनती थी, लेकिन आज ऐसी हो गई है कि उन मुद्दों पर अपनी राय भी
0: पूछा
1: देने
0: जाता
1: लगी
0: है, उनकी
1: हैं।
0: एडवाइस ली जाती है, उनको आगे
1: जी
0: रखा जाता है हर एक
1: तो
0: घर के मुद्दों में।
1: बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा हमें और बताएं कि आज भी वकालत को चुनौतीपूर्ण पेशा माना जाता है, तो एक महिला अधिवक्ता के रूप में आपका अब तक का सफर कैसा रहा है?
0: अब तक का सफ़र मेरा बहुत चुनौतीपूर्वक रहा है, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट किया आफ्टर मैरिज के बाद।
1: जी
0: शादी के बाद अगर मुझे मेरे हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होती तो शायद ही मैं आगे अपना इस फील्ड में आगे बढ़ पाती। तो
1: बिल्कुल,
0: एक तो बात
1: परिवार
0: है कि
1: की
0: परिवार की सपोर्ट
1: हाँ
0: होना
1: सहारा
0: बहुत
1: होना बहुत
0: ज़रूरी है,
1: जरूरी
0: एक
1: होता
0: औरत के
1: है।
0: लिए स्पेशली।
1: जी जी जी
0: एक औरत को अपना पीछे घर परिवार अपने बच्चे देख के
1: बच्चे
0: आगे अपनी प्रोफेशन लाइफ भी देखनी पड़ती है, तो दोनों को इक्वल बैलेंस बनाने के लिए तो उनके घर वालों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और
1: परिवार के
0: इस
1: साथ के बिना औरत कुछ नहीं
0: बिल्कुल,
1: कर
0: और
1: सकती है
0: इसका
1: ना।
0: श्रेय मैं
1: जी
0: 100% अपने पति को देती
1: जी
0: हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है, जब तक पति साथ ना दे तो औरत आगे नहीं
0: औरत
1: बढ़
0: आगे नहीं
1: सकती
0: बढ़
1: है।
0: पाएगी।
1: बिल्कुल, तो
0: जी
1: थोड़ा सा हम अपनी बातों को फिर यहाँ से रोकते हैं और कार्यक्रम में पहले लेते हैं अंतराल, और अंतराल के ठीक बाद हम फिर से आपको सुनवाएंगे एक और प्यारा
0: जी
1: सा
0: जी
1: गीत, और आपके साथ साथ अपनी सखियों को भी थोड़ा सा मनोरंजन करवाना तो बनता ही है,
0: बनता
1: क्योंकि
0: है जरूर।
1: जानकारियां भी जीवन में जरूरी है। जानकारियों के साथ साथ गीत संगीत हो तो जीवन थोड़ा सा खुशनुमा हो जाता है।
0: बिल्कुल।
2: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
3: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जाँच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जाँच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जाँच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
4: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जाँच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करे, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
5: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी। सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: सीमा, सुना है तुम चेकअप

0: लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: सखी, इस अंतराल और गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रही हैं कार्यक्रम सुना सखी, और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ है हमारी मेहमान अनु शर्मा जी, और बहुत सारी अच्छी जानकारियां एडवोकेट अनु जी हमें दे रही हैं। तो थोड़ा सा और जानकारी उनसे हम लेते हैं और जानते हैं कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न या साइबर अपराध हो तो उससे सबसे पहले अनु जी हमें क्या करना चाहिए?
4: देखो, सबसे जरूरी बात यह है कि डरे नहीं
3: जी,
4: ना चुप रहें, तुरंत 3 कदम उठाएं। फर्स्ट, सुरक्षा पहले।
3: बिल्कुल।
4: अगर जान को खतरा है तो तुरंत 1200 पे इमरजेंसी नंबर पे कॉल करें।
3: जी जी।
4: दूसरी बात यह है कि घरेलू हिंसा, अगर कोई घरेलू हिंसा उनके अगेंस्ट हो रही है तो वो FIR या महिला हेल्पलाइन पे 118 पे कॉल
3: कर सकती है।
4: जी, 108 पे कॉल कर सकती हैं, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के ऑर्डर्स ले सकती हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन सेल बने हैं, वहां जाके वो एक लिखित कंप्लेन दे सकती हैं।
3: बिल्कुल।
4: तो वहां जाके फिर उनकी एक कंप्लेन सुनी जाएगी, फिर उसके ऊपर उनको कॉल की जाएगी, फिर दोनों पार्टियों को बिठा के उनके आपस में रजामंदी कराई जा सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा पहले, घरेलू हिंसा, तीसरा है कार्यस्थल पे उत्पीड़न। जैसे कि आप प्रोफेशनल हो, आप यहाँ पे जॉब करते हो, जैसे कोई भी कार्यस्थल है तो वहां जाके उनके साथ कोई हरासमेंट होती है तो वो चुप ना रहे, वहां पे जाके कमेटी बनती है, कमेटी में शिकायत करें, या फिर एक पोस्ट एक्ट के अंदर वो भी FIR एक्ट केस कर सकते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम और आपसे जानना चाहेंगे अनु जी, क्योंकि आपके पास तो खैर जानकारियों का भंडार है, थोड़ा सा हमें और हमारी महिलाओं को भी आप जानकारी दे रही हैं, तो आज हमें बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिल रहा है। तो आम, जैसे आपने पहले भी बात की कि महिलाओं में एक डर होता है, सामाजिक दबाव होता है या बदनामी के कारण शिकायत दर्ज नहीं करवा पाती हैं, ऐसी महिलाओं से आप क्या कहना चाहती हैं?
4: मैं तो उनको यही कहना चाहती हूँ कि देखो, जो भी आपके साथ गलत आपकी चार दीवारी के अंदर होता है, उसके लिए आवाज़ उठाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे प्रधान बने होते हैं, आप उनसे बात करें, प्रधान के पास जाके। अगर आपको चाहते हैं कि वो कोर्ट कचहरियों में ना आए, वो अपनी एक उसमें होती है कि बेइज्जती ना हो समाज में, तो अपने प्रधान से डिस्कस करें। वो घर सीमा तक, घर में ही सारी प्रॉब्लम की सॉल्व हो सकती है। उसके बावजूद भी जैसे उनको लगता है कि आगे जीवन निर्वाह के लिए हमें कोई खर्चा नहीं मिल रहा है, अगर मतलब हमारी लाइफ उस तरीके से नहीं जी पा रही है, तो वो 1500 पे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकती हैं। वो DLSA लीगल सर्विस अथॉरिटी, आपको पता है कि महिलाओं के पास कोर्ट आने के लिए पहले चाहिए पैसा,
3: पैसा
4: बहुत जरूरी है। तो उनको ये नहीं पता है कि महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रोवाइड करवाई जा सकती है।
3: बिल्कुल, पैसे की बात आपने कही है तो मुझे भी याद आ रहा है कि पैसा जरूर होना चाहिए। जब तक पैसा नहीं जेब में होगा तो हम किसी भी काम को नहीं कर सकते,
4: अंजाम नहीं दे सकते
3: जी। अब थोड़ा सा हमें ये बताएं, आपको देखकर लग रहा है कि आप बड़ी अच्छी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हैं, वैसे हर महिला को निभानी चाहिए, तो घर और पेशे दोनों जिम्मेदारियों के बीच में आप किस तरह से संतुलन बिठाती हैं?
4: संतुलन
3: थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी रहता है ना?
4: चुनौतीपूर्ण तो है, बस थोड़ा सा संयम
3: जी
4: और मैनेजमेंट अपना रखना पड़ता है, हर एक काम को इक्वली डिवाइड करके।
3: थोड़ी सी दिक्कत आती होगी?
4: दिक्कत आती है हाँ, बट पति हस्बैंड है वो मैनेज कर देते हैं हर एक चीज। तो वही है ना कि आपके
3: सही बात आपने कही, अगर हस्बैंड साथ दे थोड़ा सा तो हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकते हैं। और वैसे भी हमारी बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बहनें हैं जो अपनी दोनों कामकाजी और घरेलू जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, और निभानी भी चाहिए।
4: बिल्कुल।
3: तो थोड़ा सा हम भी अपनी जिम्मेदारी को निभा लें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारी बातें कहीं ना कहीं ज्यादा हो रही है और गीत संगीत की थोड़ी सी कमी है। तो थोड़ा सा सुनते हैं कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत, आपको भी सुनवाते हैं और सखियों को भी इंतजार रहता है गीत संगीत सुनने का। तो पहुंचाते हैं अपनी सखियों तक एक और कार्यक्रम का प्यारा सा गीत।

0: सखी इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रही हैं सुनो सखी, और हमारी मेहमान आज स्टूडियो में आई हुई हैं, उनसे हम बहुत सारी जानकारियां ले रहे हैं। तो समय हमारे पास थोड़ा रह गया है, उस समय में भी हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो अनु जी, हमें आप ये बताएं, घर और पेशे के बारे में तो आपने बता दिया, अब ये बताएं कि आज की युवा लड़कियों में जो कानून के क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहती हैं?
1: देखिए, अगर उनके अंदर कुछ गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की आग है
0: जी,
1: तो वो आगे वकालत में आ सकती हैं
0: जी।
1: पर मेरी तो तीन ही सलाहें उनके लिए, एक ज्ञान प्लस हिम्मत, कानून की किताबें पढ़िए, पर साथ में बहस करना, सवाल पूछना भी सीखिए। कोर्ट में आपकी डिग्री नहीं, आपका आत्मविश्वास बोलता है। संवेदना मत खोइए, एक अच्छा वकील सिर्फ केस नहीं जीतता, वो लोगों के दर्द को भी समझता है। क्लाइंट से डीलिंग करना, क्लाइंट की आंखों में आंसू देके उसको भी इमोशनली फर्क पड़े,
0: बिल्कुल,
1: वो जस्ट फाइनेंशियली स्टेटस के लिए क्लाइंट के साथ ना डील करे
0: जी।
1: हार से मत डरिए, शुरुआत में केस कम

0: देंगे, लोग शक करेंगे, मेहनत का फल जरूर मिलता है। हर महिला वकील आपके लिए एक रास्ता आसान कर रही है, अगली पीढ़ी के लिए भी रास्ता बनाइए।
1: जी, अब एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अब बताएं, आप हमारी महिलाएं तीन कानून अधिकारों के बारे में नहीं जानती हैं, तो आप बताएं वो कौन कौन से अधिकार होते हैं?
0: देखिए, समानता का अधिकार,
1: जी
0: समानता का अधिकार में आर्टिकल 14 और 15 कानून की नज़र में महिला और पुरुष बराबर हैं।
1: जी
0: शिक्षा, नौकरी, संपत्ति, वेतन, कहीं भी लिंग के आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
1: बिल्कुल
0: दूसरा, सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार घरेलू हिंसा के अधिनियम 2005 और आईपीएस की धारा 498A,
1: जी
0: 354 और 376, जैसे घर में मारपीट, गाली, आर्थिक तंगी, दहेज की मांग, ये सब अपराध हैं। आपको घर में रहने,
1: जी
0: सुरक्षा आदेश और गुजारे का कानूनी हक है।
1: जी
0: तीसरा है मुफ्त कानूनी सहायता।
1: तो अनु जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें और हमारी महिला बहनों को दी है। अब समय हमें ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे ज़्यादा बातचीत की जाए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर का 1 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल BSF की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का BSF कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. On the occasion, the Prime Minister also dedicated to the nation as well as laid the foundation stone of national highway projects worth over 12,470 crore rupees in Haryana. Mr. Modi dedicated the 157-kilometer-long Delhi-Amritsar-Katra Expressway. The Greenfield Corridor forms part of the 667-kilometer Delhi-Amritsar-Katra Expressway. The expressway will reduce travel time between Delhi and Katra from nearly 14 hours to about 6 hours, while cutting the Delhi-Amritsar journey from about 8 hours to 4 hours. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, over the past 12 years, Indian Railway has witnessed major transformation. He noted that Haryana has witnessed a new phase of development in recent years and has moved forward on the path of progress. Mr. Modi added that the launch of the country's first hydrogen train has given Jind a special place in India's history.
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: Speaking on the occasion, Union Railways Minister Ashwini Vaishnav termed the launch of India's first hydrogen-powered train as a historic achievement in the country's technological advancement. He noted that this milestone is the result of a strong national resolve to develop indigenous hydrogen technology. Mr. Vaishnav emphasized that the train is completely environment-friendly with no requirement for diesel or petrol.
3: इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इस टेक्नोलॉजी को अब और दूसरे सेक्टर्स में भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रक इन कार्स, इन स्मॉल फिशिंग बोट्स, इट कैन बी यूज्ड इन लार्ज माइनिंग ट्रक्स, माइनिंग इक्विपमेंट, इट कैन बी यूज्ड इन डिफेंस आल्सो। सो नाउ वी कैन बेसिकली यूज दिस टेक्नोलॉजी इन मल्टीपल सेक्टर्स विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एनीबॉडी।
1: Prime Minister Modi will visit Jalandhar in Punjab this afternoon, where he will inaugurate and lay the foundation stone of rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. Our correspondent reports that these projects are aimed at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. The Directorate General of Maritime Administration has

0: directed ship owners, ship managers, and recruitment and placement service license companies to avoid deploying Indian seafarers on vessels undertaking voyages through the Strait of Hormuz until further orders. The Maritime Administration has issued an advisory on precautionary measures for the safety and security of Indian seafarers in view of the heightened security situation in the Gulf region. The government has convened a meeting with the floor leaders of political parties in the Parliament this Sunday, ahead of the upcoming monsoon session of Parliament. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of Parliament. The monsoon session will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. The Gujarat Anti-Terrorist Squad, ATS, has arrested five persons in connection with its probe into a terror module of the Pakistan-based Jaish-e-Mohammed outfit. The arrested persons were identified as Bilal Abid Bhai Shera, Mohammed Ayub Kadiwala, Mohammed Palanpuri alias Khali Ayub Sansara, Shafia Rais Mukti and Mohammed Hassan Kardia. The European Union has expressed serious concern over the human rights situation in Pakistan. It has warned that Pakistan's continued access to trade benefits under the Generalized Scheme of Preferences Plus or GSP Plus will depend on its compliance with international commitments under the revised GSP framework from 2027. And with that, we end this news bulletin.
1: FM band 103.4 MHz par hum Akashvani ke धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
2: बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार का एहसास, सपनों का राजकुमार, हाथों में मेहंदी, कुछ उमड़ते जज्बात और उस पल सिर्फ बस प्यार ही प्यार। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत यानी एक छोटी सी सुखांत लघु कथा लग रही है। एक अनुरागिनी किशोरी है, उसके दिल में समाया प्यार का सागर आंखों में उतर आता है। उस मुग्धा की आंखें बोल उठती हैं, धीरे धीरे प्यार की रुत हमारे बाहर ले आती हैं। दिल बेकरार होता है, प्रीतम के बिना कुछ भी प्यारा नहीं लगता। और फिर वो दिन भी आता है जब यादों की पालकी में बैठ कर अपने राजकुमार के नाम से लगी मेहंदी निहारते हुए उस प्रेमिका युवती का इंतजार संपन्न हो जाता है। इतनी सहज सुंदर प्यार भरे स्वप्निल अनुभूति के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी इबारत लिखने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि चाहत की नदियां जब दिल के साहिल से टकराती हैं तो रूह में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। खामोश निगाहें भी तब धड़कनों का हाल बयां करने लगती हैं। सचमुच जब जिंदगी में किसी खास की आमद होती है तो फिजाओं में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की खुशबू महकने लगती है। तब बेकरार दिल बस यही पुकारता है, ओ मेरे दिल के चैन तुम्हारे सिवाय इस जहां में मेरा कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। बहुत सुंदर आपने अपनी बात लिखी है, अपनी तहरीर लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि तेरे नैनों की गहराई में उतरा हूं, जब से लगता है ये दिल बन गया है जैसे कोई प्यार का सागर बहती है जहां सदा अश्कों और जज्बातों की लहरें। मैं गा रहा हूं बस यही धुन, तू ही प्यार का सागर है जब से छाई है तुम्हारे हुस्न की ये बहार। बदल सा गया है हर मौसम, बन गया है प्यार का मौसम मेरे राजकुमार। सज गई है हाथों में तुम्हारे चाहत की लकीर, जैसे सजी हो मेरे महबूब की मेहंदी। देखा दुनिया की इस भीड़ में गुम है मेरी दुनिया, क्योंकि मेरी आंखों में बसा है सिर्फ प्यार ही प्यार। खोया रहता है मैं अब तो बस तुम्हारे ख्यालों में, और दिल गुनगुनाता है चांद की चमक हुए तारों की छांव। इन हसीन नजारों में तुमसे अच्छा कौन है, तुम्हारी इस दिलकश अदा पर फिदा है सारा जहां, बस एक ही धड़कन गूंजे तुमसे अच्छा कौन है। अरे वाह, हम भी आपसे ये कहेंगे कि हमारे श्रोताओं से अच्छा कौन है। तो चलिए बढ़ते ही थोड़ा सा आगे और सुनते हैं आज का ये दूसरा शीर्षक गीत। आवाज़ें आशा भोंसले और किशोर कुमार की है। फिल्म का नाम है आंखों ही आंखों में। गीतकार हसरत जयपुरी हैं और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

जी, तो ये गाना था फिल्म आंखों आंखों में का। आवाजें आशा भोंसले और किशोर कुमार की थी। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। हमारे श्रोता लिखते हैं कि लालायत दिलों को लुभाती प्रेम रस से लबरेज इबारत है, हुस्नो इश्क को प्रीत की रीत का राहत दिखाती है। प्रेम रोग से पीड़ित दिलों को राहत प्रदान करते हुए प्रेयसी के हाथों की मेहंदी सजाकर अंततो गत्वा सुखद समापन करती है। यादों में ही सही बारात का जिक्र प्रेमी युगल को लाभान्वित करेगी। प्रेमारंभ से प्रेम बंधन तक का सफर तय करने का सुखद अनुभूति प्राप्त करने की हसरत लिए हम श्रोतागण भी आतुरता से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, आप इंतजार करते हैं हमें पता है, और इस सुरीले सफर में हमारे साथ रहते हैं अंत तक, हमें ये भी पता है। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर आज की इबारत हमारे सभी श्रोताओं ने भेजी है। किसे पढ़ूं किसे नहीं समझ होता है, कई बार ऐसा लगता है क्या पढ़े और क्या ना पढ़ पाए। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार का सागर लहरा रहा है, जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। आपने अच्छा उन गीतों को आपने लिख दिया है और कहा है कि आंखों आंखों में बातें होती हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और महबूब के हाथों में मेहंदी सजती है, यादों की बारात लिए सपनों का राजकुमार आता है। आज की इबारत एक पूरी प्रेम कहानी है जिसे हम सभी श्रोता आज की प्रस्तुता हमारे नाम से लिखा है आपने के मुखारविंद से सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे, और आप इस वक्त मुझे सुन भी रहे हैं, हमें सुन रहे हैं विविध भारती के जरिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सब गाने लिख दिए गए हैं, इसलिए आज का सुरीला सफर बहुत ही आसान हो गया है। हमने आपसे क्या कहा था कि चलिए इस आसान सफर में हमारे साथ चलिए, आज डरिए मत, कहीं कुछ नहीं है, कांटे पथरीले पथ कुछ नहीं है, सब कुछ

आसान है, सरल है। तो आप तैयार हो गए हैं ना हमारे साथ चलने के लिए? कुछ श्रोता तो हमारे साथ चल भी दिए हैं। देखिए आप लिख भी रहे हैं कि जब प्रेम सच्चा होता है तो आंखें ही दिल की आवाज़ बन जाती हैं, बिना कुछ कहे अनगिनत बातें हो जाती हैं। मेहंदी का रंग, यादों की बारात और दिल की पुकार सब मिलकर यही कहते हैं कि सच्चा प्रेम एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचता है। यही इस इबारत का सबसे कोमल और दिल को छू लेने वाला एहसास है। नींद कहाँ आती है जब लग जाती है महबूब की मेहंदी हाथों में। और अब हम आपसे दो सवाल करने वाले हैं जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है ना? हमारा पहला सवाल आपसे बिल्कुल सीधा साधा कि आपको कौन से या कौन सा एक शीर्षक गीत का नाम लिखकर भेजिए। कौन सा शीर्षक गीत है जो आपको बेहद पसंद है? और हमारा दूसरा सवाल कि कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत वर्ष 1949 यानी 1949 में आई एक फिल्म में लिखा गया था, तो आपको बताना है कि वो फिल्म कौन सी थी और इसके गीतकार कौन थे, क्योंकि वो आगे चलकर महान गीतकार कहलाए। और सबसे बड़ी बात कि 1949 में आई इस टाइटल ट्रैक की सफलता इतनी बड़ी थी दोस्तों कि इसके बाद से ही टाइटल सॉन्ग्स का चलन बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत तेजी के साथ चलना शुरू हो गया था। तो आपको बताना है कि 1949 में आई इस फिल्म का नाम क्या है और उसके महान गीतकार कौन थे। तो अगला गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म का, आवाज हमने लता मंगेशकर की चुनी है, गीतकार हसरत जयपुरी हैं और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये शीर्षक गीत सुना। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज पहली बार मंदाकिनी जी की इबारत भी लंबी है। लंबी इबारत हो तो मैं कार्यक्रम नहीं सुनता, पर आज अवश्य सुनूंगा, क्योंकि मंदाकिनी जी की अविरल कलकल बहती नदी जैसी आवाज की वजह से क्या बात है। जैसे अरे लता मंगेशकर जी का हर गाना सुना जा सकता है उनकी आवाज की वजह से, चाहे गीत के बोल और संगीत कैसा भी हो, तब कोई भी गाना बुरा नहीं लगता। उसी प्रकार लंबी इबारत को भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन केवल आज तक। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन एक बात बताइए, इबारत तो बहुत छोटी सी थी। हम तो कोशिश यही करते हैं कि जितनी कम शब्दों में अपनी बात कही जाए वो ज़्यादा बेहतर, और हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हमारी इबारत थोड़ा सरल हो, ताकि हमारे श्रोता जो हैं परेशान नहीं हो और इस सुरीले सफ़र में हमारे साथ अंत तक बने रहें, है ना। एक श्रोता ने लिखा भी है इसके बारे में, आगे मैं उनके विचार पढ़ने वाली हूँ, बड़ा ही मस्त लिखा है उन्होंने। वहीं एक श्रोता अभी लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम भीगतावासा प्यारा सा है, नमस्कार आपको, हमारा आज की इबारत तो पूरी प्यार से भरी है, आपके साथ दोपहर 1 बजे मज़ा दोगुना हो जाएगा, और आपने आज की टेक्स्ट से निकलने वाले संभावित शब्दों पर गाने भी लिखे हैं जो लगभग मुझे लगता है सारे ही सही हैं ऐसा लग रहा है। एक आध गाना शायद नहीं हो सकता, बाकी आप खुद चेक कीजिएगा कि हमारी जो गानों की आज महफिल में हमने चुने हैं गीत, वो आपके गीतों से मेल खा रहे हैं या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में प्रेम की गहराई का वर्णन खूबसूरती से किया है, फिल्मों के नाम को जोड़कर सुंदर गानों से इस एहसास को और मजबूत किया गया है। आपने भी फिल्मों के बहुत सारे नाम लिखे हैं, लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा तू प्यार का सागर है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये गाना फिल्म सीमा का है ना, और हमने आज चुना है शीर्षक गीतों का कार्यक्रम, यानी प्यार का सागर जब हमने गीत बजाया था तो उसकी फिल्म का नाम भी था प्यार का सागर, है ना, समझ आए ना आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में प्यार का सागर उमड़ने वाला है, वो भी किसी की आंखों में, और फिर आंखों ही आंखों में बात होगी, तो प्यार की बरसात होना बहुत ही लाजमी है। दिल आशिकाना होकर किसी को याद करेगा तो महबूब की मेहंदी सुंदर हाथों में लग जाती है, क्योंकि यादों की बारात लेकर राजकुमार जी आने वाले हैं। प्यार का सागर देखा है किसी के, ये गीत तो जरूर बजना चाहिए, बज भी गया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में फिल्मों के नाम और गीतों की पंक्तियां हैं, ये केवल हमारी भावनाओं का आईना ही नहीं बल्कि प्रेम की सच्ची भाषा है। इनमें प्रेम की मिठास, बिछड़ने का दर्द, मिलने की खुशी, यादों की गर्माहट है। जब दिल में प्यार का सागर हो, हाथों में महबूब की मेहंदी का रंग हो, साथ में यादों की बारात हो, तब जिंदगी किसी खूबसूरत फिल्म से कम नहीं होती। कितना सुंदर लिखा है आपने, और मुझे लग रहा है कि जब आज प्रेम उमड़कर आया है इस सफर में, तो लोगों के दिल से प्रेम की बौछारें होने लगी हैं, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रेम हमारी जरूरत है, ये प्यार है ना, ये स्नेह, ये इश्क, अलग अलग तरीके से किया गया जो प्यार है, अलग अलग रिश्तों में किया गया प्यार है, लेकिन मूल भाव उसका है प्यार, जिसकी हर इंसान को, हर प्राणी को बहुत ज़रूरत है। आप देखिए आपने कितने सुंदर विचार लिख डाले हैं आज प्यार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्यार का मौसम फिल्म का ये शीर्षक गीत सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। इससे पहले हम अपने सवालों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमने आपसे पूछा था छोटा सा सवाल कि आपको कौन सा शीर्षक गीत पसंद है, किसी एक गीत का जिक्र आपको करना है, और हमारा दूसरा सवाल ये था कि कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत 1949 में आई एक फिल्म से लिखा गया था, आपको बताना है ये फिल्म जो 1949 में आई थी वो कौन सी थी, इसके गीतकार जो कि महान गीतकार कहलाए वो कौन थे, क्योंकि उनकी भी ये पहली ही फिल्म थी। इतना हमने आपको क्लू दे दिया है, हिंट दे दिया है, और हाँ 1949 में आई इस टाइटल ट्रैक की सफलता हुई वो इतनी बड़ी थी दोस्तों कि इसके बाद से ही टाइटल सॉन्ग्स का चलन तेजी के साथ शुरू हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।

जी हाँ, यह है फिल्म का नाम प्यार का मौसम। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

हमारे श्रोता का लिखना है कि आज कुछ इस प्रकार के गीत बजने वाले हैं जो कि दिल की गहराइयों को छू जाएंगे, जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी गहराई से इस बात को समझा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत की पहली सवा दो लाइन में चार फिल्मों के नाम और फिल्मी गीत लिखे गए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो इबारत में ही

मतलब आपको हिंट दी जाती है कुछ इबारतों में कि आज क्या बजने वाला है ना। तो इसे आप हिंदी का पेपर, एमए हिंदी का पेपर नहीं समझें। ये वाकई एक दिलचस्प प्रोग्राम है जहाँ सिर्फ हमें उस सुरीले सफ़र का आनंद लेना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से हमने जो शब्द चुना वो है प्यार। प्यार के बिना तो पूरी इबारत मानो सुनी। प्यार शब्द ने इस इबारत को बड़ा ही प्यारा बना दिया है। प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जितना इसे बांटा जाए उतना ये दिलों में बढ़ता है। कुछ एहसास शब्दों में नहीं समाते हुए बस मुस्कान बनकर, चेहरों पर अपनत्व बनकर रिश्तों में उतर जाते हैं। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस अपनापन मांगते हैं। दो मीठे शब्द, एक सच्ची मुस्कान और दिल से निकला एहसास। बहुत गहरी बात आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब दिल में प्यार का सागर उमड़ता है तो आंखों में ही अनकही बातें होने लगती हैं। फिर जीवन में प्यार का मौसम दस्तक देता है और मन बरबस कह उठता है, तुमसे अच्छा कौन है। बिछड़ने और मिलने के बीच भी दिल ने फिर याद किया कि मधुर धुनें दिल में गूंजती रहती हैं। जब रिश्तों की डोर और गहरी होती है तो हाथों में मेहंदी सजती है और खुशियों की यादों की बारात साथ लेकर सपनों का राजकुमार जीवन में प्रवेश करता है। यही तो प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर तरीके से आपने इबारत पेश की है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार कोई बड़ा इजहार नहीं बल्कि छोटी छोटी बरवाहों का नाम है। किसी की मुस्कान की वजह बन जाना, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना, हर हाल में उसका साथ निभाने की चाह, यही तो सच्चे प्यार की सबसे खूबसूरत पहचान। एक प्यारी सी बात, सच्चा प्यार फूलों की खुशबू की तरह होता है। उसे जोर से पकड़कर नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसका एहसास लंबे समय तक दिल में महकता रहता है। सच मानिए, आपका ये प्यार भी हमारे दिल में महकता है। और देखिए, इसलिए तो हम अब जो गीत लेकर आए हैं उसमें सिर्फ प्यार होगा। हाँ, फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

जी हाँ, हमारे श्रोताओं ने हमारे सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। एक श्रोता लिखते हैं कि शायद आपका जो सवाल है कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत किस फिल्म के लिए लिखा गया, शायद फिल्म बरसात है और बरसात में हमसे मिले तुम सजन ये गीत हो सकता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया का सबसे पहला शीर्षक गीत फिल्म बरसात से था और इसके गीतकार थे शैलेंद्र। जी हाँ। और वहीं श्रोताओं ने और भी अपने सवालों के जवाब में लिखा है कि संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सलमान खान की फिल्म साजन जब रिलीज होने वाली थी उसके थोड़े दिन पहले ही साजन फिल्म का टाइटल सॉन्ग लिखा गया और फिल्माया गया और फिल्म में डाला गया था, यानी ये गीत इन्हें बेहद पसंद है फिल्म साजन का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा शीर्षक गाना है फिल्म नजराना का, जिसे मोहम्मद रफी ने गाया, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार रवि हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही प्यारा गीत चुना है। एक प्यासा मुझे मैखाना दिए जाता है, जाते जाते भी ये नजराना दिए जाता है। बहुत सुंदर गीत है रफी साहब की आवाज़ में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शायद 1949 में आई फिल्म बरसात पहली फिल्म थी जिसमें शैलेंद्र जी ने बरसात में जब मिले हमसे तुम सनम तुमने ये गाना लिखा था। बिल्कुल सही जवाब है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सर्वाधिक शीर्षक गीत लिखने का रिकॉर्ड भी शैलेंद्र के नाम पर ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपके सवालों के जवाब हैं बूंद जो बन गई मोती, ये शीर्षक गीत सटीक इसलिए बहुत प्यारा लगता है, यानी बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का जो गीत है वो आपको पसंद है शीर्षक गीत। वहीं आप लिखते हैं कि दूसरा बरसात में हमसे मिले तुम सजन 1949 का पहला शीर्षक गीत है और गीतकार थे शैलेंद्र। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 1949 में सबसे पहली फिल्म बरसात में शैलेंद्र जी ने बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम इस गीत की रचना की थी, जिसे शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही सरल और प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात शीर्षक गीत मुझे पसंद है, पर इसके अलावा भी पसंदीदा गीतों की लिस्ट बहुत लंबी है, हम आपके हैं कौन ये गाना भी हमें बहुत पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि 1949 की प्रथम टाइटल संगीत राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म बरसात में मिले हमसे तुम सजन ये गीतकार शैलेंद्र की रचना है जो सबसे पहली मानी गई है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पसंदीदा शीर्षक गीत है दिल मेरा एक आस का पंछी, बहुत सुंदर गीत है ये। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने मेरा मनपसंद गीत जब प्यार किसी से होता है बजा ही दिया है, ये गीत मुझे बहुत पसंद है। और एक श्रोता को दीवानो अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन मैं हूँ डॉन डॉन, यानी डॉन फिल्म का गीत इन्हें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि अखियों के झरोखों से आश्चर्य की बात है कि जिनकी आंखों की ज्योति बचपन से बुझी हुई थी ऐसे महान गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन ने इसकी रचना की, ये गाना टॉप गाना था और इन्हें बहुत पसंद है ये गाना। और एक श्रोता को यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे जो हमारी लिस्ट में शामिल है, ये गाना बेहद पसंद है। और एक श्रोता को सफ़र फिल्म का गीत है जिंदगी का सफ़र, ये कैसा सफ़र कोई समझा नहीं, बहुत पसंद आता है। वहीं श्रोताओं को बहुत सारे गीत पसंद आए हैं, किसी को महबूब की मेहंदी फिल्म का टाइटल गीत बहुत पसंद है और किसी श्रोता को दिल एक मंदिर का टाइटल गीत पसंद है। वहीं श्रोता ने लिखा है कि आपके सवालों का उत्तर हमने दे दिया है फिल्म बरसात और सवाल के उत्तर यानी शैलेंद्र। अरे, हमने कोई प्रश्न पत्र थोड़ी रखा, ये तो

0: हमारे कार्यक्रम के सवाल हैं जो हम सभी पूछते हैं अलग अलग तरीके से। कभी पूछा जाता है कि इस फिल्म का नायक कौन है, कभी पूछा जाता है नायिका कौन है, इस फिल्म में क्या था, आपने इस फिल्म को क्या देखा। तो हमारा सवाल भी इसी तरह से होता है कि आपकी पसंद का कोई शीर्षक गीत हो तो बताइए, या हमारी फिल्मी दुनिया में पहला शीर्षक गीत कब लिखा गया। तो इस तरह से ये सवाल जवाब ही इस कार्यक्रम को, इस सफ़र को अच्छा बनाते हैं, ऐसा हम मानते हैं और यकीनन आप भी मानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का शीर्षक गीत। रचनाकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: कभी हमने नहीं

सात दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर पिघल जाएगा, देखो तुमसे अच्छा।

और जान हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा कौन।

प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा पानी।

0: है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा कौन है, कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा कौन, देखो तुमसे अच्छा कौन है, देखो तुमसे अच्छा कौन है।
1: जी, तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुहाना सफर में

सबसे शुरू हुआ नियमित सुनता हूँ, इसमें बार बार वही घिसे पीटे गीत और विषय रिपीट हो रहे हैं। 70-80 के दशक गीत बिल्कुल नकार दिया, वही सुनकर बोरियत लगती है, जिसमें रहस्य शिक्षा प्रेरणा हो वर्तमान जीवन को लाभान्वित करे। आपको क्या आज के गीत भी पसंद नहीं आए, हम बताइएगा हमें। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ ऐसे गीत बजाए जाएं जो आपको अच्छे लगते हैं और कार्यक्रम में रोचकता लेकर आएं, है ना। आज के गीत आपको कैसे लगे इसके बारे में बताइएगा। हो सकता है आपकी पसंद हमारी पसंद से न मिलती हो, लेकिन हमारा उद्देश्य हमेशा बहुत ही सकारात्मक होता है कि हमारे श्रोताओं का हम उद्घोषक कितना अच्छा मनोरंजन कर सकते हैं, वही कोशिश हमेशा यानी हर बार होती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जब तक खुद को प्यार का सच्चा मतलब न पता हो तो प्यार महबूब महबूबा मौसम झरना पानी पहाड़ फूल सावन ये सिर्फ शब्द होते हैं, लेकिन जब सच्चा प्यार होता है तो इन शब्दों में पूरा जीवन दर्शन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही सुरीला है, मैं ट्रेन का सफर कर रही हूँ, ये सफर और साथ में विविध भारती का साथ सफर और भी सुरीला हो गया है। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, बादल भी लुका छिपी खेल रहे हैं, बहुत सुंदर। आप कार्यक्रम भी सुन रही हैं और प्रकृति को भी महसूस कर रही हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार का सागर जब आंखों में उमड़ता है तो दिल गहरे एहसास से लबालब हो जाता है और तब यहाँ हृदय की भाव विवल अवस्था बन जाती है, जहाँ प्रियतम प्रेम में रस की अनुभूति को गहराई से महसूस करने लगता है और उनके आपस में संवाद शब्दों से नहीं होते, क्योंकि इस परिस्थिति में शब्द मौन हो जाते हैं। आंखों आंखों में जो संवाद होता है उसकी अलग भाषा होती है और किसी भी व्याकरण की सीमा से परिभाषा होती है, न कोई अल्प विराम न पूर्ण विराम, बस आंखें बोला करती हैं और आंखें ही सुना करती हैं। क्या बात है, बहुत खूब। यहाँ प्रेम की अवस्था दिव्य रोशनी के साथ उनके प्रेम को एक अलौकिक आनंद से परिपूर्ण कर दिया करती हैं। यहाँ एक गीत की पंक्तियां साझा कर रहा हूँ, होठ झुके जब होठों पर सांस उलझी हो सांसों में, दो जुड़वा होठों की बात कहो इन आंखों में, मेरी जा मुझे जा न कहो। अरे वाह, फिल्म अनुभव का गीत आपने लिखा है और बहुत ही सुंदर आपने अपनी बात अपनी इबारत लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और महबूब की मेहंदी हाथों में लगा लेते हैं। आवाज़ें लता मंगेशकर, हेमलता और साथियों की, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बोल।

जी, तो हमारी श्रोता लिख रहे हैं कि आज आपके द्वारा प्रस्तुत की गई इबारत और गीतों में प्यारी प्यार से लबालब है और झलक रहा है। मेरी माता रानी से तहे दिल से प्रार्थना है कि सभी की झोली और जीवन में सच्चा प्यार बढ़े, ये मेरी दुआ है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत आपकी मधुर उत्स्फूर्त पेशकश और सभी शीर्षक गीतों को हम शीर्षक दे रहे हैं परिपूर्ति। वाह क्या बात है, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई एक गीत नहीं अपितु विषय के अनुसार विभिन्न प्रकार के गीत हमें प्रिय हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि से अच्छा कौन है, बल्कि विविध भारती से अच्छा कोई नहीं हो सकता। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर अपने पूरी रफ्तार से मुकाम की ओर है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं और उन सभी श्रोताओं से हम थोड़ा सा मुआफ़ी मांगते हैं कि उनकी जो पसंद है, उन्होंने लगातार, बहुत सारे श्रोताओं ने अपने शीर्षक गीतों की पसंद हम तक लिखी है, लेकिन कार्यक्रम में समय का अभाव है, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा कि हम उन बातों को शामिल करें। बहरहाल कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, अंतिम पेशकश ये है।

जी हाँ, हमारे आंगन में भी इसी तरह हम नाचेंगे गाएंगे और नए सुरीले सफर पर फिर निकल पड़ेंगे किसी एक दिन और, है ना। तो तब तक के लिए, यानी उस नए सुरीले सफर में चलने तक के लिए, मंदाकिनी जोशी को दे दे इजाजत, फिर मिलूंगी। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 37वीं कड़ी।

0: वंदे मातरम, ये शब्द और इस गीत को व्यापक रूप से लोगों के सामने लाने का, या यों कह लें सबसे पहले जन जन तक पहुंचाने का श्रेय श्री अरविंद घोष को ही दिया जाना चाहिए। बंकिम चंद्र जी के साहित्य और वंदे मातरम में निहित दर्शन का, राष्ट्रवाद का प्रचार श्री अरविंद ने वंदे मातरम इस अखबार के माध्यम से बहुत असरदार तरीके से किया। वंदे मातरम के लिए लिखते हुए श्री अरविंद की साहित्य प्रतिभा कुछ अधिक ही जागृत हुई। वंदे मातरम पत्र के संपादक रहते हुए श्री अरविंद पर मुकदमा दायर हुआ, परंतु कागजों में आधिकारिक रूप से संपादक के तौर पर उनका नाम नहीं था, इसलिए न्यायालय में यह सिद्ध नहीं हो सका कि वंदे मातरम के संपादक वही हैं। उस मुकदमे के कारण श्री अरविंद को देश भर में सब जानने लगे और वंदे मातरम पत्र की बिक्री और भी बढ़ गई।
1: अगस्त 1907 के वंदे मातरम के अंक में उन्होंने नेशनल कॉलेज के छात्रों के सामने दिया गया अपना भाषण लेख के रूप में प्रकाशित किया था। उसमें उन्होंने कहा था,
2: हमारी मातृभूमि के इतिहास में आज ऐसा समय आ चुका है कि उसकी सेवा के सिवा अन्य सभी कुछ गौण हो जाता है और सभी की शक्तियों का उस एक ही जगह केंद्रित होना आवश्यक हो जाता है। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो वो उसी के लिए करें। अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्तियां मातृभूमि की सेवा के लिए खर्च करें। केवल उसी के लिए आप धनार्जन करें। आपकी महानता का उपयोग अंततः मातृभूमि के लिए ही होना चाहिए, इतना कि उससे देश बड़ा हो जाए, इतना बड़ा कि पूरे संसार के राष्ट्रों में उसका सिर सबसे ऊंचा रहे। प्राचीन काल में जैसे अन्य सभी देश मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर ही देखते थे,

0: वही जगह आपको उसे फिर से दिलानी होगी।
1: वंदे मातरम के लिए लिखा गया बहिष्कार की नैतिकता ये लेख सरकार ने जब्त कर लिया और अलीपुर मुकदमे में सबूत के तौर पर पेश किया था। उस लेख में श्री अरविंद ने लिखा था,
0: राजनीतिक नैतिकता में न्याय और सात्विकता का स्थान है, ये सच है, परंतु वो नैतिकता एक योद्धा की नैतिकता होती है, धर्मगुरु की नहीं। अकारण किया गया आक्रमण अन्यायपूर्ण साबित होता है, दुष्ट हेतु से की गई उन्मत्त हिंसा भी निंदनीय है, लेकिन कोई तकनीकी नियम सभी कृतियों पर एक साथ लागू करना और उन्हें आपत्तिजनक कहना दर्शन का उपहास है, या उस दर्शन के किसी एक वाक्य की चौखट में संपूर्ण मानव जीवन को ठूंसने का प्रयास भी निंदनीय ही।

लेकिन कोई तकनीकी नियम सभी कृतियों पर एक साथ लागू करना और उन्हें आपत्तिजनक कहना दर्शन का उपहास है, या उस दर्शन के किसी एक वाक्य की चौखट में संपूर्ण मानव जीवन को ठूंसने का प्रयास भी निंदनीय ही।

0: सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जींद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को, भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: रेल परिवहन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की रेल व्यवस्था हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी से संचालित होगी। उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन ट्रेन ने जींद सोनीपत मार्ग पर लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय करना शुरू कर दिया है और भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभरा है।
1: आज जींद बीजेपी एनडीए के सुशासन मॉडल की तस्वीर बन रहा है। बीते वर्षों में पूरा हरियाणा ही विकास की नई पटरी पर चल पड़ा है। आज का ये कार्यक्रम डबल इंजन की बीजेपी सरकार के इसी मिशन को नई ऊर्जा से भर रहा है।
0: इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: राज्य सरकार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं के विकास और विशेषज्ञ मानव संसाधन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या 277 से बढ़ाकर 597 करने का प्रस्ताव रखा है। इससे प्रदेश के छात्रों को राज्य में ही स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के अधिक अवसर मिलेंगे। इस विस्तार को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वर्षों में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर विशेषज्ञ के 218 नए पद भी सृजित किए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि इसके अलावा 4 नए ई डिपो भी शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे। अग्निहोत्री ने अधिकारियों को आवश्यक सामग्री की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ पहले से ही वैकल्पिक प्रबंध करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी परिस्थिति में बसों का संचालन बाधित न हो। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और नए ई डिपो शुरू होने से प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने कांग्रेस सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल को निराशाजनक करार दिया है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य ठप पड़े हैं और मुख्यमंत्री काम करने के बजाय भविष्यवाणियां कर रहे हैं ताकि अपनी नाकामियों को छिपाया जा सके। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चार्जशीट लेकर आएगी और इस चार्जशीट को लेकर जनता के बीच जाएगी ताकि सरकार के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया जा सके।
3: पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे थे, चुनावों के बीच में रातों रात नियम कानून बदलने का काम भी इसी सरकार ने किया। कानून व्यवस्था, उसके साथ युवाओं के साथ धोखा, जो इन्होंने वायदे किए थे, इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक चार्जशीट के लिए कमेटी भी गठित की है और इसमें इन सारे मुद्दों को इकट्ठा करके वर्तमान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो है चार्जशीट तैयार करेगी।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन

0: सकते हैं साय 6 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद आकाशवाणी शिमला से लीजिए प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। आज का विषय है स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देना बन रहा विकसित भारत की ओर व्यवहारिक रास्ता। वाचिका है प्रभा शर्मा।
2: वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता, ऊर्जा की बढ़ती मांग और जलवायु से जुड़ी गंभीर चुनौतियों के इस दौर में भारत को स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों का निर्माण करने की आवश्यकता है। देश में स्वच्छ व अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित, सस्ती व भरोसेमंद होने के साथ साथ विकास संबंधी जरूरतों तथा आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप ऊर्जा प्रणाली की जरूरत है और हाल ही के वैश्विक ऊर्जा संकटों के बीच ये जरूरत अपनी प्रबलता के स्पष्ट संदेश दे रही है। स्वच्छ ऊर्जा वो विकल्प है जो ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से तेजी से अहम होती जा रही है। ये वैश्विक ईंधन बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव से पैदा होने वाले जोखिमों को कम कर सकती है, ऊर्जा को अपेक्षाकृत अधिक सुलभ बना सकती है, रोजगार सृजित कर सकती है, घरेलू उद्योगों को मजबूत कर सकती है और देश को अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ बना सकती है। भारत सरकार इस क्षेत्र को लगातार बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। पिछले दशक में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत 2,66,00,000 घरों को बिजली के कनेक्शन दिए गए। इससे सभी तक बिजली पहुंचाने का काम आगे बढ़ा और ग्रामीण व कम सुविधा वाले इलाकों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 105 मिलियन से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इससे खाना पकाने के साफ सुथरे तरीकों को बढ़ावा मिला, घर में सेहत बेहतर हुई और कठिन श्रम का बोझ कम हुआ। ये पहल एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित करती है। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने को केवल स्थापित मेगावाट या जोड़ी गई क्षमता के आधार पर नहीं मापा जा सकता, बल्कि इससे पैदा हुए अवसरों, सुदृढ़ हुई आजीविका और बेहतर हुए जीवन स्तर के आधार पर भी मापा जाना चाहिए। देश में लोगों को प्राथमिकता देने वाले इस दृष्टिकोण के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर सहयोगी बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। भारत की स्वच्छ ऊर्जा की कहानी में नवीकरणीय ऊर्जा अहम हो गई है। सौर और पवन ऊर्जा को तेजी से अपनाया जा रहा है। इनकी पूरी क्षमता का लाभ लेने के लिए भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में सहायता प्रदान करने वाली ट्रांसमिशन, वितरण, भंडारण और ग्रिड प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। ट्रांसमिशन संबंधी बुनियादी ढांचे का निरंतर विस्तार हुआ है। इसके साथ साथ ऊर्जा के भंडारण और ग्रिड की सुदृढ़ता के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा है। वितरण संबंधी सुधारों और उन्नत ग्रिड तकनीक को अपनाने से एक ऐसी बेहतर व भरोसेमंद ऊर्जा प्रणाली बनाने में मदद मिली है जो नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी को समन्वित करने में सक्षम है। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित क्षमता अब 288 गीगावाट से अधिक हो गई है। बड़े पैमाने की परियोजनाओं के अलावा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां जैसे कि रूफटॉप सोलर, सोलर पंप, मिनी ग्रिड और माइक्रो ग्रिड ग्रामीण और कम सुविधा वाले इलाकों में स्वच्छ ऊर्जा को और अधिक सुलभ बना रही हैं। ये प्रणालियां सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज, स्कूलों, हेल्थ केयर सेंटरों तथा स्थानीय व्यवसायों को मदद पहुंचाने के साथ साथ ग्रामीण आजीविका और स्थानीय आर्थिक सुदृढ़ता को भी बढ़ावा दे रही हैं। ये सोलर प्रणालियां आज देश सहित हिमाचल में भी दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में खूब पसंद की जा रही हैं। भारत की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बड़े पैमाने पर इस दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस योजना से अब तक देश भर में लगभग 40 लाख परिवारों को लाभ हुआ है, जिससे उपभोक्ता अपेक्षाकृत अधिक विकेंद्रीकृत व भागीदारी वाली ऊर्जा प्रणाली में योगदान देने वाले बन पाए हैं। हालांकि स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में वित्त पोषण सबसे अहम तत्वों में से एक बना रहेगा। इन संभावनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने तथा बैंक से ऋण पाने योग्य परियोजनाओं में बदलने हेतु सस्ती और दीर्घकालिक पूंजी की जरूरत होती है।
1: सामयिक चर्चा आकाशवाणी शिमला से प्रसारित की जा रही थी। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर यानी 774 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। 3:10 हुए हैं। कुल्लू और कल्पा रिले केंद्र
1: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
2: पूजा जी की, फिर आपकी, ममता दीदी की, इन सबकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे। बस सब तक पहुंचा देगा।
3: बिल्कुल, आप पहुंच गई सब तक आपकी आवाज। तो आप ये बताइए कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा?
2: मैडम, मैं तो खाने में बिरयानी है, चीजें खा लेती हूँ। बिरयानी, दाल पुलाव, खिचड़ा। खिचड़ा हमारे में बहुत बनता है।
3: अच्छा अच्छा, तो चलिए और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
2: मेरे घर में तो मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरा अब्बू है।
3: अरे वाह, तो सब लोग साथ में रहते हैं।
2: जी, मेरी ऐसे शादी नहीं है, मेरी दीदी की हो गई है।
3: अच्छा अच्छा, आपको कौन सा गीत सुनना है?
2: हेलो सहेली में मैं वो गाना पसंद करती हूँ, बॉडी गार्ड का।
3: अच्छा अच्छा, आपको बॉडी गार्ड का गाना सुनना
2: है। कहानी है मुश्किल।
3: अच्छा ठीक है, तो आपके पसंद का हम ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप पहले तो अपना नाम और कौन से शहर से बोल रही हैं ये बताइए।
1: आरती जी, आप तो हमारे ही बेटी का नाम भी आरती ही है और वो आपका प्रोग्राम बहुत ही सुनती रहती है।
0: तो अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है, 4 बजे तक सुनती रहती है और बोलती है मेरा नाम आया से गाना आया तो बहुत मजा आता है उसको। अच्छा। इसके लिए मुझे बोलती है कॉल लगा।
0: अच्छा तो कितनी बड़ी है आपकी बेटी?
1: मेरी बेटी मंदबुद्धि की है ना, इसके लिए वो चल नहीं पाती।
0: अच्छा,
1: थोड़ी मंदबुद्धि की, अभी 30 साल की हुई, अभी अभी इसकी बर्थडे हुई गई।
0: अरे वाह, तो उसको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और बताइए अब आपको मतलब क्या करना अच्छा लगता है अपनी बेटी के साथ? अब जब समय बिताती हैं तो किस तरीके से दिनचर्या रहती है?
1: मेरा उसको तो क्या है कि नक जो है ना वो रंगोना शायद भी उखड़ जाए ना तो नक पॉलिश रंगवा लेती। चूड़िया तो 40-50 चूड़िया पहनती है।
0: अच्छा, तो
1: और
0: अच्छा लगता है उसे तैयार होना अच्छा लगता है?
1: हाँ, उसको तैयार होना, कपड़ा 2 टाइम नहाना खाना, तो
0: अरे वाह,
1: जो मांगे वो देना,
0: बहुत बहुत अच्छी
1: उसकी
0: बात
1: ही
0: है।
1: शरारत में हमारे पूरा दिन निकल जाता
0: नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है अपने अपने आप से प्यार करना, है ना? अपने आप से प्यार करना सबसे पहले ज़रूरी होता है और बहुत अच्छी चीज़ है। वो
1: क्या
0: सजती हैं, संवरती है, अपने आप को अच्छा महसूस करती है, बहुत ज़रूरी है ये।
1: क्या है कि मैम, मेरा एक लड़का है बड़ा और वो अभी शादी हुई, लड़की हुई, वो दूर रहता है। और अभी एक मेरी लड़की की शादी हुई प्रियंका,
0: अच्छा,
1: आजवा रोड पे,
0: अच्छा, बहुत बहुत
1: उससे
0: आपको
1: छोटी
0: बधाइयाँ।
1: थी।
0: और आपकी मतलब बेटी को ये तैयार होना अच्छा लगता है, उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, कुछ ऐसी बनाना या कुछ इस तरीके की चीजें करना?
1: नहीं, ये सब नहीं। उसको तो क्या है कि वो गाना, रेडिया, वो सब
0: अच्छा,
1: बहुत पहले से सुनती रहती है। वो सलमान खान बहुत अच्छा लगता
0: हाँ
1: है तो तेरे
0: अच्छा,
1: नाम का गीत सुनती है। वो
0: अरे वाह,
1: रोती है ना तो तेरे नाम का गीत सुना देते ना तो चुप हो जाती।
0: अच्छा, यानी उसे संगीत पसंद है। संगीत पता है आपको एक
1: हाँ
0: बहुत अच्छी
1: वो,
0: थेरेपी भी है।
1: हाँ, और आपका जो प्रोग्राम आता है ना वो सुनते हैं, उसमें से कुछ सीखना मिलता है, कोई खाना बनाना सीख लेते, नए कुछ बातें अच्छी सुनते तो किसी को बताते तो कोई खुश हो जाती।
0: बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत, ये समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आप तक हम पहुंच पाए, आपको अच्छा लगा जो हमारा प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जो आरती को पसंद है?
1: आरती को पसंद है। अब तुमसे अच्छा कौन है,
0: अच्छा तुमसे
1: हाथ
0: अच्छा कौन?
1: भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात।
0: अच्छा तो चलिए आपकी पसंद का ये, यानी कि आरती की पसंद का ये गीत सुनाते हैं आपको, आँखें भरी भरी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: तो आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं बोल रही हूँ कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बोल रही हूँ।
0: अरे वाह,
1: सकीना है मेरा नाम, सकीना जी।
0: अच्छा सकीना जी बोल रही हैं और बारामूला
1: जी
0: कश्मीर से बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए अब
1: मैं
0: अपने बारे में थोड़ा सा, आप क्या करती हैं और आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मैं घर में काम कर रही हूँ, पश्मीना का काम कर रही हूँ।
0: अरे वाह, पश्मीना का बहुत मशहूर है कश्मीर का, पश्मीना एकदम नाम
1: जी
0: जुड़ा हुआ है
1: मैम,
0: कश्मीर के साथ में ना, पश्मीना का।
1: जी जी जी मैम,
0: जी तो आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मेरे घर में मेरी फैमिली है, मेरे 3 बेटे हैं, तो एक बेटा है, 3 बेटियां हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बच्चे छोटे हैं आपके कि बड़े?
1: नहीं, अभी छोटे हैं
0: छोटे हैं, तो यानी आपको पूरा टाइम उनके साथ में लगना पड़ता होगा, है ना?
1: जी मैम।
0: आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपके बच्चे स्कूल गए होते हैं, मतलब आप जब अकेली होती हैं, आप कुछ कर नहीं रही होती हैं, तो आप क्या करती हैं अपने खाली समय में जब कोई काम सब निपट जाता है घर का?
1: जब खाली में रहती हूँ ना, बस ये रेडियो सुनती हूँ और अपना काम करती हूँ। और क्या, ये पश्मीना से ज्यादा हम रखते हैं ना, हम घर का काम खत्म करके बस यही करते हैं।
0: नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। अच्छा, आप इसे पश्मीना का क्या मतलब शॉल बनाती हैं कि कोई
1: जी
0: ऊनी
1: मैम,
0: कपड़े?
1: शाल बनाते हैं।
0: शॉल बनाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये पश्मीना का शॉल तो, और वहाँ तो खूब अच्छे अच्छे तरीके के मिलते होंगे। अच्छा, पश्मीना के बहुत किस्में होती हैं कि एक ही मतलब
1: जी जी मैम,
0: होता है?
1: बहुत कस्में होते हैं पश्मीना की। जी,
0: अच्छा, तो आप सब तरह का बना लेती हैं?
1: दो
0: अच्छा
1: तीन
0: अच्छा
1: कस्म के बनाते
0: अच्छा
1: हैं।
0: तो ये आप मतलब अपने घर से ही उसको सेल करती हैं या फिर आप कहीं देती हैं कि इसको?
1: नहीं, हम किसी और के जरिए ये काम करते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप ये अपने अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं जो, है ना,
1: जी
0: क्योंकि
1: मैम।
0: बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ काम आता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना, उसको आप अपने, जैसे कि हम अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा कर सकें, है ना, थोड़ी सी मदद
1: जी
0: कर
1: जी
0: सकें,
1: मैम,
0: तो बहुत अच्छी चीज़ है आप जो कर रही हैं। घर में आप रह के इस तरीके से अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: जी मैं दिलवाले फिल्म है ना, उसका का कोई भी गीत मैं सुनना चाहती हूँ।
0: दिल वाले फिल्म का कोई भी गीत सुनवा दें आपको, है ना?
1: जी जी मैम,
0: चलिए, आपसे बात
1: थैंक
0: करके बहुत अच्छा लगा हमें, तो सुनाते हैं आपको
1: यू
0: आपके
1: मैम।
0: पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते। हम
0: नमस्ते। आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: रेखा मुखर्जी, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद छाटवी से बोल रहे हैं।
0: तो बंगाल में सबसे ज्यादा देखने लायक क्या चीज़ है जो हम वहां पर आकर देख सकते हैं?
1: यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकते हैं जी।
0: जी बताइए।
1: यहाँ पर नवाब पैलेस है,
0: हाँ
1: रसगुल्ला भी है, यहाँ का मुर्शिदाबाद
0: हाँ
1: सिल्क भी विख्यात है,
0: अच्छा।
1: फेमस है। यहाँ का आम भी फेमस है, फेमस
0: अरे हाँ, मुर्शिदाबाद का आम और सिल्क।
1: है।
0: बहुत बहुत, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये बताइए कि आपको क्या करना चाहते हैं? आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करती हैं?
1: हाँ हाँ जी, हम हाउस वाइफ है। हम लोग जो रेडियो में जो सुबह सकाल होता है ना,
0: हाँ
1: उसी
0: हाँ
1: में हम लोग मैसेज भेजते हैं। जब
0: अच्छा।
1: हम लोग को लाइव फोन में जब नहीं मिलते हैं
0: हाँ
1: तो हम लोग मैसेज भेजते हैं, स्टोरी पोएम लिख के भेजते हैं।
0: अरे वाह, आप लिखती भी
1: हाँ,
0: हैं? आपको लिखने का शौक है?
1: लिखती भी है। इस बार
0: अच्छा
1: भी हम भेजे,
0: अच्छा
1: घर में मेरा पेड़ पौधे लगाए लगी हुई है,
0: हाँ अरे
1: और
0: वाह।
1: मेरा घर में बहुत सारी चीजें है, जो पेड़ ओड़ है फूल का, उसी में रात को रहते हैं। उन लोग को हम दाना देते हैं,
0: बहुत अच्छी बात
1: तीन
0: है।
1: टाइम सबको दाना देते हैं हम।
0: अच्छा, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, आप लिखते रहिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखिए, पोएम लिखिए,
1: हाँ
0: कविताएं
1: हाँ
0: लिखिए,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना? और बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का जू जू जू, जसोदा का नंदलाला, ब्रिज की उजाला है।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं आरती श्रीवास्तव। जरा ध्यान से सुनिए, ये फोन आपके संदेशों को हम तक पहुँचाने के लिए मीठी सी धुन सुना रहा है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले अपना नाम और फिर अपने शहर का।
1: आओ सुंदर शहर बनाए, डगर डगर पर वृक्ष लगाए।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या शुरुआत करी है आपने, बहुत अच्छी बात कही है, एक मैसेज दिया आपने ना।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: इंदौर से बोल रही हैं आप, हसीना मंसूरी। हाँ
1: जी,
0: बहुत अच्छा लगा। बताइए कि आपको क्या पसंद है, मुझे लग रहा है ना आपको कई सारी चीजें पसंद होंगी करनी है ना। सबसे पहले तो आपको बातें करनी पसंद होंगी जहाँ तक मुझे लगता है।
1: जी बातें बहुत अच्छे करते हैं मैडम, और गाना भी सुनने का बहुत शौक, रेडियो चलता रहता दिन भर, मतलब कम से कम 2002 से तो हम रेडियो रेगुलर सुन रहे हैं, कभी मिस नहीं करते मैडम।
0: अच्छा।
1: और रेडियो मतलब खाना खाना छोड़ देते हैं मगर फोन जरूर लगाते हैं।
0: तो आपको कौन से प्रोग्राम पसंद है सबसे ज्यादा?
1: सबसे ज्यादा तो ये हेलो सहेली है, और पहले तो सच्ची सहेली आता तो उसमें लेटर भी शामिल किया करते थे मैडम, तो अगर वो लेटर जैसा अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग समीक्षा भी लिखते थे उसमें, रिसेप्शन भी लिखते थे पहले, तो आप लोग बहुत शामिल भी करते थे, अच्छी अच्छी बातें लिखते थे हम लोग, तो कभी ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात रहेगी, सोने भी सुहागा हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सब तक पहुंच रही है। तो बताइए और क्या क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है करना ये बताइए।
1: सिलाई करती हूँ मैडम मैं अधिकतर तो, ज्यादातर तो, और घर में काम भी, छुट्टी रहती है तो घर में काम करना भी अच्छा लगता है,
0: ये तो बहुत जरूरी चीज है।
1: करना बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ तो ये बताइए आप क्या क्या सिल लेती हैं?
1: ये गनी पैक का काम करते हैं मैडम, जूट का होता है।
0: अच्छा, तो इसमें आप क्या मतलब क्या करना होता है, क्या बनाती हैं आप?
1: इसे मशीन से रिपेयरिंग होता है, नहीं होता मशीन से नहीं चलता तो फिर हाथ से रिपेयरिंग करते हैं मैडम।
0: अच्छा, आप हाथ से भी कर लेती
1: रफो
0: हैं?
1: होता है, हाँ इसे रफो होता है मैडम।
0: अच्छा, तो बहुत ही मतलब आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। बताइए आपको और क्या करना अच्छा लगता है?
1: रेडियो सुनना अच्छा लगता है मैडम, आप लोगों से बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: कुछ गाना गाना नहीं अच्छा लगता आपको, आवाज से लग रहा है मुझे आपकी।
1: गाना गाना अच्छा लगता है ना मैडम, आके बताती हूँ।
0: देखा ना, मैंने आपकी आवाज से पहचान लिया।
1: जी, फिल्म
0: तो
1: का नाम है फूल और अंगार, और मेरी फरमाइश भी यही है, और गाने के बोलने, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, हम बड़ागांव जिला गुना चंचल ढाकड़ बोल रहे हैं।
0: आप क्या करती हैं?
1: मैं
0: आपके
1: 10th क्लास पढ़ती हूँ।
0: अच्छा 10th में आप पढ़ाई कर रही हैं, तो कौन से विषय से आप पढ़ाई कर रही हैं? आपको कौन सा विषय सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है?
1: हमको सबसे अच्छा विज्ञान लगता है, मतलब
0: विज्ञान? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। और बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है? आपके आपके शौक क्या हैं? जो आप पढ़ाई के बाद आपका जो समय बचता है तो उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मुझको, मतलब मेरा शौक ये है कि मैं आगे चल के डॉक्टर बन जाऊं।
0: डॉक्टर बनना है आपको? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो कि आप लोगों की सेवा करना चाहती हैं, डॉक्टरी करना चाहती हैं। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनी सुनी सॉन्ग सुनना चाहते हैं सलमान खान का।
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ग्राम बरथी पोस्ट कर रही हूँ, जिला चंदौली से इमरती यादव बोल रही हूँ। आप बोल रही हैं आरती श्रीवास्तव।
0: पहचान लिया आपने। तो सबसे पहले बताइए आप आपको क्या करना पसंद है?
1: मुझे, मैं घर में रहती हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम करती हूँ मैम। रेडियो के प्रोग्राम में सुनती हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, तो प्रोग्राम सुनती हैं, तो आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा पसंद है?
1: सभी प्रोग्राम अच्छा लगता है, और खासकर हमें सखी सहेली सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग बातें करते हैं और हंसते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ, आपको बहुत अच्छी बात है ये, आपको सखी सहेली अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आप, जैसे कि आप गाने सुनती हैं, तो आपको कैसे, क्लासिकल गाने ज़्यादा पसंद हैं या फिर आज के समय
1: जी
0: के?
1: नहीं, हर तरह के गीत पसंद है, नए हो पुराने हो, भक्ति हो या हिंदी हो, मुझे हर तरह के गीत पसंद है। और रेडियो सुनना मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। रेडियो से जो हमें कहीं से
0: हाँ,
1: खुशी नहीं मिलती वो रेडियो से मिलती है।
0: ये तो सही बात है। अगर संगीत जो होता है ना, वो एक दूसरे से बांध देता है ना,
1: जी
0: और
1: मैम,
0: साथ ही हमारे सारी परेशानियों को थोड़ी समय के लिए सही, लेकिन दूर कर देता है। और आप जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे संगीत पे बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो रागों के ऊपर होते हैं, क्लासिकल
1: जी
0: संगीत
1: मैम,
0: के
1: जी
0: प्रोग्राम हैं, वो सब भी आप सुनती हैं?
1: मैं हर तरह के गीत पसंद है और गाते भी हैं थोड़ा सा रेडियो के साथ में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। गाना जब हम गाते हैं ना, तो सोचिए अपने अंदर के एकदम ऐसा लगता है ना कि हम अपने अंदर का भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे अंदर तनाव था, जो परेशानियां थी, वो ख़त्म हो रही हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, रिलैक्स हो जाते हैं ना एकदम, ऐसा लगता है ना।
1: जी, अच्छा लगता है।
0: तो आपको जो गाना सुनना है ना, वो आप गा के सुना दीजिए। बता दीजिए हमें।
1: मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है।
0: बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते। आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मेरा नाम नाजमीन है। मैं गांव हरपाल से बोल रही हूँ, जिला सारण के पास से। मैं
0: तो आप बताइए, आप पढ़ती हैं या कुछ जॉब करती हैं या घर में रहती हैं, क्या करती हैं आप?
1: मैम, मैं घर में ही रहती हूँ, घर का ही काम करती हूँ।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: जी,
0: और ये बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: हमारे घर में अम्मी है, अब्बू है, दो बहने हैं, भाई है, सब है हमारे घर में।
0: अच्छा, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपके क्या शौक हैं?
1: मैं मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है,
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: और गाने के बोल उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में।
0: ओ ठीक है, तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं मीनू अग्रवाल बोल रही हूँ, मथुरा से। मैं
0: अच्छा, तो बताइए मीनू जी, आप क्या करते हैं? आपको क्या करना पसंद है?
1: घर में भी रहती हूँ और मैं घर पे ट्यूशन लेती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बाकी का मेरा मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो जैसे कि पेंटिंग है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ
1: और सबसे ज्यादा कुकिंग में है मुझे इंटरेस्ट। तो
0: अरे वाह, बहुत अच्छी
1: मुझे
0: बात है।
1: हाँ, तरह तरह का खाना बनाना अच्छा लगता है
0: कौन कौन से तरीके के खाना बना लेती हैं आप?
1: जी। मैं वैसे तो अपना यही इंडियन फूड ही ज्यादा बनाती हूँ, और बाकी का हाँ, बाकी का ये है कि और भी चीजें मेरे पे आती हैं, जैसे साउथ इंडियन डोसा, इडली, सांभर वगैरह, ये सब
0: अरे
1: चीजें।
0: वाह, क्या बात कर रहे हैं आप! इतनी तरीके की चीजें आप बना लेती हैं घर में?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तब तो आपके फैमिली, आपके जो परिवार हैं, सब लोग आपसे बहुत खुश रहते होंगे, है ना? आप बना बना के
1: हाँ
0: अच्छी अच्छी
1: जी,
0: चीजें
1: कहते
0: खिलाती होंगी।
1: हैं ना, हाँ जी कहते हैं ना कि इंसान की जो पहली पसंद होती है ना, घर में जो मेंबर्स होते हैं उनकी पहली पसंद होती है खाना। अगर उनको खाना हमने अच्छा दे दिया ना बना के, तो बस। मैंने अभी बताया था पेंटिंग कुकिंग वगैरह है, तो मैं
0: हाँ,
1: पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ
0: अरे वाह,
1: और सेल भी होती है, ऐसी बात नहीं है मेरी पेंटिंग्स वगैरह।
0: बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ड्राइंग कर लेती हैं, आप पेंटिंग बनाती हैं, आप खाने तरह तरीके की बना लेती हैं,
1: हाँ
0: बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है ये तो। और आप ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाइए, और किसी दिन हमें भी आप बुलाइए ताकि हम भी आएँ और आपने जो बताई हैं चीज़ें उनका हम भी कुछ लुत्फ़ उठा सकें।
1: अरे
0: क्योंकि बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छी चीज़ है, आपको तरह तरह की चीज़ें करनी आती हैं। तो बताइए मीनू जी, आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: जी, मैं दो कलिया मूवी का गाना सुनना पसंद करूंगी, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गीत है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: आंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं, आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फ़ोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतज़ार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश नहीं हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी कामयाब जरूर होते हैं और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीनों तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले जी का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी है नम्रता टिकोले और विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कार्यक्रम
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।

0: शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: श्याम महेश्वरी की कहानी भाई हो तो ऐसा, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का।
2: अज्जू विज्जू की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती। परिवार में कहीं भी कुछ भी काम हो, जन्म मरण, शादी ब्याह, दोनों भाई लगकर काम करते। अज्जू माने अजय बड़ा भाई और विज्जू माने विजय छोटा भाई। 8 साल का अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की पटती बहुत। पटने का कारण था बड़े भैया अजय। विज्जू का बड़ा ध्यान रखते और विज्जू बड़े भैया को भगवान मानता। माने भी क्यों ना, पिक्चर जाना हो, वो भगत जी की रबड़ी जलेबी खाना हो या कुछ और, बड़े भैया अज्जू ही बंदोबस्त लगाते। विज्जू को पिताजी से बड़ा डर लगता, लेकिन अज्जू भैया में कुछ बात थी, पिताजी उनकी बात मान ही जाते। दोनों के बीच में दो बहनें, वो बड़ी वाली बड़े भैया की चमची और छोटी वाली विज्जू की सहेली। पूरा कुनबा बाहर से चाक चौबंद दिखता और अंदर से उससे भी ज़्यादा मजबूत।

उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला, यदि विजय 6 मासी परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासी परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहाँ से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुँचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लौट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामाटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफ़ी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई और फिर हिदायतें देकर माफ़ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाक्य को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता।

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे, 4-5 तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विज्जू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विज्जू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विज्जू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विज्जू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विज्जू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विज्जू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विज्जू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया, मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहाँ जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। बिज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन बिज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने बिज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। बिज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और बिज्जू से कहते, कूद जा मैं खड़ा हूँ तुझे संभाल लूंगा, और बिज्जू कूद जाता। बिज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुँचता तो वो और पीछे चले जाते, और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी? भैया के भावों से बिज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हों तो चिंता मत कर मैं हूं ना।

बड़े भैया की शादी की बात चल निकली, उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे स्मार्ट, दुल्हन अच्छी मिली, मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं लेकिन शांत स्वभाव की दिखी। हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी, लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा, इतना जोर जोर से हंसता है।

कहाँ तक बचेगी भाभी प्यारी? सबसे ज्यादा उछलना विजू को ही आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान, तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानीपुरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाश नाश के काम किया विज्जू ने शादी में। विज्जू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विज्जू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता, लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी, मेरी भाभी।

विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और विज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया शादी के बाद। विज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी विज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी माँ और भाभी की पट्टी नहीं थी, वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। विज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। विज्जू के लिए ये सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो विज्जू

0: करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। विज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे, टिमटिमाती चमक लिए विज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा था।
1: झूठा।

0: गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं श्याम माहेश्वरी की लिखी कहानी भाई हो तो ऐसा।
1: विज्जू बड़ा हो गया था, फिल्म लाइन में आने का मौका मिला तो बम्बई आ गया। आज का मुंबई कल बम्बई ही था। अच्छा काम जमा लिया उसने। कालचक्र का पहिया भी अजीब है। बात कुछ ऐसी बैठी कि बड़े भैया का भी वहाँ काम जोरदार चल निकला, और उससे भी बड़ी बात, उन्हें हर सप्ताह मुंबई आना पड़ता अपने काम के सिलसिले में। मुंबई में आकर विज्जू के घर ही रहते हर हफ्ते 4-5 दिन। विज्जू को लगा तो यही था कि अपने गांव से दूर इस पराये शहर में भी भैया के आ जाने की वजह से वही अपनापन फिर लौट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया तनाव में ही दिखते हमेशा। पैसा आता है तो बरकत आ जाती है, लेकिन भैया के साथ उलट हुआ। भाभी का शांत स्वभाव सुना है अब ज्वालामुखी हो गया है। दोनों दीदियां बताती हैं अब वहाँ भाभी का ही राज चलता है। मम्मी पलंग पर आ लगी है और पिताजी को भगवान के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया है

सालों साल निकल गए इस आपाधापी में, ये शहर अब बंबई से मुंबई हो गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो विजय सही सलामत रहा, लेकिन कोई पिक्चर बनाई उसने जिसमें कमर टूट गई उसकी। नौबत यहाँ तक आ गई कि बिज्जू का घर बिक गया, और उधर गांव में सुना बड़े भैया ने बहुत पैसा जमा कर लिया था। मुंबई आने की अब ज़रूरत भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए वे नहीं के बराबर ही आते, और आते भी तो बिज्जू के घर नहीं रुकते, वो कहीं किसी होटल में रुकते थे। आजकल बिज्जू को उनके हाव भाव व्यवहार से समझ आ रहा था कि उन्होंने इसलिए मुंबई आना बंद नहीं किया था कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई थी, बल्कि इसलिए बंद किया था कि भैया अब बिज्जू से मिलने से कतरा रहे थे। उन्हें शायद ये डर सता रहा हो कि बिज्जू इतने सालों मुंबई में रखने की कीमत न मांग बैठे। कठिन समय में अपने ही याद आते हैं, और वो अजय भैया जैसे अपने हों तो ज़्यादा याद आते हैं।

विजय अभी भी अपने तो अपने होते हैं कि भावों से निकल नहीं पाया था पूरी तरह, लेकिन भैया ने तयशुदा पूरी तरह भुला दिया था बिज्जू को। चलो उसे भुला देते तो भी ठीक था, लेकिन इस वक्त ज़रूरत में था वो। यही सोचकर मेहरबानी समझ ही मदद का हाथ बढ़ा देते उसकी तरफ, पर ऐसा हुआ नहीं। तब विजय को याद आई अपने दादाजी की ज़मीन, वही जो दादाजी ने अजय और विजय के नाम कर दी थी और जिन कागजातों पर तब हस्ताक्षर करवाए थे विजय से, वो इसी ज़मीन को बेचने के कागजात थे। और उसी ज़मीन को बेच के भैया ने कपड़े की दुकान ली थी अपनी, जिसने आज यहाँ तक पहुँचा दिया उन्हें। सुना है कुछ लाखों में बेची वो ज़मीन आज करोड़ों की हो गई है। नंगे के नवग्रह बलवान, विजय ने सोचा और तय किया कि उस ज़मीन का अपना हिस्सा भैया से अब मांग लेगा। उनके पास बहुत है ही और इसके पास सब खत्म हो गया है, तो ये सही समय है अपनी हक की गुहार लगाने का।

भैया से बात की विज्जू ने तो वे साफ मुकर गए। तर्क ये कि उस जमीन को बेचना तो छोटी सी बात थी, मेन बात तो यह थी कि उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज ये मिल्कियत खड़ी हो पाई। तर्क नहीं कुतर्क था ये। विजय की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने सालों उन पैसों को भोगने के बाद वो अपने ही हो जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है उन पैसों पर से अपना मोह जाने देना। पैसों का चरित्र कुछ ऐसा ही है, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। रुआब और रुतबा तो बढ़ता है लेकिन घमंड और लालच भी बढ़ जाता है। पैसों के शुद्धिकरण के लिए बड़ा दान धर्म करना पड़ता है, तब पछता है पैसा। भैया छोटे भाई को उसके हक का छोड़ो उसकी ज़रूरत का नहीं दे पा रहे थे तो दान धर्म कहाँ से करते।

विजय ने खूब गुहार लगाई अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाकर, अपने हक का गान बखान किया, लेकिन भैया के खिलाफ कौन खड़ा होता। समरत को नहीं दोष गोसाई, पैसे वालों की कहाँ कभी कोई गलती होती है। विजय को अपना हक नहीं मिलना उतना नहीं चुभ रहा था जितना उस भरोसे का टूटना जो उसने भैया पे दिखाया था। जान लुटाता था वो बड़े भैया पे। कोई अभी भी कह दे कि ये सब झूठ है, अभी भी बड़े भैया आएंगे सांता बन के उसको सरप्राइज गिफ्ट देने, पर वो नहीं आए। विजय के इतने साल जीवन का अहम हिस्सा झूठा साबित हो गया। अब वो किसी पे भी भरोसा कैसे करेगा, और दूसरों पर तो जाने दीजिए, खुद पर भी भरोसा कैसे करेगा।

आज विजय बेघर है, दिन भर बैठा रोता रहता है, रातों को सो नहीं पाता। इधर गरीबी की मार और उधर विश्वास का खंजर, शूल सी चुभन हिस्सा बन गई है जीवन का। कलयुग की ये घटना कितनों के ही साथ हुई है। संवेदनशील विजय कई तरीकों से अपने आप को संभालने का प्रयास करता रहा। प्रयास करते रहने की एक विशेषता है, मुश्किलों से जूझने के लिए हिम्मत मिलती रहती है। प्रयासों की खुराक सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दिया उसने दवाई की तरह, कहीं ज्ञान की बात सुनता तो कहीं ध्यान की कोई क्रिया करता। ऐसे ही एक ज्ञान में ये समझ आया कि पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बचा रहा होगा बड़े भैया से, जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस ज्ञान ने उसे हौसला दिया और नतीजा भी तुरंत निकला। विजय का बेटा अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर आया, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा गया और सबसे महत्वपूर्ण, विजय के प्रति पूरा समर्पित। कलयुगी भाई गया तो सतयुगी बेटा आ गया। कुछ जाता है तो कुछ आता भी है, अभी रात है तो कल सवेरा होगा ही। जीवन के इस हिसाब किताब को समझने के बाद आज विजय शांत है। एक रिश्ते के सामने जीवन का ज्ञान पा जाना उसे भगवान का दिया उत्तम न्याय लगा। आज विजय भैया के लिए नरम हो चुका है। कल तक ये सोचने वाला विजय कि भाई हो तो ऐसा ना हो कि जगह सोच रहा है, भाई हो तो ऐसा

सुनाई हो तो ऐसा ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे श्याम महेश्वरी, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी शुभारंभ किया। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र

0: और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम अभिम योजना के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुँच रहा है। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
0: इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय को निर्देश दिया गया है कि अगले आदेश तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती ना की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। ये परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमले को देखते हुए जारी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू इन देशों की यात्रा पर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा और 3 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की पहली राजकीय यात्रा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। वित्त मंत्री ने आज आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारा वपेटा में आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं के तहत 1,03,246 लाभार्थियों को 3,216 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को सरकार साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has launched several developmental projects around 4,700 crore rupees in Chandigarh in key areas healthcare, education and road infrastructure. In a program organized at the Punjab Engineering College, Chandigarh this afternoon, the Prime Minister dedicated to the nation advanced mother and child care centre built at a cost of 505 crore rupees and advanced neurosciences centre built at a cost of 440 crore rupees. He also laid foundation stone of 259-bed critical care block under PM IBM scheme at PGIMER Chandigarh. Mr. Modi also dedicated Zirakpur-Kurali Greenfield Highway to the nation and laid foundation stones for the Zirakpur Bypass and the Chandigarh Airport Aerocity Greenfield Highway. He also inaugurated hostel blocks at Punjab Engineering College and Government College of Sector 46 alongside a new multipurpose auditorium at Punjab University. Addressing a gathering, Prime Minister Modi said, with the development of Chandigarh, people's lives have been transformed, but its benefits extend beyond the city, reaching the people of Haryana, Punjab and Himachal Pradesh as well.
1: आज चंडीगढ़ में कनेक्टिविटी को लेकर भी कई शुभारंभ हुए। आईटी सिटी से कुराली तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन हुआ। मोहाली और खरड़ के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे से PR7 स्पेस पर इसकी आधारशिला भी रखी गई है। ऐसे सभी विकास कार्यों से उद्योग और कारोबार को गति मिलेगी। हमारे चंडीगढ़ में ईज ऑफ लिविंग और बेहतर होगी। इसका लाभ पंजाब के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को होगा। साथ ही आज ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है।
2: Prime Minister Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana, marking a major step towards clean and sustainable rail transport. The Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated development projects worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects. He dedicated the 157-kilometer Delhi-Amritsar-Katra Expressway, which will reduce travel time between Delhi and Katra to about 6 hours and between Delhi and Amritsar to around 4 hours. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, Indian Railways has undergone major transformation over the past 12 years and described the hydrogen train as a historic milestone that has given Jind a special place in India's history.
1: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को, भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
2: Ahead of the monsoon session of Parliament, a meeting of group of ministers was held in New Delhi today. Union Ministers Amit Shah, Rajnath Singh, Rajiv Ranjan Singh, Kinjarapu Ram Mohan Naidu and Kiran Rijiju were present in the meeting. During the meeting, the leaders chalked out the strategy for the upcoming parliamentary session. The monsoon session of Parliament will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of next month. President Draupadi Murmu will embark on a state visits to Moldova, North Macedonia and Romania from the 19th to the 25th of this month. Briefing media in New Delhi, Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George said that these state visits have been undertaken at the invitation of the Presidents of the Republic of Moldova, the Republic of North Macedonia and Romania. He said that the visit is of considerable historical significance as it will mark the first ever bilateral visit by an Indian president to the Republic of Moldova and North Macedonia. India announced its 20-member squad for the FIH Women's Hockey World Cup 2026 today. Midfielder Salima Tete will lead the Indian side at the prestigious tournament to be held in Belgium and the Netherlands from August 15 to 30. Goalkeeper Savita and Bichu Devi Kharibam have retained the places in the squad. In badminton, two-time Olympic medalist P.V. Sindhu has advanced to the semifinals of the Japan Open 2026. Sindhu progressed after Japan's former world champion Nozomi Okuhara withdrew from the women's singles quarterfinal. And that is the end of this news bulletin.
3: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत हैं भजन।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे भजन, यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच।

सफ़र में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त पूनम। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज का दिन जो है वो है फिल्मी फ्राइडे। तो आज के दिन हम बात करेंगे आपके साथ एक जानी पहचानी सी, जो कि हमारी युवा दोस्तों की जो है वो मनपसंद फिल्म है, उसके बारे में। जी दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं उस दुनिया की जिसने हमारे सपनों को पंख दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदी फिल्मों की। और दोस्तों, कहते हैं ना कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन हमारे युवाओं के लिए फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल भी हैं। और जिसमें राहुल की प्यार भरी दोस्ती हो या फिर कबीर सिंह के वो जुनून तक हो, फिल्में जो हैं वो युवाओं को जीना भी सिखाती हैं। दोस्तों, फिल्में जो हैं वो सिर्फ 3 घंटे का एंटरटेनमेंट नहीं होती बल्कि ये हमारे समाज का आईना होती हैं। और जैसे 3 इडियट्स फिल्म जो है जिसने हमारे युवाओं को सपनों के पीछे भागना सिखाया था, तो छिछोरे फिल्म ने हमें ज़िंदगी में लड़ना भी सिखाया है। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वर्ष 2009 में रिलीज़ हुई फिल्म 3 इडियट्स के बारे में, जो कि भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली फिल्मों में से एक है। और वर्ष 2009 में रिलीज़ हुई ये फिल्म चेतन भगत के उपन्यास 5.1 पर आधारित थी। तो इस फिल्म के बारे में आज हम अपने युवा साथियों से बात करेंगे और इस फिल्म के गीत आपको सुनवाएंगे। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म से ये पहला गीत।

0: दोस्तों, हम बात कर रहे थे फिल्म 3 Idiots के बारे में, और अभी आपने इस फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत सुना। और दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य कलाकार जो थे वो आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर और बोमन ईरानी के साथ साथ ओमी वैद्य थे। और इस फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी और निर्माता हैं विधु विनोद चोपड़ा, और साथ ही जो इस फिल्म के पटकथा लेखक हैं वो राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी हैं। और इस फिल्म में जो संगीत दिया है वो शांतनु मोइत्रा ने दिया है, और इस फिल्म के गाने जो हैं वो वर्ल्ड फेमस गाने रहे हैं। तो आइए सुनवाते हैं इसी फिल्म से एक और गीत, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक संदेश।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
2: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.

0: चलिए दोस्तों, अभी आपने ये खूबसूरत सा गीत सुना और फिल्म जिसकी बात आज इसके कार्यक्रम में हम कर रहे हैं वो है थ्री इडियट्स। तो दोस्तों, ये फिल्म भारत की शिक्षा प्रणाली, छात्रों पर करियर और पढ़ाई के दबाव और समाज की मानसिकता पर एक कड़ा प्रहार करती है। और इसका मूल मंत्र था कि कामयाबी के पीछे मत भागो और काबिल बनो, और कामयाबी जो है वो फिर आपके पीछे चलकर आएगी। और इस फिल्म ने युवाओं को अपने पैशन यानी जो अपने करियर को बनाने के लिए इसमें जो है वो इन्हें प्रेरित किया है। और फिल्म का तकिया कलाम ऑल इज़ वेल जो है वो आज भी सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, इस फिल्म ने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। और अगर इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो ये भारत के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले तीन दोस्त रणछोड़, फरहान और राजू पर आधारित है। और साथ ही ये फिल्म हमें सिखाती है कि रटने के बजाय हमेशा अपनी पसंद और काबिलियत के हिसाब से काम करना चाहिए, तो सफलता जो है वो आपको अपने आप ही मिल जाएगी। और दोस्तों, फरहान और राजू एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते हैं और यहाँ पर उनकी मुलाकात रेंचू से होती है। और रेंचू का मानना है कि इंजीनियरिंग सिर्फ रटने के लिए नहीं बल्कि सीखने और प्रैक्टिकल ज्ञान को समझने के लिए जो है वो है। और कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल, जिन्हें सभी प्यार से वायरस कहकर बुलाते हैं, और रेंचू भी इस विवाक सोच से बिल्कुल खिलाफ थे। और इसी दौरान रेंचू को प्रिंसिपल की बेटी पिया से भी प्यार हो जाता है। तो इस तरह फिल्म की कहानी जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ती है। लेकिन हम बढ़ते हैं फिलहाल एक गीत के साथ, और उससे पहले सुनवाते हैं ये संदेश।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

जी दोस्तों, तो फिल्म की कहानी जो है वो दो हिस्सों यानी वर्तमान और कॉलेज के दिनों में साथ साथ चलती है। और फरहान और राजू एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते हैं और यहाँ पर उनकी मुलाकात रेंचू से होती है और साथ ही उनका दोस्ती का सफ़र जो है वो आगे बढ़ता है। और जो फरहान है वो हमेशा से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था पर अपने पिता के दबाव में इंजीनियरिंग कर रहा था। और वहीं पर राजू एक गरीब परिवार से था और उसे अपनी नौकरी की चिंता जो थी वो उसमें हमेशा वो डरा हुआ रहता था। रेंचो की मदद से फरहान अपने दिल की बात भी मान लेता था और राजू का डर जो था वो उस पर भी काबू पा लेता था। और कॉलेज खत्म होने के बाद रेंचो जो है वो अचानक सभी से दूर एक गांव में चला जाता है और 10 साल के बाद उनके दोस्त और उनके साथ पढ़ने वाला एक छात्र चतुर जो है वो रेंचो को खोजते हुए लद्दाख पहुँचते हैं। और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रेंचो का असली नाम जो है वो फुनसुख बांगड़ू है और वो एक महान वैज्ञानिक और शिक्षक बन गया है। और चतुर जो उसे नीचा दिखाने आया था अंत में उसी के साथ वो बिजनेस डील जो है वो उसके लिए करने के लिए भी भीख मांगता है।

0: और दोस्तों इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म यानी कि बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और इसके साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए बोमन ईरानी सहित इस फिल्म ने 6 पुरस्कार जीते हैं। और ये जो फिल्म है इसने 300 करोड़ और 400 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म थी और इस फिल्म ने चीन और जापान जैसे देशों में भी भारी कमाई की थी। और दोस्तों ये फिल्म जो है वो हर जवान दिल की धड़कन है और हमारे युवा साथी जो हैं इस फिल्म को हमेशा ही देखना चाहते हैं और मुझे लगता है कि सभी दोस्त जो हैं हमारे इस फिल्म को बार बार देखते हैं। तो आइए एक और खूबसूरत सा गीत सुनवाते हैं इस फिल्म से। लेकिन जी हाँ दोस्तों, तो अगला गीत जो है वो सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में है, तो आइए मिल के सुनते हैं।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
2: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
3: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
2: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
3: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available.
2: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa.

जी दोस्तों, वक्त का पहिया जो है वो बहुत ही तेज़ी से घूमता है। तो दोस्तों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का और कार्यक्रम को समाप्त करने का। लेकिन याद रखिए कि अगले हफ्ते फिर से युवा मंच कार्यक्रम में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, कुछ नए गानों के साथ और नई एक नई फिल्म के साथ और नई गपशप के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM धर्मशाला। बाय बाय एंड टेक केयर।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम युवा मंच। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। शाम 6:30 पर किसान व बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम मौजा गराइंदियां प्रसारित किया जाएगा और आज का विषय रहेगा औषधीय पौधों की खेतीबाड़ी। शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जिसमें बातचीत का विषय रहेगा फूलों की खेती को कैसे बनाएं फायदेमंद। रात्रि 8:00 सुनेगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशगान सुनवाया जाएगा और रात्रि 9:15

मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज आप सुनेंगे फिल्म बेखुदी के कुछ चुनिंदा नगमे। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से राष्ट्रीय पत्रिका का कार्यक्रम रिले किया जाएगा और रात्रि 10 आप सुनेंगे बॉलीवुड बीट्स। कुछ पुराने फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे। रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम रहेगा चित्रपट संगीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:58 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

ब्रिजलाल की आवाज़ में अभी आपने सुना ये लोकगीत। इसी के साथ लोकगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुरा धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएस सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में स्वास्थ्य क्षेत्र समेत कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास से लोगों के जीवन में बदलाव आया है, लेकिन इसका लाभ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तकनीक के जरिए भी इलाज को सुगम बना रही है और ई संजीवनी मिशन के जरिए टेलीमेडिसिन की सुविधा भी शुरू की गई है।
1: जो हमारी सरकार तकनीक के जरिए भी इलाज को सुगम बना रहे, हमने ई संजीवनी मिशन के जरिए टेलीमेडिसिन की सुविधा, इसके तहत आज देश में 48 करोड़ से ज्यादा टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन हो चुके। दूर सुदूर इलाकों से भी लोग बड़े अस्पतालों से डॉक्टर से परामर्श कर रहे। साथियों, स्वास्थ्य सेवाओं के इस विस्तार की वजह से आज देश

0: प्रतिशत से अधिक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज ऊना जिले में नए स्तरोन्नत किए गए अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस स्टेशन पर अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री की पट्टिकाओं का अनावरण किया, जहाँ वे प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। राज्य सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना MIS के तहत वर्ष 2022 से 2025 तक खरीदे गए सेब के बकाया का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सेब बागवानों के खातों में कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों व बागवानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेब की पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कॉटन प्रणाली लागू की है, ताकि बागवानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि MIS के तहत 30 बैग तक सेब बेचने वाले सेब उत्पादकों को भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जबकि 100 बैग या उससे अधिक सेब उत्पादकों को भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने 45 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वर्तमान सीजन में MIS के तहत सेब खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बागवानी मंडी मध्यस्थता योजना की वेबसाइट और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 5-day week लागू करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर 5-day week लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई है। प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मियां ने बताया कि सप्ताह में 2 दिन अवकाश मिलने से कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, तनाव कम होगा, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और सरकार को सालाना करीब 100 करोड़ रुपए की बचत भी होगी।
3: 5-day week जो एक पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की मांग है, और विभिन्न एसोसिएशनों ने हमारे को अवगत करवाया कि हमें जो है 5-day week के लिए फोकस करना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया और साथ ही साथ ये कहा है कि इसको हम स्टडी करके और एग्जामिन करके जो है इसको बड़ी जल्द लागू करेंगे।
1: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। भारत और विदेश से प्रदर्शकों, खरीदारों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के हितधारकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने कांग्रेस सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल को निराशाजनक करार दिया है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य ठप पड़े हैं और मुख्यमंत्री काम करने के बजाय भविष्यवाणियां कर रहे हैं, ताकि अपनी नाकामियों को छिपाया जा सके। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चार्जशीट लेकर आएगी और इस चार्जशीट को लेकर जनता के बीच जाएगी, ताकि सरकार के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया जा सके।
4: पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे थे, चुनावों के बीच में रातों रात नियम कानून बदलने का काम भी इसी सरकार ने किया। कानून व्यवस्था, उसके साथ युवाओं के साथ धोखा, जो इन्होंने वायदे किए थे, इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक चार्जशीट के लिए कमेटी भी गठित की है और इसमें इन सारे मुद्दों को इकट्ठा करके वर्तमान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो है चार्जशीट तैयार करेगी।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ...103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सांझ। कार्यक्रम सुरमई सांझ में सभी श्रोताओं का स्वागत, और कार्यक्रम का पहला

गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोंसले की आवाज में, फिल्म है फागुन। गीत लिखा है कमर जलालाबादी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रही है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म है गुनाहों का देवता। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: एसडी बर्मन की संगीत निर्देशन में लीजिए सुनते हैं मोहम्मद रफी को, फिल्म है 3 देवियां।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
0: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
0: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। टीएनसी अप्लाई।
4: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सांझ। और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में, फिल्म है आन और शान। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां सुनने आले सारे ही श्रोतियां दा अहां अपने इस ध्याड़े पर स्वागत करदे न। कन्नै श्रोताओ, अज्ज दे इस कार्यक्रम च मेरा साथ दे दे न पंच जी। पंच जी, राम राम।
1: राम राम लोका भाऊ, कन्नै कार्यक्रम सुना करदे सारे श्रोतियां जो भी, पंच दी तरफ ते राम राम। और कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां शुरू होई और इस विच अहां मौजां भी लगानी और कन्नै कन्नै अपने जानकारियां भी जड़ियां अपने स्रोतें तक पहुंचानियां है ना जी।
0: जी जी, तो दिखा बरखा भी जड़ा सा अहां दे ट्याले पर लगी हुई है, झमा झम है ना।
1: बिल्कुल,
0: कन्नै इस बारी निहाल भी ही बरखा दी है ना।

0: कि हाँ दी
1: हाँ
0: फसल भी लगी हुई है, मुख्य फसल जड़ी धाने दी है ना,
1: हाँ जी
0: सभी पानी मंगा दे ही था, चलो अंबर भरे आए है ना।
1: चलो बड़ा अच्छा होया, क्योंकि खासकर साढ़े जेडे ओतड़ ने जिथू साढ़े किसान भाइयों जल पिछले दी बरखा हुई तो लगाई थे धान है
0: हाँ
1: ना,
0: जी हाँ जी हाँ
1: तो
0: जी
1: इतू जड़े से हूँ बरखा की जरूरत थी, पानी की जरूरत थी, तो हूँ सै जरूरत जड़ी से पूरी हो जानी है। तो इस दे कन्ने कन्ने हाँ और भी खेतीबाड़ी दे काम कार जड़े से जी बारिश होंगी तो साढ़े काम कार शुरू हो जाते हैं ना।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। तो पंच जी पंचायत च क्या चले अजकल?
1: देखा तो हाँ अज कल जड़ी से साड़ी पंचायत च जगह जगह हूँ जड़े से ग्राम सभा हो कर दी है
0: हाँ
1: ना,
0: जी हाँ जी हाँ जी
1: सा लगभग सारी पंचायत जड़े से पहली ग्राम सभा जड़ी से होगी, और लोगों जड़े से उतू बढ़ चढ़ी के भाग भी ये लिया है इन्होंने दिनों च, और अपने तिना दे जड़े कामकार रहंदे थे जिड़े कि पिछले समय बिच जड़े नहीं हुए है ना, सह तिना करवाने वास्ते जड़े से आवेदन भी करी थे ना, और तिना जो साढ़े जड़े जनप्रतिनिधि ने तिना जो चाहिए कि हूँ अगे जड़े काम बचे उन्हें तिना जो जड़े से पूरा किते जाए है ना।
0: बिल्कुल जी ठीक गला दे पंच जी। तो हाँ कने दिखा हाँ दे जेड़े नोए चुने प्रतिनिधि आए उन सह दिखा जागरूक भी करा देन है ना।
1: हाँ
0: अपनी पंचायत चुन देखी लिया हूँ साड़ी ग्राएं ते परली पंचायत है, तो इतो क्या बोलते जेड़ा अहाँ दे ग्राम प्रधान ते ना जी छुट्टी होंगी ना तो आ रहे हो
1: अच्छा
0: तो ते ना बोले कि एक वार्ड अहाँ ले लेना तिथु कने तिथु जेड़ी इसे साफ सफाई का काम जरा सा करा करते कने बड़ी अच्छी पहल है के है
1: ना
0: ना।
1: ना बिल्कुल बिल्कुल, और बरसात का मौसम है और इन्हें दिनों च हाँ अपने आस पड़ोस च या फिर साढ़े जेड़े रस्ते फलियां ने तिना जो साफ सफाई रख गए ताई अहाँ जो आने जाने की सुविधा होनी है ना।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक ला दे पंच जी कने इदी कने यहाँ दे जड़े न्याणे न बच्चे न सभी इदी च अपनी जनसहभागिता जड़ा से दिया कर देन है ना।
1: जी, और एक जन सहभागिता जी इसे साड़ी पंचायत एक कमे च और दे सकती है, क्योंकि अजकल बरसात का मौसम है और वन रोपण पौधो रोपण जड़ा से इन दिनों च जरूर करना है ना,
0: बिल्कुल
1: तो
0: जी
1: इस
0: बिल्कुल
1: बीच जड़ा से अहाँ दी पंचायत के प्रतिनिधि जो जड़े नज़दीकी दी नर्सरी ने तिथु संपर्क करके वन विभाग कन्ने संपर्क करके उतु दे पौधे ले आए के जड़े से अपने ग्राएं बिच अपने क्षेत्र बिच जड़े से जरूर रोपने ने है ना।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल पक्की गल गलाई। तो हाँ पंच जी दिखा एक पौधा लगाना कने तिसी यो फिर पालना सबसे बड़ी गल होंदी है ना।
1: जी
0: कने ये बरसाती का समय होंदा है, इस वेले अगर तुहां पौधा फसाई दिया तो तुहां इना ज़्यादा पानी देने दी जरूरत पौंदी ती ज़्यादा मतलब तुहां एक बार फसाना मुश्किल होंदा है ना। कने
1: हाँ
0: तुसी जो बाड़ दे दिया तो वहाँ थोड़ा देर कने सह पौधा जड़ा सा अपने आप ही जड़ा सा तैयार हो जाता है ना।
1: जी
0: तो एक पौधा तो हाँ जरूर जड़ा सा इस बरसाती हरेक जड़ा नागरिक ऐसा लगाऊंगा तो हाँ दा जड़ा पर्यावरण ऐसा हरा भरा होगा है ना।
1: बिल्कुल
0: तो अहाँ तो टियाले तो यही आग्रह कर देन कि इस बरसाती जड़ा सा अहाँ दे श्रोता ज़्यादा से ज़्यादा जड़ा सा पौधा रोपण करके है ना।
1: हाँ
0: कने हूँ अहाँ अपने गल्ला बातें विराम दिन देन कने सुना देन एक प्यारा दे लोकगीत है ना
1: जी, पर इससे पहले कुछ एक सुनिए
0: जी।
2: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
3: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
4: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
5: Nexa.
2: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।

0: श्रोताओं ता ये प्यारा दिया भजन तुहां तक पुजाया कने आशा कर दे हुण पंच जी यहां दे श्रोताएं पसंद भी आया होना है ना
1: जी जी
0: क्योंकि गां हुण सावन दा महीना भी है तो हुण जिहड़ियां यात्रा भी लगी पौणियां मणिमहेश दी यात्रा भी होई आनी है ना
1: हाँ
0: कने अहां हाजरी जिहड़ा सा टियाले ते ही लगाई थी है ना
1: बिल्कुल। और इस दे कने कने जी कि हाँ पहले भी गल करे करदे कि बरसात दा मौसम और इन्हां दिनां च हाँ जो जिहड़े फलदार होईए औषधीय पौधे होईए या फिर इमारती लकड़ी वाले पौधे ने ना जो अपने आसे पासे जित्थे भी खाली जगह मिलती तिथु लगाना चाहिए है ना। और खासकर गल करिए अपने औषधीय पौधे की तो इन्हों का जड़ा अपना अलग ही महत्व है ना
0: बिल्कुल
1: क्योंकि अहां दे जड़े आस पड़ोस जित्थे भी औषधीय पौधे लगाते हैं तो इन्हों

0: जिहड़ा उपयोग साढ़े जीवन विच जिहड़ा से बड़ा ज़्यादा होंदा है, और तिना ते ही अहां जो जिहड़ा से कई तरह के उत्पाद जिहड़े से अहां जो उपयोग करने वास्ते जिहड़े से मिलते हैं, जिवें कि तुलसी हुई है, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, गिलोय है, नीम है, आंवला है,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: हल्दी है, अदरक है, पुदीना है, ब्रह्मी है, स्तावरी है, काल मेघ है, अर्जुन है, मुलेठी है, फिर बेल है, हरड़ है, बेड़ा है, आंवला है, ये कई तरह के जड़े इनसे औषधीय पौधे हैं जिन्हें हाँ आजकल रोपाई जड़ी इसे करी सकते हैं।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक ला दे। तो हाँ पंच जी, दिखा आंबले दी गल करिए तो आंबले वहाँ हरा हीरा भी बोल दे, है ना।
0: हाँ
1: कने दिखा इस जड़ा अहाँ दे पालमपुर हुई है, बैजनाथ हुई है, नगरोटा हुई है, अहाँ दे इलाके दे अखे बखे भी जड़ा से बड़ा बढ़िया कने बांका ये पौधा चलता है ना।
0: जी जी
1: कने फायदा इस दिखा विटामिन सी सबसे ज़्यादा इस होंगे, तो हाँ दिखा चमनप्रास अचार मुरब्बा इसने बनी आंदा है ना।
0: हाँ
1: कने दिखा 3 सालों च ये फल दे इंदा तो है। कने एक पेड़ जड़ा सा 2000 रुपये सालाना जड़ा सा दे इंदा तो है
0: जी
1: ना।
0: जी
1: कने खास गल करिए तो जून जुलाई च तो हाँ इसी लगा, कने इसी घट पानी चाहिए, कने ज़्यादा धुप भी इसी होनी चाहिए होंगी है ना।
0: हाँ
1: कने
0: जी
1: अरड़ की गल करिए, अरड़ भी जड़ा सा एक औषधीय पौधे चौंता, इसी काला सोना बोलते है ना। तो
0: जी
1: दिखा ये भी यहाँ दे 800 से 1500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों से हो जाता है, धर्मशाला या ज्वाली देरा दे किनारे ये जड़ा पौधा जड़ा सा हो जाता। तो फायदा इस दिखा ये जड़ा है पेटे का डॉक्टर है, इसी बोलते
0: हाँ
1: है ना।
0: बिल्कुल
1: कने त्रिफला दा राजा है ये, छाल कने फल इदे दोनों ही बिकते। कने 5 साले च ये फल दे जाता, 1 किलो जड़ी सुखी अरड़ है तुम सै 400 रुपये दे भाए कने बिकी आती है
0: बिकी आंदी रामे में
1: बाजारे च है ना। ता त्री गल करिए बेड़े दी, तो इसी बोलते भूलोक दा रक्षक है ना।
0: जी।
1: ता ये जड़ा है सह तुहां दा 500 से 1200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र च हो जाता है, अहाँ का कांगड़ा आई जाता, हमीरपुर आई, हमीरपुरे की कुछ एक भाग जड़े लगते तिथु आई जाता। यदा फायदा जड़ा होंगे ना पंच जी,
0: जी
1: सह साह लैने खांसी चमड़ी की दवाई दवाई ताई, कने यदा तेल भी निकलता, कने 4 साल च ये फसल दे दिंदा, कने कंपनी वाले तुहां ते घरे ते ये ले आते हैं है ना।
0: जी
1: कने खास गल करिए आंबला अरड़ बेड़ा इन तिना चीज़ें मिलाई के त्रिफला बनता है ना।
0: हाँ जी
1: तो ये दवाइयाँ च कम्मे होंगे। कने दिखा जालू वहाँ औषधीय पौद्या की गल करती, तो औषधीय पौद्या च तुहां दा एलोवेरा भी आई जाता है ना,
0: हाँ
1: जिसी
0: जी
1: घृत कुमारी बोलते हैं, इसी भी अहाँ दे किसान भाई लगाई के जड़ा सा अच्छी खासी आमदनी जड़ा सा कमाई सकते हैं है ना।
0: हाँ जी
1: ता जरूरत कई पौधी औषधीय पौधे पाए जाने खेती करने ताई कि दिखा चलो आज साड़ा किसान जड़ा सह पारंपरिक खेती जड़ा करता है ना, जी मन लिया धान कने कणका दी सह पारंपरिक जी साढ़े सियाने करते आए,
0: जी
1: तो इस च इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं है ना। कने ये जड़े औषधीय पौधे ने इस जड़ा सह भा भी खरा मिली आता, कने समय च दिखा एक बार अगर तुम पौध लगाई थी तो फिर सह 40-50 साल तुम्हें फल तो नहीं दिते रहना है ना,
0: बिल्कुल
1: तो
0: है
1: आननी थोड़ी जड़ा सह आँदी रहनी है ना। कने दूई गल ये भी है कि औषधीय पौधे की चालू तुम खोती खेतीबाड़ी करते हैं तो उस तुम कोई रसायनिका भी नहीं पानी है ना,
0: हाँ जी
1: कोई तुम्हारी मिट्टी भी तुम्हारी स्वस्थ रहनी आने वाली पीढ़ियां ताई तुम जड़ा सह अगर जिस हिसाब ने अहाँ दी जेड़े किसान सह पा करते ना रसायना, तो आने वाला सह दिन भी दूर नहीं है जिस हिसाब ने कि अहाँ दी मिट्टी है जड़ा सह बंजर हो जाना है ना। तो
0: बिल्कुल
1: एक सचेत होने की जरूरत है अहाँ टियाले ते आग्रह करते ही करते हैं कि तुम प्राकृतिक खेती जो अपना चाहे तुम सह साड़ूआं लाड़ूआं की गल होए, साड़ी साग सब्जी की गल होए, बागवानी की गल होए, तिथि तुम जरा सा प्राकृतिक तौर तरीके कने जितना ज़्यादा हो सके तो तुम जरा सा खेतीबाड़ी उदे मुताबिक ही जरा सा करनी है ना।
0: बिल्कुल लोको पाओ तो बड़ी अच्छी गल दसी कि औषधीय पौधे अगर हाँ आस पड़ोस च लगाते हैं तो एक तो साड़ा पर्यावरण शुद्ध रहना और कन्ने कन्ने सानू जेड़ा इसे अतिरिक्त आमदनी जी इसे होनी क्योंकि इन्हों पौद्या का जेड़े इसे मांग बाजार में बड़ी ज़्यादा है।
1: जी
0: इन्हों चीज़ों पर ही जेड़े साढ़े औषधीय पौधे ने तिना से जेड़े उत्पाद सानू मिलते हैं तिना ते ही जेड़े से अगे दवाइया जी इसे कंपनियां बना कर दी है ना,
1: बिल्कुल जी,
0: तो इस
1: बिल्कुल
0: दी मांग जी इसे बाजारे पर बड़ी ज़्यादा और इस मांग जो दिखते हुए इन्हों का अच्छी कीमत भी जी इसे साढ़े किसान भाई जो मिलनी है ना।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल
0: तो कुल मिलाई के यही है कि अहाँ जो जेड़े से औषधीय पौधे की तरफ भी जेड़े से अपने कारोबार जो बढ़ाना चाहिए
1: बढ़ाना
0: ताकि
1: चाहिए,
0: अहाँ जो अतिरिक्त आमदनी जी से हो सके।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हूँ हाँ फिरी ते गल्ला बातें देना विराम, कने चलते न सुनते न एक प्यारा दे और लोक गीत।
0: जी

बुडोली देवी बिलासपुरा सामने ये बुडोली देवी जाके डेरा जमीत रात कटी सवेरे हुआ मंदिरा छेर लई बहुना बटे क्या।

भगवती एक मिंडा एक बकरा दे तेरे और फतेह करया मेरी भाई बुडोली देवी जे परसी कीत्या जे

ये भाई जेड़ा बुडोली देवी तेड़े राजा चलिया ये दकड़िया रा हार बोलिया कुमारी कुमारी दकड़िया रे हारा डेरा जमीत रात कट्टी सवेरे हुआ कीतिया जे फौजा ए भाई बाधे घाटा ते छिजार किला था ए राजे समौरिये बाधे घाटा जाके मोर्चा लाया ना जेड़ा किला सामने आया कीत

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: जी तो श्रोताओ, इस संदेश और लोग गीत के बाद हाँ जानकारी देनी है तुम्हें जो अहाँ के जेडे आरोग्यम कार्यक्रम के बारे च। ये कार्यक्रम जेड़ा से हर रविवार जेड़ा से चलाया जाता है सवेरे जेड़ा 9 बजे से लेके 10 बजे तक, है ना जी।
4: जी
3: और इस वरी दे जेड़ा रविवार है 19 जुलाई 2026 जो जेड़ा प्रसारित किए जाने वाला कार्यक्रम है, इसका विषय रहना है उच्च रक्तचाप कारण और बचाव। इस बारे च तुहां जानकारी जिहड़ी है ले सकदे ने और साढ़े स्टूडियो विच मौजूद रहने ने विशेषज्ञ डॉक्टर कविता ठाकुर, जिहड़े कि मानव औषधि विशेषज्ञ कने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी शाहपुर दे जिला कांगड़े दे विच सहकारी रत्न। तो इन्हां ते तुहां जिहड़ा सा अपना जिहड़े उक्त उच्च रक्तचाप कने कारण बचाव दे बारे च जानकारी जिहड़ी से ले सकदे और ये जानकारी लेने वास्ते तुहां अहां दे स्टूडियो दा जिहड़ा नंबर है 0-1892-224-391 जिहड़ा डायल करके 19 जुलाई 2026 जो सवेरे 9 बजे तो लेके 10 बजे तक जानकारी जिहड़ी से हासिल करी सकदे ने
4: जी।
3: और इस कार्यक्रम जो तुहां जिहड़े से अहां दे FM 103.4 MHz पर सवेरे 9 ते 10 बजे तक सुनी सकते और मोबाइल ऐप पर न्यूज़ ऑन AIR पर भी जिहड़ा से ये कार्यक्रम सुनी जाई सकता है।
4: बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इस ते बाद फिर ते चलना है लोक चिनकार पाहें, पर पहले कुछ एक संदेश
3: जी।
0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.

0: जी दसरतो प्रदीप प्रदेशी हो रहे हो गाए इसी लोकगीत कन्ने साढ़े कार्यक्रम का समय हूँ इतों ही संपन्न होंगे पर जाने तो पहले दस दिए कि तकनीकी सहयोग रे सुरेंद्र कपूर हो रहा कने प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र सिंह ठाकुर हो रहा हूँ अहां दे सदस्य टियाले दे सदस्य दिया अनुमति।
1: अच्छा जी जय हिंद।

0: 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेज़ी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की NDA सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना रचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों और अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरण रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 अगस्त तक चलेगा। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री ट्रेन की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पे महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पे राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी लेने तुहां दा अपना लोका भाओ एक बारी फिरी ते ट्याले पर आई पुज्या है। कने बाहर लगी हो जमाजम बरखा, कने मेरा जड़ा मित्र है अज पंच, पता नहीं कता रही है पचां चाय पीना गया। पंच जी
1: आई गए दिखा तो हाँ, कार्यक्रम जेड़ा से खेतीबाड़ी शुरू हो गया है ना।
0: जी जी
1: ता मैं जेड़ा थोड़ा बारिश लगी तो तीदा आनंद लिया करता हा, और कन्ने कन्ने चाय दा भी जेड़ा से कप हाँ कन्ने लिया करदे, तीदा भी आनंद है ना।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। तक रे ये तान्ना दी फसल है।
1: देखा तो हाँ, इस बारी जेड़ी से हाँ फसल ता जेड़ी रोपाई जेड़ी धान दी करी थी, और अच्छी चली है इस वेले, बदी है।
0: अच्छा बढ़िया है।
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: और कन्ने कन्ने देखा तो हाँ हुण
0: तो आड़ी फसल है तो पानी लगता ना।
1: हाँ पानी लगता, पर जिथू ओतड़ी हुण जिथू भी जेड़े से बारिश हुई तो इसका फायदा जड़े साढ़े जेड़े किसान साथी ने, जिथू की सिंचाई का प्रबंध नहीं है तो उत्थू जेड़े से बारिश होवा करती इन्हों दिनों तो इसका भी तिना जो फायदा होना, और अच्छी फसल जड़ी इसे दिखने मिलनी अगे है ना।
0: ये तो पक्की गल तो हाँ गलाई दिखा रोन की राम पिछले कल मिंजो मिले यार, बोलिया बरसाला ही तो बोला बरसाला लगी पिया पर बोले थल्ले बरखा हुआ ही नहीं कर दी।
1: अच्छा
0: मैं लिया कोई नहीं, रुकी या दस्या अपना 16 तरीक ते दस्या है ना, 17 ते गांव
1: हाँ
0: होने वाले
1: हाँ
0: जड़े दिन है
1: जी
0: ना,
1: जी जी
0: ता आज ते इत्थी साढ़े ट्याले पर ता बरखा लगी है। हुण पता नहीं रोन की रामे दे पाहें लगी होंगी कि नहीं। कहे कि दिखा अहां दे जड़े धान ओतड़े दी खेती है, ऐसा धान जड़े इस वक्त जड़ा सा पानी मंगा करदे है ना,
1: बिल्कुल
0: पट्टियां जड़ियां से सुकियां हुई हैं होंदे जांदे। मैं भी पाल पाए ही ना, मेरियां भी कुछ एक पट्टियां नहीं लगदा पानी, तो सह पानी तोपा दी है ना।
1: हाँ जी
0: तो जे ये बरखा जड़ी असें अहां दे निचले क्षेत्रां तक भी हुई ही होंगी तो बड़ी वधिया, कने बाकी गल है ना।
1: जी अज भ्यागा भी जी से बारिश हुई, पर सह नीचे जियां ज्वाला जी देरा साढ़े कांगड़ा है शाहपुर है इन क्षेत्र च काफ़ी अच्छी बारिश हुई सवेरे, पर इस वेले बोला दे कि उत्थू थल्लै जी से बारिश घट है, पर उपरले क्षेत्र च जी से जोरदार इस टाइम बारिश जी लगी हुई है ना।
0: बिल्कुल, बरसाती दे बदलों का पता नहीं होंदा, इत्थी दिखा तो बर ही है, कहना थोड़ी दी उपर ज्यादा बरखा भावें हुई ही नहीं हो है
1: हाँ
0: ना।
1: इसी तो बरसात बोल दे।
0: हाँ ठीक गला दे तुआ। तो अज दिखा पंच जी यहाँ अपने कार्यक्रम च जानकारी जेड़ा सांझी करनी है सह है फुलां दी खेतीबाड़ी ने जुड़ी है ना,
1: हाँ
0: कि
1: जी
0: फुलां दी खेतीबाड़ी अहां कियां फायदेमंद बनाई सकदे, कने फुलां दी खेतीबाड़ी जेड़ी है सह कई फायदेमंद है। दिखा इस च भी जेड़ा ऐसा समय तो एक घट लगता, कने ज्यादा पैसा भी नहीं लगता इस च है ना।
1: जी
0: कने दूई गल गलाइए पंच जी, तो 12 महीने जेड़ा ऐसा फुलां दी मांग रहिंदी आ, तुहां दे शादी होई है ब्याह होई है मंदिरां च भी जेड़ा ऐसा मांग रहिंदी दी, स्कूले दे
1: सजावट करना है ना।
0: स्कूले दे फंक्शनां च होटलां च है ना, फुल जेड़ा सा कम है उन्दे बोलते ना मरण जीने दे कम है जेड़ा सा फुल लगदे लगदे है ना।
1: जी
0: ता इस च जेड़ा सा पानी भी घट लगदा, कने खर्चा भी जेड़ा सा घट ही होंदा है ना।
1: हाँ जी
0: दिखा तुहां जमीन पथरीली जमीन ढलान वाली जमीन जिथे तुहां जेड़ा सा गेंदे दी गुलाब दी फसल जेड़ा सा ले सकदे है ना।
1: हाँ जी
0: कने गल करिए अपना पंच जी अहां दे हिमाचल दे क्षेत्र दी, तो इत्थे जेड़ा सा गेंदा जिसी पीला सोना बोलते ना है ना,
1: हाँ जी
0: तिहदी फसल जेड़ा सा तैयार हो जाती है। ये जेड़ा सा 500 ते 1800 मीटर जी अहां दा कांगड़ा दा क्षेत्र पई जांदा, इस च मंडी आई आ मीरपुर आई आ, 60 दिनों जेड़ा सा ये फुल तैयार हो जाता। कने दिवाली कने शादियों सब तो ज़्यादा मंग जेड़ा सा यदि रही है, कने भाव जेड़ा सा 40 ते 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब ने किसान ने मिली आता है ना।
1: अच्छा
0: तो दूई गल करते ना गुलाब की, जिसी लाल हीरा हीरा भी बोलते हैं ना,
1: हाँ जी
0: लाल गुलाब जेड़ा होंदा, ये जेड़ा है तुहां दा 1000 ते 2000 मीटर जे वाले जेड़े क्षेत्र नहां दे जिस चाहां दा पालमपुर आई या धर्मशाला आई या इत्थी ते जेड़ा सा हो जांदी दी खेतीबाड़ी। कने ये एक पौधा जेड़ा सा 10 सालां तक जेड़ा सा फसल दिंदा रहिंदा है, कने बाजारे च मुल जेड़ा सा 15 ते 30 रुपये प्रति डंडल दे हिसाबे ने जेड़ा सा बिकी आंदा है ना।
1: जी जी
0: कने गल करिए हुण जरवेरा फुल दी, तां दिखा ये शहर दा फुल होंदा, कने ये जेड़ा सा 1200 ते 2500 मीटर आले जेड़े साढ़े क्षेत्र ने शिमला कुल्लू आले क्षेत्र जेड़े हो ये होटलों च इत्थे जेड़ा दिखा बुके जेड़ा बनांदे ना जालू को चीफ गेस्ट
1: हाँ
0: होंदा,
1: जी
0: तदे
1: हाँ
0: दे
1: जी
0: कम्मे भी ये होंदा, कने एक डंडल 10 ते 25 रुपये प्रति उहदे हिसाबे ने जेड़ा सा दाम अहां दे किसाने मिली आंदा, कने इहदा निर्यात भी जेड़ा सा होंदा है ना।
1: हाँ जी
0: कने गल करिए मैरी गोल्ड दी, तां ये दिखा स्कूल कॉलेजां वाला फुल है, कने निचले इलाकों च 45 दिनों जेड़ा सा तैयार हो जाता भी, इहदी लागत भी जेड़ा सा सब ते घट लगती है ना।
1: जी
0: तो
1: जी
0: अहां दे भी इत्थों दे अखे पखे दे किसान भी जेड़ा पंच जी दिखा फुलां दी खेतीबाड़ी करी के जेड़ा सा बड़ी अच्छी खासी आमदनी कमा दे, कहे कि फुलां दी खेतीबाड़ी च के भी था कि दिखा अहां दे जेड़े किसान है फसल आए जेड़ा सा उजाड़ बड़ी बरी हुआ करते ही है ना।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: अहां दे अखे पखे टियाले दे अखे पखे दे कुछ एक क्षेत्रां देखिए, तो हुण बलबीर सैणी हो रहे ने अहां दे किसान, ते इहनां भी जेड़ा सा गेंदे दी फुलां दी खेतीबाड़ी हुण सा करदे ने, तां बोलदे ने जेड़ा सा अच्छी खासी आमदनी जेड़ा सा कमा करदे ने है ना।
1: बिल्कुल
0: ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਕੁਥੀ ਨਾ ਕੁਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਜਾੜ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਖਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਗਦੀ ਫਸਲਾਂ ਪਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨੇ ਦੀ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਆਹੇ ਵੀ ਗਾਂਹ ਬੜੀ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ ਨਾ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕੋ ਪਾਊ ਸਾਂਝੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ।
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਔਰ ਦੇਖਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲਾਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਜਾਵਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਖਾਸ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਆਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿਸਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਆਹਾਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਾ ਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਪਣਾਈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਨਣੀ ਆਉਣਣੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾਈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ
1: ਜੀ।
0: ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਤੁਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਈ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ।
1: ਹਾਂਜੀ।
0: ਤਾਂ ਆਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੰਚ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਦਿਆ ਲੋਕ ਭਜਨ ਹੈ ਨਾ।

0: श्रोताओ, ये माता दी भेंट तुहां तक पुजाई कने आशा करदे हां तुहां इह पसंद भी आई होनी है ना
1: जी।
0: तो पंच जी हुण कार्यक्रम च गां बधदे होए बेला उहदा भेंट वार्ता दी अंक दी अपनी जानकारी सांझी करने दा है ना।
1: हाँ जी।
0: तो इस च जिहड़ा सहां दे उन्नत किसान जिहड़ा सै आई पुज्जे उहनां तां सुणदे ने उहनां ते ही उहनां दे खेतीबाड़ी दे अनुभव है ना।
1: जरूर।
2: किसान साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी भेंट वार्ता की कड़ी विच जियां कि तुहां जानदे हन, हर दिन एक नित नोई ते नोई जानकारी तुहां तक पहुँचाने दा अहां दा प्रयास रहिंदा। उसी भेंट वार्ता की कड़ी विच अज एक उन्नत किसान मेरे सोगी जुड़ा करदे हन, करदे ने इहनां कन्नै गलबात। राम राम जी।
3: राम राम जी।
2: जी अपना नां दस्सा।
3: मेरा नाम बली है जी।
2: जी बली।
3: हार चक्कियां ते।
2: अच्छा, हार चक्कियां घर तो हां दे ने।
3: घर चक्कियां मेरी दुकान है, अगर मैं इयां ठेड़ा जिम्मेदारी जड़ी है मैं ठेड़ा करदा पा।
2: अच्छा, ठेड़।
3: हां जी, पार हुई पंचायत ना, ठेड़ पंचायत
2: कने ब्लॉक कौन पौंदा तो हां
3: रहत जी।
2: अच्छा
3: हां जी
2: जी जी बली जी, तो खेतीबाड़ी करदे हैं ना।
3: हां जी।
2: अच्छा, कितनी की जड़ी जमीन है तो हां वाल जिस तो हां खेती करदे ना।
3: जमीन खेतीबाड़ी कोई 20 कनाली है, पिछा खेतीबाड़ी करते हैं।
2: अच्छा,
3: हाँ जी।
2: क्या क्या लगाते 20 कनाल च?
3: 20 कनाली च इस टाइम तो हाँ मक्की है बीजी हो,
2: अच्छा
3: फिर धाना की फसल लगाई हुआ,
2: हाँ जी,
3: चेरी भी बाही हुआ,
2: अच्छा
3: डंगर वास्ते चेरी भी बाही हुआ,
2: हाँ जी,
3: बाकी कुछ सब्जियां भी लगाई हैं।
2: अच्छा
3: हाँ जी
2: जी जी बली जी, तो इस बाद गल करते हैं जी, तो हाँ दसिया कि छली लगाते हैं तान, ते जियां ए जेड़े बी वगैरह होंदे घरे दे बी वांदे या फिर मुल्ले लैंदे?
3: कुछ तो हाँ घरे बाही लेंदे,
2: हाँ
3: कुछ बी जड़े हाँ मुल्ले लेंदे, धाना दे मैक्सिमम मुल्ले लेंदे जी।
2: अच्छा,
3: हाँ जी।
2: तो इस बारी जेड़ा तुहां धान लगाया कौन किस्म लगाई धाने दी?
3: मैं दो किस्म लगाई जी,
2: अच्छा
3: एक लगाई है बजेता या 100 नंबर बोलते जी,
2: हाँ जी,
3: कन्नै एक 103 नंबर है।
2: अच्छा
3: हाँ जी।
2: तो ये जड़े जियां 100 नंबर बजेता कन्नै 103 नंबर तुहां पहले भी लगाए हे
3: बजेता दा लगांदे हे,
2: हर
3: 103 नंबर जड़ा मैं पहली बारी लगाया,
2: साल? हाँ
3: ये मैं रहता गया हूँ ना, बोलिया भी थोड़े साइड जरा बरखा का हाड़ा होती बरखा स्प्री ना,
2: हाँ जी
3: तो तिना बोलिया जी बी है अच्छा थोड़े पास है
2: हाँ जी, यानी कि घट पानी च तैयार हो
3: तैयार हो
2: जाना।
3: कने जल्दी पक्की जाना, 90 दिन च नहीं तैयार हो जाना।
2: हाँ हाँ जी
3: कने जरा बजेता सह लैंदा 115 दिन।
2: हाँ जी
3: हाँ
2: जी हाँ जी ये देखा भाई, अहाँ दे वैज्ञानिक भी जड़े सह यही सलाह देंदे ने कि हाँ जो जड़ियाँ सह अपनी खेती विच घट तो घट दो या तीन किस्मों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होंगे कि कोई किस्म जड़ी सह इतनी पैदावार नहीं दे पाती।
3: कई बारी जियां पिछली बारी हाड़ है इत्थू मौसम बरखा नहीं हुई,
2: हाँ जी
3: असें फसल इतनी ज्यादा नहीं हुई,
2: हाँ
3: बी यहाँ इको लगाया होगा तो फिर इसे मुश्किल हुई
2: हाँ
3: जिस वजह
2: कना
3: ने।
2: अगर अहाँ दो तीन किस्म लगाते हैं तो जड़ी कसर कुथी रही जाती से दूई किस्म पूरी करी जाती।
3: हाँ जी
2: जी
3: कने एक होर लगाया मेरी याद नहीं, मैं 1 किलो बी होर लिया असें हाड़े इतनी डिपू में हल पैने
2: अच्छा
3: जड़ा हुंदा डिपू उस था पिछले भी लिया मैं 1 किलो वह भी दिता।
2: अच्छा, तो और लगाया पनीरी
3: और
2: भी?
3: पनीरी दी जी भी और
2: अच्छा
3: लगाया फिर।
2: अच्छा
3: हाँ जी।
2: छलियां दसियां तो हाँ कौन छलियां बांधे?
3: छली घरे दी भाई कुछ
2: अच्छा
3: कने कुछ ली थी मैं इतनी दुकान है हर जगह खोली उसते ली थी।
2: अच्छा
3: हाँ
2: जी, घरे का जो बीज छलियां है चिट्टा बीज है कि लाल छलियां ने?
3: चिट्टा ये भी कने जरा उसका दुकाना भी लिया है भी चिट्टा ही लिया, पर
2: अच्छा
3: जरा घरे का बहां लगाया तिस कीड़ा लगी है एक
2: हाँ
3: रूई
2: ये
3: जी लगा दी एक
2: हाँ
3: तो है तिस वजह ने मैं फसल नहीं तैयार हो दी।
2: देखो छलियां विच जड़ा सा ये 2-3 साल ते हाँ जो बड़ी बड़ी समस्या अहाँ दे किसान जो होवा करदी है
3: हाँ जी
2: कि जल्द सा टंडे तैयार होगा जैसे सा कोई लूड़ी लगी कोई कीड़ा लगी ऐसा पत्तियां खाई याद है ना।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: जी बली जी, इस ते बाद वहाँ दसिया कि तुहां सब्जियां वगैरह भी जड़े से लगांदे ने, क्या
3: जी
2: क्या
3: जी
2: सब्जियां
3: लगाते
2: लगाई हैं?
3: सब्जियां दिखा थोड़े बहुत सारियां लगाते,
2: हाँ जी
3: करेला भी लगाते, भिंडी भी लगाई हो,
2: हाँ जी
3: फेरी जड़ी डानी भी थी,
2: हाँ जी
3: फेरी घीया भी था,
2: अच्छा
3: ते लगाई था थोड़ी थोड़ी सारी एक शिमला मिर्च भी लगाते न।
2: हाँ जी
3: हाँ
2: अच्छा, कदे पैदावार है बै?
3: पैदावार इं बरखा हुई इस वजह ने जड़ी है घीया डानी का है फसल
2: हाँ
3: बूटे जड़े है खत्म हुई है।
2: हाँ देखा चलो
3: करेले
2: इतनी
3: नहीं चले अब करेले भी है लगा दे
2: हाँ
3: भी छोटा दिया होता एक डंग पता नहीं कीड़ा कटी जाता है लाल हुई जाता फिर है भी
2: अच्छा
3: छोटा ही है सड़ी जाता है
2: अच्छा
3: करेला भी।
2: देखा जी बड़ी बरखा पौंदी जेड़े तो फुल जेड़े चली जाता है ना, देखा ना बेल वाली सब्जियां छोटे छोटे तो फुल होंगे है ना
3: हाँ जी
2: बिल्कुल जिस नाजुक बोलते हैं, देखा ऐसा कुछ भी नहीं है, हुण जियां मौसम जल खुड़ना तां सब्जी दी पैदावार जिहड़ी से वधणी है ना।
3: हाँ जी, कहना बाकी भिंडी है लगा दी है।
2: अच्छा
3: हाँ जी,
2: जी, बली जी जियां गल करदे हैं खाद दी, कौन दी खादां पांदे?
3: ये जड़ी अपनी देसी तैयार होंगी जी,
2: अच्छा
3: कोई गोबर की जड़ी होंगी है,
2: अच्छा बाकी यूरिया वगैरह घट ही पांदे हैं।
3: यूरिया नहीं पाते।
2: देखो बड़ी अच्छी गल है कि बिना यूरिया ते तो हाँ जड़ा सा कोई भी उत्पादन तैयार करा करदे हैं ना।
3: हाँ जी,
2: तो जियां कितने पशु रखे तो हाँ घर?
3: दो न जी, एक मैं कहना एक कट्टी है।
2: अच्छा
3: हाँ जी,
2: यानी गाय वगैरह नहीं है
3: नहीं
2: ना।
3: गा नहीं है,
2: अच्छा दो दिन दी मैं।
3: मैं इस टाइम तो नहीं दिंदी।
2: अच्छा
3: हाँ जी,
2: अच्छा पहला दिन दी,
3: पहला
2: सोने
3: दिन। हाँ जी हाँ
2: सोने
3: जी
2: वाली होनी है
3: हाँ जी
2: ना।
3: हाँ जी हाँ जी,
2: अच्छा जल सुई पो तो ताला किन्ने तू दे दी,
3: शायद देंदी कोई 4 किलो एक टाइम था।
2: यानी कि 8 किलो
3: हाँ जी
2: दिने का हो गया
3: हाँ
2: ना।
3: जी हाँ जी,
2: ता देखा भी मैं दुध जड़ा सा जिसकी कहा बोल देना कि एक तिद जड़ी से रेट भी ज्यादा होता मैं दुध
3: मैं इधर ज्यादा
2: महंगा
3: होता।
2: जड़ा सा
3: हाँ जी
2: मिलता या बिकता है
3: हाँ जी हाँ जी,
2: तो हाँ दे तो क्या भाव बिकी जाता?
3: इस टाइम तो कोई 60-65 चले जी।
2: अच्छा तो हाँ बेच दे
3: हाँ बेच दिया है जी।
2: जलू बांध लगाते
3: हाँ
2: होने
3: जी
2: है
3: लगा दे जी।
2: ना।
3: हाँ जी,
2: और तो नहीं कुछ कसोगी जी या कोई खोआ पनीर वगैरह भी
3: नहीं
2: बनाते?
3: बाकी नहीं बनाते, घ्यो फिर बेची रहते।
2: छा छोड़ दे होने
3: हाँ जी,
2: ना।
3: छा छोड़ देता फिर घ्यो बेची रहना, कहना बाकी पिंडे च दुध ही बिकी जाता।
2: हाँ
3: हाँ,
2: क्यों क्या भा बिकी जाता मैं दा?
3: मैं इधर घ्यो इस टाइम तो कोई 1200 बिका जी। हाँ
2: हाँ
3: जी, 1200 हजार
2: अच्छा
3: बारह सौ
2: बिकी जाता भी है
3: हाँ
2: ना।
3: जी हाँ जी,
2: हाँ
3: यो और चीज देनी तो फिर बिकी जाती है
2: बिल्कुल
3: ज्यादा।
2: का देखा हाँ दे जड़े ग्राहक है ना था यो दिया चीजें जड़ा सा कुथी दिखते रहते कि इतने प्योर देसी चीज जड़े सा कुतु मिलना देसी
3: हाँ जी
2: कोई
3: हाँ
2: भी
3: जी
2: उत्पाद है ना।
3: हाँ जी हाँ जी,
2: अच्छा इससे सोगी जी अपनी जमीन बिच तो हाँ कुछ पौधे वगैरह भी लगाए हो फलदार दिया बूटे वगैरह कुछ
3: हाँ
2: क्या
3: लगाई हुई जी।
2: क्या लगाया?
3: अंब है,
2: हाँ जी
3: अनार भी है,
2: हाँ जी
3: फिर लीची वाले भी है ना,
2: अच्छा
3: ते बाकी और थोड़े बहुत इं कोई अमरूद लगाए हो ना,
2: हाँ हाँ
3: फिर सेबे के बूटे भी लगाए, वो तो हल्ला फल तो नहीं लगे देना, पर लगाए हुए हैं। हाँ
2: अच्छा
3: जी,
2: कुदू ते आंदे हे सेबां दे पौधे?
3: ये पंचायती च आए हैं हाड़े ना,
2: अच्छा
3: पंचायती वाले ने
2: मुल्ले मिले हे?
3: ये नहीं देते है ना,
2: अच्छा
3: कैंप
2: अच्छा
3: लगा कोई
2: हाँ जी
3: इन्हें देते है, दो दो बूटे ना ये लगा
2: अच्छा
3: रहे थे।
2: अच्छा बली जी जी कई तरह दी ऐसी ट्रेनिंगा चल दियाँ खेती दी सिखलाई दी कोई कैंप लग दे तो हाँ भी कुछ ऐसी सिखलाई वगैरह कदी ले कुछ?
3: नहीं, आह नहीं गए जी,
2: अच्छा यानी कि जड़ी भी तो हाँ खेती
3: ये
2: बाड़ी
3: जड़े फादर
2: करते
3: हाड़े करते हैं सब ने। हाँ गां
2: हाँ
3: तीस ने सीखे।
2: अपने जड़ी तो हाँ ते अनुभव है ना
3: हाँ
2: उसी
3: जी
2: आधार पर है ना।
3: हाँ जी हाँ जी,
2: अच्छा बली जी अहाँ दी जड़ी नौजवान युवा पीढ़ी है ना ऐसा दिखा नौकरी पिछे था तू घूमा कर दे कने कुछ हद तक नौकरी नहीं भी मिली पा करती है ये बावजूद तिना वाल अपनी खरिया खुलिया जमीना भी है ना
3: हाँ जी
2: उन्होंने तो हाँ क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: हाँ, तो ये देना चाहते भी तुहां जमीना बा अपनी
2: हाँ जी
3: जड़ी देसी फसल तैयार होती है सै, तो बात सारा रेट जरा मिली सकता कुछ गांव ज्यादा,
2: हाँ जी
3: दुनिया तो यूरिया यारी जड़े देंदे जिसने तो फिर फसल नहीं लेंदे, लोग बोलते हाँ जो इतनी कीमत नहीं चाहिए, लोग नहीं
2: हाँ
3: खाना चाहते,
2: हाँ जी
3: इस वजह ने फिर चलो करना चाहिए थी ना,
2: हाँ जी
3: जब ज्यादा नहीं करने थोड़ी करो, अपने करा तो सही।
2: जी जी हाँ
3: हाँ
2: जी
3: जी
2: कुल मिलाए कि ये बोल सकते कि अपनिया जमीना जो जड़ा सा खिल्ला मत छड़ा
3: हाँ जी
2: कने घर भी जड़ा सा अपने माँ प्यो का सहारा बना तेने थोड़ा सहारा दिया कि अहाँ भी तुहां दी मदद कर गए कने जड़ी जमीन जड़ी से अहाँ खिल्ली जड़ी से नहीं छड़नी है ना।
3: हाँ जी
2: जी बली जी तुहां अपने खेतीबाड़ी के अनुभव अहाँ कने साझा किते अपना कीमती समय तो हाँ अहाँ जो दिता तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी श्रोताओ, तो ये हाँ दे उन्नत किसान जड़े हाँ दे टियाले पर आए हुए अपने खेतीबाड़ी के अनुभव साझा करा दे है ना।
2: जी
0: तो देखा है ना छलियां दी भी गलबात की, तो छलियां पंच जी तुहां भी लगाइया खरी है फसल, इबे की लगी है बीमारी?
1: हाँ फसल तो ठीक है इबे, पर चक्कर ये है कि बीमारी जड़ी है जिसकी हाँ साढ़े जिहड़े विशेषज्ञ ने सह बोला करते कि ये जड़ी बीमारी का ना है फॉल आर्मी बर्म है ना,
0: हाँ जी हाँ जी
1: इस प्रकार का लार्वा और लार्वे ते जड़े से छोटी छोटी लुड़ियाँ जड़ी से तैयार हुआ कर दी है ना, जी जी से साड़ी मक्की दे पत्तरां जो या फलां जो खा कर दी हैं तो तिस्ते से तिना दा साइज जड़ा से बढ़ता ही जा करता हर बारी है ना, पर इस बारी मैं जड़ा से थोड़ा साढ़े जेह्ड़े विशेषज्ञ न कृषि विशेषज्ञ तिन्हां कन्नै सलाह मशवरा कीता और इक दवाई जेह्ड़ी असें मैं लैंदी तिन्हां ते और इसदा छिड़काव कीता तां हुण थोड़ा आराम है।
0: अच्छा, पिछली बारी नहीं था तुम बोला गुल्लू पल्ले पे बोले कने कख ही नहीं बचिया, बोले चूड़ू फुकेरू लास्ट खाइए बोले कने कख ही नहीं रहा, मैले छलियां रोटियां खाने तो स्वाद लगदी पर पैरा करना पौंदा फिर बांदरां दा सूरां दा है ना, मेहनत बड़ी बार लगती है ना,
1: बड़ी मेहनत
0: उपरे दे लार बे लूर बे लगी आता फसल तो उइ मुकी आती है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और दिक्खा ना पिछले समय च पुराने समय च हाँ जेड़े से बल्द रखे होंगे साढ़े बजुर्ग पूर्वज है ना, तो इसके कन्नै समय समय पर असें गहरी जुताई करते थे, इसके बिच फिर अग्गे जलू से खेत खुले छड़ी दे तो अच्छी धुप्प लगती, तो इसते क्या होंगे कि जेड़े हानिकारक लार्वे होंगे या

0: बीज होंगे इन लुड़ियों के सह खत्म हो जाते
1: खत्म हो जाते। हाँ जी
0: तो हूँ क्या करा करते हाँ कि जल्द फटोफट जलू बारिश हो करती है नमी हो करती है साढ़े खेतर च
1: पावर
0: ट्रैक्टर
1: टिलर
0: पावर टिलर कने ट्रैक्टर लिया कने इको भरी बाई के काम खत्म
1: मुका दे है ना। हाँ जी हाँ जी
0: तो इसते जेड़ा से समझो कई मुश्किल जड़ियाँ से दिखने जो मिला कर दी है पर हूँ साढ़े विशेषज्ञ बोला करते हैं कि अगर जिथू भी ये बीमारी जड़ी फॉल आर्मी वर्म दी बीमारी जड़ी है चली है तो उतू जेड़ा से अहाँ कुछ एक दवाइया ने जी कि इस विच अहाँ दे विशेषज्ञ सलाह दिया करते हैं कि इमामेक्टिन बेंजाएट 5 SG जड़ी है इसकी दवाई जड़ी है प्रति ग्राम 1 लीटर पानी से जड़ा से इसका छिड़काव जड़ा से करी सकते इस दे कन्ने कन्ने स्पिंटो रैम 11.7 SC जड़ी की अद्धी ML जड़ी से 1 लीटर पानी च या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट 5 AG इस दी जड़े से अहाँ छिड़काव जड़े से अपने खेतर च करी के इस बीमारी से निजात जड़ी से पाई सकते हैं।
1: जी किसान साथी हो तो समय रहेंदे तो ये भी लगता कि तुहां दे खेतर च ये बीमारी पनपी हो तो तुहां अपने नज़दीकी कृषि अधिकारी कने संपर्क साधा कने सह जी सलाह दें तेना दवाइया जरा सा छिड़काव करा है ना
0: जी
1: ता जो तुहां जरा सा बाद च पछताना नहीं पवे समय रहेंदे बीमारी है पता चली है तो दीदी रोकथाम जरा सा उही आती है ना
0: जी लोग पाओगे इस बीच एक इन जी साढ़े जड़े कृषि विशेषज्ञ ने तिना ने एक दवाई और सुझाई है जी कि क्लोरे एंट्री नीलीप्रोल ये जड़ी साड़ी दवा है 18.5 SC नमक है इस विच जड़े से 4 ML जड़े से 10 लीटर पानी च तुहां इसका गोल बनाई करी या फिर ये दवाई ना मिले तो स्पिन टोरेम 11.5 SC या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG ये दवाइयां तुहां लिखी लिया और इसका जड़ा से अपने बाजार से या फिर कृषि विभाग से लियाई करी इन दवाइयों का जड़ा से छिड़काव करी के इन इस जड़ी बीमारी अजकल साड़ी मक्का फसल च फैली है फॉल आर्मी वर्म इसते जड़ा से निजात हाँ पाई सकते हैं।
1: जी तो फिर ते अपनी गल्ला बातें देना विराम कने सुन देने एक प्यारा दिया लोक गीत
0: जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:42 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंब अंदौरा सहित देश भर के 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल में रेल विस्तार के लिए विशेष वित्तीय सहयोग प्रदान करने का केंद्र से किया आग्रह। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, 2022 से 2025 तक MIS के तहत खरीदे गए सेब के बकाया भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपए जारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, नशे के नेटवर्क को तोड़ने में पूरी तरह विफल रही राज्य सरकार, सत्ता के संरक्षण में नशा माफिया सक्रिय। और प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने सरकारी कार्यालयों में 5-day week लागू करने की सरकार से की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज जालंधर से वर्चुअल माध्यम से देश भर के 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें ऊना जिला का अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन भी शामिल है। अंब अंदौरा स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने तलवाड़ा व मुकेरियां के बीच रेल ट्रैक के 27 किलोमीटर लंबे आखिरी सेक्शन को पूरा करने के कार्य की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जालंधर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की NDA सरकार देश के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक परिवार, चाहे वो गरीब हो या मध्यम वर्ग का, सर्वोत्तम संभव सुविधाएं प्राप्त करें और नागरिक देवो भव की भावना सरकार के कार्यों में परिलक्षित होती है।
1: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री की पट्टिकाओं का अनावरण किया, जहां वे प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से हिमाचल की प्रमुख रेल परियोजनाओं को विशेष वित्तीय सहयोग प्रदान करने और भानुपल्ली बिलासपुर चंडीगढ़ बद्दी व ऊना हमीरपुर रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का आग्रह किया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का आधुनिक स्वरूप ऊना जिला के लिए गर्व का विषय है और उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। राज्य सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना MIS के तहत वर्ष 2022 से 2025 तक खरीदे गए सेबों के बकाया का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सेब बागवानों के खातों में कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों व बागवानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेब की पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कॉटन प्रणाली लागू की है, ताकि बागवानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि MIS के तहत 30 बैग तक सेब बेचने वाले सेब उत्पादकों को भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जबकि 100 बैग या उससे अधिक सेब उत्पादकों को भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने 45 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वर्तमान सीजन में MIS के तहत सेब खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बागवानी मंडी मध्यस्थता योजना की वेबसाइट और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: राज्य सरकार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं के विकास और विशेषज्ञ मानव संसाधन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या 277 से बढ़ाकर 597 करने का प्रस्ताव रखा है। इससे प्रदेश के छात्रों को राज्य में ही स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के अधिक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वर्षों में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर विशेषज्ञ के 218 नए पद भी सृजित किए हैं। प्रदेश के लोकायुक्त व राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बरोवालिया ने आज लोकभवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में आयोग की पिछले एक वर्ष की कार्यप्रणाली और गतिविधियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में सत्ता के संरक्षण में नशा माफिया फल फूल रहा है और राज्य सरकार नशे के नेटवर्क को तोड़ने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। शिमला से जारी एक बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नशे की स्थिति भयावह होती जा रही है और गांव-गांव तक नशा पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ सरकार की कार्रवाई केवल मात्र दिखावा ही साबित हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को बड़े बड़े दावे करने के बजाय नशा तस्करों के पूरे नेटवर्क और उन्हें संरक्षण देने वाले लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की पक्षधर है। प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 5-day week लागू करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर 5-day week लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई है। प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मियां ने बताया कि सप्ताह में 2 दिन अवकाश मिलने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, तनाव कम होगा, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और सरकार को सालाना करीब 100 करोड़ रुपए की बचत भी होगी।
3: 5-day week जो एक पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की मांग है और विभिन्न एसोसिएशनों ने हमारे को अवगत करवाया कि हमें जो है 5-day week के लिए फोकस करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया और साथ ही साथ ये कहा है कि इसको हम स्टडी करके और एग्जामिन करके जो है इसको बड़ी जल्द लागू करेंगे। 5-day week में एक तो सरकार का काफी पैसा बचेगा, कम से कम भी 1 साल का 100 करोड़ के करीब जो है पैसे की बचत।
0: भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने कांग्रेस सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल को निराशाजनक करार दिया है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य ठप पड़े हैं और मुख्यमंत्री काम करने के बजाय भविष्यवाणियां कर रहे हैं ताकि अपनी नाकामियों को छिपाया जा सके। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चार्जशीट लेकर आएगी और इस चार्जशीट को लेकर जनता के बीच जाएगी ताकि सरकार के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया जा सके।
4: पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे थे, चुनावों के बीच में रातों रात नियम कानून बदलने का काम भी इसी सरकार ने किया। कानून व्यवस्था, उसके साथ युवाओं के साथ धोखा जो इन्होंने वायदे किए थे, इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक चार्जशीट के लिए कमेटी भी गठित की है और इसमें इन सारे मुद्दों को इकट्ठा करके वर्तमान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो है चार्जशीट तैयार करेगी।
0: प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 में बदलाव करते हुए आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 23 से 45 वर्ष के स्थान पर 23 से 50 वर्ष कर दी है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पात्र आवेदकों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई निर्धारित की गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिलासपुर जिला ने ग्रामीण स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में प्रदेश भर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बिलासपुर प्रदेश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर से डोर टू डोर प्लास्टिक कचरा संग्रहण की सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि जिले के 4 विकास खंडों बिलासपुर सदर, घुमारवी, झंडुता और श्री नैना देवी जी में प्लास्टिक कचरा संग्रहण व प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंब अंदौरा सहित देश भर के 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल में रेल विस्तार के लिए विशेष वित्तीय सहयोग प्रदान करने का केंद्र से किया आग्रह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 2022 से 2025 तक MIS के तहत खरीदे गए सेब के बकाया भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपए जारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, नशे के नेटवर्क को तोड़ने में पूरी तरह विफल रही राज्य सरकार, सत्ता के संरक्षण में नशा माफिया सक्रिय। और प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने सरकारी कार्यालयों में 5-day week लागू करने की सरकार से की मांग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
5: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
6: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
5: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
6: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
5: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रोजगार समाचार। बाल विकास परियोजना अधिकारी बसंतपुर स्थित सुन्नी जिला शिमला से प्राप्त सूचना अनुसार बाल विकास परियोजना बसंतपुर के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों के रिक्त पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम जहां आंगनवाड़ी सहायिका का पद भरा जाना है, आंगनवाड़ी केंद्र पंजोल वजीरा, पनिहाना बंजोल, मेटेोग तरौर, जुब्बड़ धार, कार्यालटू ओडू कोट डायला, झोलो सेवांग बगैन मुगना और सुन्नी एक, इन आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी सहायिका का पद भरा जाना है। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद भरा जाना है, आंगनवाड़ी

के अंदर पनहेल। इन पदों को भरने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए साक्षात्कार 13 अगस्त 2026 को बाल विकास परियोजना अधिकारी सुन्नी के कार्यालय में सुबह 11 बजे किए जाएंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार अपना आवेदन 4 अगस्त 2026 तक जमा करवा सकते हैं।

0: इन पदों को भरने हेतु वांछनीय योग्यताएं इस प्रकार से हैं: उम्मीदवार संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के निवासी हो, उम्मीदवार के पास न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो, उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसका आय प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कार्यकारी दंडाधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें बाल विकास परियोजना अधिकारी बसंतपुर स्थित सुन्नी के कार्यालय से। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। सभी श्रोताओं को पूनम का प्यार भरा नमस्कार। और सबरस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

सबरस कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और कार्यक्रम में आगे सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में गाई ये गजल।

सबरस कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

0: देशगान आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार, संध्या और 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
2: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में

0: खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
1: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
0: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए।

0: रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रिफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
2: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000

0: करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में दो स्कूली बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन के खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट

0: FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. And that is all in the news at 9. Good night.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोतो, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वर्ष 1992 में बनी फिल्म बेखुदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बेखुदी एक रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो राहुल रवेल द्वारा निर्देशित है, और ये फिल्म जो है वो दिग्गज अभिनेत्री काजोल और अभिनेता कमल सदाना की बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म है। फिल्म की कहानी जो है वो एक युवा जोड़े और उनके परिवार की रूढ़िवादी सोच के बीच के टकराव और बगावत पर आधारित है, और इस फिल्म के गाने जो हैं वो काफ़ी मशहूर भी हुए हैं। तो आइए सुनवाते हैं इसकी फिल्म से ये पहला गीत। कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ें हैं।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: जी हाँ श्रोता, हम बात कर रहे हैं फिल्म बेखुदी के बारे में। तो इस फिल्म में जो कलाकार हैं वो काजोल, कमल सदाना, तनुजा और कुलभूषण खरवंदा थे। और इस फिल्म के निर्देशक राहुल रवेल थे और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो राधिका यानी कि काजोल और विक्की यानी कि कमल सदाना जो है वो इनके इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी घूमती है। राधिका का परिवार जो है वो उसकी शादी जो है वो एक अमीर लड़के से तय कर देता है, लेकिन वो विक्की से प्यार करती है और परिवार की बंदिशों के खिलाफ जाकर अपने प्यार को पाने के लिए उनके संघर्ष और भाग दौड़ को इस फिल्म में एक्शन और ड्रामा के साथ दिखाया गया है। और बेखुदी फिल्म का संगीत बहुत ही मधुर और लोकप्रिय था और फिल्म के गाने जो हैं वो नदीम श्रवण की जोड़ी ने कंपोज किए और इसके कई गीत जो हैं वो 90 के दशक के चार्टबस्टर भी रहे हैं। और तो आइए सुनवाते हैं आपको इसी फिल्म से एक और प्यारा सा गीत, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.

nsddogs@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स।

सभी श्रोताओं को पूनम का प्यार भरा नमस्कार। और बॉलीवुड बीट्स में हम आपको सुनवाएंगे कुछ नई फिल्मों से गीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काबुल एक्सप्रेस से, जिसे गाया है राघव ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सचिन जिगर, गुरु रंधावा और वीर की आवाजों में, और फिल्म है स्ट्रीट डांसर।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुड न्यूज से, जिसे गाया है नेहा कक्कड़ और साथियों ने, और संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। और इस कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं डंकी फिल्म से, और जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, और इस गीत के गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत दिया है प्रीतम ने।

तो श्रोताओ, बॉलीवुड बीट्स कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स और ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से गीत। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम चित्रपट संगीत में स्वागत। और दोस्तों, हर खुशी से खूबसूरत हर पल बना दिया, बीते हुए लम्हों को हमने गजल बना दिया। और यूं तो गुजर जाती है जिंदगी यूं ही, मगर पुराने नगमों के इस सफ़र को और भी हसी बना दिया। जी हाँ दोस्तों, हमारे जैसे ही श्रोता जो हैं वो हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा सफ़र जो है वो और भी हसीन बन जाता है। और सभी संगीत प्रेमियों को हमारी ओर से नमस्कार और कार्यक्रम में सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की शाम बेहद ख़ास है। आज हम वक्त के पन्नों को पलटकर एक बार फिर उस सुनहरे दौर में चलेंगे जहां हर गीत एक कहानी कहता था, जहां के संगीत में रूहानियत थी और शब्दों में जादू था। जी हाँ दोस्तों, सजने जा रही है पुरानी यादों और सदाबहार गीतों की ऐसी महफिल जो आपके दिलों को छू लेगी। तो कार्यक्रम में सबसे पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं वंदिनी फिल्म से, जिसे गाया है आशा भोंसले ने।

तो दोस्तों कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म भाभी से। ये दोस्तों मोहब्बत का ये तराना जिसे सुनकर आज भी दिल मचल उठता है। और आवाज है लता मंगेशकर की। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत है।

तो दोस्तों, खुशियों के साथ कुछ ऐसे नगमे भी हैं जिन्हें हमें रोना भी सिखाया है और टूटे हुए दिलों को सहारा भी दिया है। तो अब उन खूबसूरत दर्द भरे गीतों की गलियों में सैर करते हैं और सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में अनीता फिल्म से ये गीत।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। तो दोस्तों, हुस्न और इश्क की महफिल हो और वहाँ थोड़ी सी छेड़छाड़, थोड़ी सी नोक झोंक ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। और पुराने दौर के गानों की सबसे खूबसूरत बात ही यही थी कि उनमें नाराज़गी के साथ साथ प्यारी सी मिठास भी होती थी, और नखरे उठाने का वो अंदाज़ आज के दौर में कहाँ मिलता है जनाब। तो आइए सीधे चलते हैं मोहब्बत की उस हसीन गली में, जहाँ रूठना मनाना और दिल चुराना जारी है, और सुनिए और आनंद लीजिए इस चुलबुले गीत का। ये आवाज़ है आशा भोसले की और इनका साथ दिया है मोहम्मद रफ़ी ने, और फिल्म है काला पानी।

0: हम खो गए जी, दिल खो गया है, कुछ हो गया है हमको। हम खो गए जी, दिल खो गया है, कुछ हो गया है हमको।
1: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में, फिल्म है कांच की गुड़िया।

0: श्रोता, चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में, और फिल्म है मिस्टर एंड मिसेस 55। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है ओपी नैयर का। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।
1: हसी हो इधर।

कहीं दिन कहीं रात। तो श्रोताली जी, सुनते हैं ओपी नैयर साहब की दिलकश धुन और महेंद्र कपूर साहब और आशा भोसले की जादुई आवाज़ें जब आपस में मिलती हैं तो दिलों की धड़कनें तेज़ होना तो लाजमी है। तो आइए पूरी शिद्दत के साथ महसूस करते हैं इस रूहानी मोहब्बत को और सुनते हैं ये नगमा।

तो चलिए रुख करते हैं साल 1962 की फिल्म हाफ टिकट की तरफ, जहाँ पर एक तरफ सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर जी की मीठी आवाज़ है, तो दूसरी तरफ है अल्टीमेट मस्ती से सबका दिल जीतने वाले किशोर कुमार साहब का अंदाज़। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत, यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को हैं, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा

0: India announced 20-member squad for the FIH Women's Hockey World Cup 2026 today. And that is the end of this news bulletin.
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रमों का प्रसारण यहीं पर संपन्न होता है। कल के कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।